हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पाहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति गी पाहमला 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। भारत और EFTA के बीच TEPA पिछले वर्ष 1 अक्टूबर से लागू हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से बीजेपी के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवातीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन GSMA के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस आज से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी सरकार के प्रमुख के रूप में आज 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: ये जो निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उसे विपक्ष की ओर से मार्च का कोई अनुरोध नहीं मिला था, इसलिए मार्च की अनुमति भी नहीं दी गई। पुलिस ने बताया कि इसके चलते नई दिल्ली क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की गई। पुलिस ने कानून के तहत करीब 260 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें 10 सांसद भी शामिल हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अपने समर्थकों के साथ बिना अनुमति आकाशवाणी भवन परिसर में पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांग्रेस नेताओं और अन्य प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और हिरासत में लिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेन देन और भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के काम शामिल हैं। इन्हें 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना, पानी की सुरक्षा बढ़ाना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। श्रेयस अय्यर ने नाबाद

0: सौ दो रन बनाए। शानदार शतक के लिए श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 9 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी तेज हवाएं चलने की संभावना है और आंशिक तौर पर बादल छा सकते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में लीजिए प्रस्तुत है सबसे पहले आपके लिए ये समूह स्वर में देशगान।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में लीजिए, अब सुनिए सुरेश वाडकर व साथियों की आवाज़ में ये भजन।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम वंदना में लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है संजीव अभिहंकर की आवाज़ में ये भजन।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में ये भजन।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज़ में ये भजन। कार्यक्रम भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं ओम व्यास की आवाज़ में इस भजन के साथ।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत विषय है महात्मा गांधी एक यात्रा। आलेख एवं वाचन स्वर सुमित गौतम का है।

0: गांधी भारत की आत्मा की आवाज, आवाज जो गूंजती रहेगी सदियों तक। जब सत्य लड़खड़ाता है तो उसे सहारा देती है एक लाठी, वो लाठी है गांधी। जब बुद्ध मुस्कुराते हैं वो मुस्कुराहट है गांधी। भारतीय इतिहास का एक समूचा कालखंड है गांधी। सभी अनुत्तरित प्रश्नों के जवाब है गांधी। गांधी एक मनुष्य नहीं, एक यात्रा, एक सतत यात्रा। आइए चले इस यात्रा में।
1: अपनी महान पुस्तक संस्कृति के चार अध्याय में गांधी जी पर केंद्रित अध्याय भूमि का स्वर्गीकरण, महात्मा गांधी का प्रयोग में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, महात्मा गांधी ने भारतीय संस्कृति पर इतनी अधिक दिशाओं में प्रभाव डाला है कि उनके समस्त अवदान का सम्यक मूल्य निर्धारित करना किसी के लिए संभव नहीं दिखता। खान पान, रहन सहन, भाव विचार, भाषा शैली, परिच्छद और परिधान, दर्शन और सामाजिक व्यवहार, धर्म कर्म, राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता, भारत में आज जो भी आचार विचार प्रचलित है उनमें से प्रत्येक पर कहीं ना कहीं गांधी जी की छाप है। यहाँ तक कि उनके आलोचकों और विरोधियों में भी ऐसे लोग हैं जिनकी पोशाक नहीं तो खान पान में, विचार नहीं तो सामाजिक आचार में महात्मा गांधी का प्रभाव मौजूद है। आज का भारत गांधी का भारत है और गांधी नाम आज के भारत नाम का पूरा पर्याय है, इसमें कोई संदेह नहीं। गांधी जी के इस महाव्यापक प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए यह सरल कार्य नहीं है कि हिंदू नवोत्थान की पृष्ठभूमि पर उनका समग्र रूप आंका जा सके। जन्म और विकास तो उनका भी सांस्कृतिक नवोत्थान के कारण ही हुआ, किंतु काल को खींचकर वे अपनी दिशा की ओर ले गए। वे आगे लिखते हैं, संसार का ध्यान गांधी जी की ओर इसलिए आकृष्ट हुआ कि उन्होंने पशु बल के समक्ष आत्मबल का शस्त्र निकाला, तोपों मशीन गनों का सामना करने के लिए अहिंसा का आश्रय लिया। किंतु सोचने की बात यह है कि अहिंसा का आश्रय उन्होंने लिया क्यों? क्या इसलिए कि अंग्रेजों के विरुद्ध हिंसा का आश्रय लेकर भारत को स्वाधीन नहीं कर सकते थे, अथवा इसलिए कि मानव समाज को वह शिक्षा देना चाहते थे कि मनुष्य जब तक पार्श्विक साधनों का प्रयोग करने को बाध्य है तब तक पूरा मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं? पहली बात अहिंसा को किम कर्तव्य विमूढ़ एवं निरुपाय व्यक्ति का साधन बताती है, जिसका अर्थ ये होता है कि जब तोप हमारे पास नहीं है सत्याग्रह ही सही। किंतु दूसरी बात अहिंसा को मनुष्य के विकास का साधन बताती है, उसके रूप को निर्मल बनाने का उपाय सिद्ध करती है। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य अपने देशवासियों के कष्टों का निवारण नहीं बल्कि मनुष्य के पार्श्वीकरण का अवरोध था। घृणा, क्रोध और आवेश या पशुओं को भी होते हैं और वो भी अपने प्रतिपक्षी का सामना उन शस्त्रों से करते हैं जो प्रकृति की ओर से उन्हें मिले हैं, लेकिन मनुष्य पशु से भिन्न है, इसलिए उचित है कि वह अपने आवेगों पर नियंत्रण लगाए और अपने दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में उन उपायों से काम ले जो पशुओं के लिए दुर्लभ किंतु मनुष्य के लिए सुलभ है। जीवन और समाज के धार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष तत्वों के बीच बहुत दिनों से विभाजित रेखा चली आ रही थी, गांधी जी ने इस रेखा को मिटा दिया। कबीर ने जैसे सहज मार्ग का आख्यान करते हुए कहा था, जह जह डोलूं सो परिचर्या, जो जो करूं सो पूजा, उसी प्रकार गांधी जी ने अपने आचरण से सिद्ध कर दिया कि धर्म किसी खास दिन किसी लग्न विशेष का कृत्य नहीं है बल्कि वह मनुष्य के प्रत्येक कार्य में विद्यमान रह सकता है। यहाँ तक कि राजनीति भी धर्म की अभिव्यक्ति का उपयुक्त माध्यम हो सकती है। शिक्षा, संस्कृति, कला, विज्ञान, व्यापार, सामाजिक आंदोलन, गांधी जी सबका आध्यात्मिकरण चाहते थे और इन क्षेत्रों में उन्होंने जो भी प्रयोग किए उन सब में उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण स्पष्ट था। यंग इंडिया के 23 जनवरी 1930 के अंक में उन्होंने लिखा, प्रार्थना श्रवणों या शब्दों की कसरत नहीं है या अर्थहीन मंत्रों का पारायण भी नहीं है। राम नाम का जाप चाहे जितना भी करो यदि उससे आत्मा आंदोलित नहीं होती तो वह व्यर्थ है। प्रार्थना में निःशब्द हृदय का होना अच्छा है किंतु हृदयहीन शब्दों का होना खराब है।

चिंतन कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आपने सुना महात्मा गांधी एक यात्रा विषय पर सुमित गौतम के विचार। आलेख एवं वाचन स्वर सुमित गौतम का था। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है आपके लिए श्री रामचरितमानस से आज की संगीतमय प्रस्तुति।

इधर राम के राज्याभिषेक की धूमधाम है और उधर मंथरा विषाद की मुद्रा में उनके सामने उपस्थित है। ये देखकर रानी कैकेयी को आश्चर्य हो रहा है। वो इस विषाद का कारण जानने को आकुल हो रही हैं। रानी कैकेयी तथा उनके पुत्र भरत के लिए अपने हृदय में जो सद्भाव और कल्याण की भावना है उसका विश्वास दिलाते हुए मंथरा कहती है, कोई भी राजा बने उसके लिए क्या अंतर पड़ता है, वो तो दासी से रानी नहीं बन सकती। किंतु हे रानी, मुझसे तुम्हारा अहित नहीं देखा जाता। यदि मेरी इस भावना में तुम्हें खोट दिखाई देती है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ, अब कुछ नहीं कहूंगी। रानी पर मंथरा के वचन का ऐसा सम्मोहन छा जाता है जैसे शिकारी की पत्नी का गान सुनकर हिरनी मोहित हो जाती है। जिस प्रकार सरस्वती की माया से मंथरा की बुद्धि फिर गई थी, कुछ वैसा ही प्रभाव कैकेयी पर हुआ। वो दासी की इस बात पर विश्वास कर लेती हैं कि वे दिन अब लद गए जब वे राम और सीता को अत्यधिक प्रिय थीं। उनकी ये धारणा दृढ़ हो जाती है कि भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल भेजना राजा की एक चाल थी और ये सब राम की माता कौशल्या की सलाह से किया गया है। सोचती है, सौत तो आखिर सौत ही है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज की ये संगीतमय प्रस्तुति। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब आपके

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत लीजिए सुनिए सामूहिक चर्चा, जिसका विषय है बायोगैस की उपयोगिता। उक्त विषय पर आपको जानकारी दे रहे हैं सोहन सिंह।
1: किसान भाइयों, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 2/3 से अधिक जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जिनका जीवन यापन कृषि, पशुपालन, फलोत्पादन, मछली पालन और कुटीर उद्योगों पर आधारित है। देश में ऊर्जा आपूर्ति और मांग में बहुत बड़ा अंतर रहता है। सिंचाई और उद्योगों में बिजली की हमेशा कमी बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत से मिलने वाले गोबर, कृषि अवशेषों का उपयोग यदि बायोगैस उत्पन्न करने में किया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर खाना बनाने का कार्य पशु द्वारा परित्याग किए गए गोबर या जंगलों से लकड़ी चुनकर ही पूरा किया जाता है। लकड़ी काटने से पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और गोबर से उपले बनाकर प्रयोग करने से खेतों में खाद की मात्रा में कमी आ रही है। साथ ही खाना बनाते समय निकले धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड और हानिकारक कण मकानों में कालिक फैलाने के साथ साथ आँखों और फेफड़ों को भी प्रभावित करते हैं। बायोगैस संयंत्र ऐसी जगह बनाएं जहां पर पानी एकत्रित न होता हो, जल निकास का उचित प्रबंध हो, खुली जगह हो जहां पर हर समय धूप आती जाती रहती हो। संयंत्र आकार का चयन उपलब्ध पशुओं के आधार पर करना चाहिए। यदि 50 किलोग्राम गोबर प्राप्त हो रहा है तो 2 घन मीटर का संयंत्र तैयार करना चाहिए और अधिक गोबर प्राप्त हो रहा है तो उसी के आधार पर संयंत्र का आकार बढ़ाना चाहिए। बायोगैस से खाना बनाने के साथ साथ प्रकाश व्यवस्था भी की जा सकती है। बायोगैस संयंत्र उत्तम गुणवत्ता वाला जैविक खाद तैयार करता है, जिसे तुरंत निकालकर प्रयोग में लाया जा सकता है। बायोगैस से तैयार खाद खेतों में प्रयोग करने से खरपतवारों की मात्रा में कमी आती है। जैविक खादों के प्रयोग करने से फसलों में कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। साथ ही बायोगैस संयंत्र में पाचन के बाद जो खाद बाहर निकलती है उसमें सभी पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं, जिससे अनाज, फल, सब्जियां पौष्टिक दृष्टि से अधिक समृद्ध होती हैं। बायो खाद के उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं की संतुलित रूप से बढ़ोतरी होती है, जिससे मिट्टी में भुरभुरापन रहता है। भूमि की जलधारण क्षमता विकसित होती है, जिससे भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है। अल्प वर्षा और अतिवर्षा की स्थिति में फसलों को लाभ पहुंचता है। बायो खाद के उपयोग से फसलों उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि होती है। कंपोस्ट खाद बनाने में 3 से 6 माह लग जाते हैं, जबकि बायो खाद तुरंत तैयार होती है। बायो खाद से फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। खाद तैयार होने का इंतजार नहीं करना पड़ता है। गोबर की खाद सीधे खेत में खाद के रूप में प्रयोग करने पर दीमक लगने की संभावना रहती है, जबकि बायो खाद के प्रयोग से दीमक जैसी समस्याएं नहीं आती हैं। फसलें स्वस्थ रहती हैं, अधिकतर कीटनाशक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बायोगैस संयंत्र में मल मूत्र खाद पदार्थ डालते रहने से घर के आसपास साफ सफाई वातावरण भी स्वच्छ रहता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां भी नहीं फैल पाती हैं। बायोगैस संयंत्र स्थापित करें, जिससे वनों पर बढ़ता हुआ अनावश्यक दबाव घटेगा। भूमि क्षरण जैसी समस्याओं को रोक सकते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति संतुलित रहेगी। उर्वरकों द्वारा होने वाले भूमि और जल प्रदूषण कम करने और स्वच्छ वातावरण के लिए बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। बायोगैस बनवाएं और उपयोग करें। पर्यावरण संरक्षण में बायोगैस की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ साथ फसलों से उत्पादन भी बढ़ाया जा सकता है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि चर्चा। कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत सुनिए आपने ये सामूहिक चर्चा, जिसका विषय था बायोगैस की उपयोगिता। उक्त विषय पर आपको जानकारी दे रहे थे सोहन सिंह। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचना परक कार्यक्रम दर्पण।
2: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी

0: फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: ए भाई,
2: सड़क पर चलते समय अपने वाहन की गति नियंत्रित रखें। किसी भी प्रकार का स्टंट करने की कतई कोशिश न करें। हो सकता है आप कुशल चालक हों, लेकिन दुर्घटना सिर्फ हमारी गलती से नहीं होती, दूसरों की लापरवाही भी हादसों का कारण होती है। दाहिने या बाएं मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करें। खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें।
1: ए भाई, दर्द।

0: अरे क्या बात है, आज तो तुम बड़ो ही नोनो गीत गा रही हो। और जो तो बई गीत है, जाके हम फरमाइश की चिट्ठी लिखकर भेजा था थे, और हमारी पसंद को लोक गीत हमारी जिज्जी हमें लोक माधुरी में भी सुनवाओ थी।
1: हाँ, खूब ही सही चीज ना तुमने, जो वही लोक गीत है और आज हम जी को जासे गा रहे कि आज हमारा मन बहुत ही उल्लास में है।
0: काय ऐसो का होगा जिज्जी?
1: अपना जो पसंदीदा कार्यक्रम लोक माधुरी को हम सभी सुन सकते हैं हर सोमवार शाम 7:21 से 8 बजे के बीच।
0: जिज्जी जाके लाने अपने को चिट्ठी कैसे भेजनी होगी?
1: अरे चिट्ठी विट्ठी छोड़ो, अब हम हो गए डिजिटल, सो अब हम लिख के भेजेंगे अपनी फरमाइश व्हाट्सएप पे।
0: तो जीजी जाको व्हाट्सएप नंबर कहाँ है?
1: डायरी तनक खोलो और जल्दी से लिख लो 9425702768। तो याद भाव कि नहीं, तनक बताओ तो जल्दी से
0: 9425702768।
1: तो आप अपनी पसंद को लोकगीत के बोल और कलाकार को नाम हमें जा नंबर पे व्हाट्सएप करो, को आपकी पसंद को लोकगीत लोक माधुरी कार्यक्रम में जरूर ही सुनवाएं।
0: तो सुनना न भूलें हर सोमवार शाम को 7:21 से 8 बजे के बीच लोक माधुरी।
2: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
4: मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 6:55 होने को हैं। संस्कृत और हिंदी में समाचार का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंता प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिः गी पामला च अद्य भारत मंडपम् इत्यत्र द्वितीयं भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलनं संबोधयिष्यतः। भारत EFTA व्यापारार्थिक सहमति संधेः प्रथम वार्षिकोत्सवस्य अवसरे सम्मेलनमिदं अस्मिन् सम्मेलने भारतस्य तथा EFTA संघटने अन्तर्भूतानां स्विट्जरलैंड नॉर्वे आइसलैंड लिक्टेन्स्टाइन चेत्येतेषां देशानां वरिष्ठाः प्रशासकीय अधिकारिणः उद्योगक्षेत्रस्य नेतारः प्रमुखहितधारिणश्च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। सम्मेलनस्य उद्देश्यम् आर्थिक सहकारं सुदृढीकर्तुं व्यावसायिक सहमतिं प्रवर्धयितुं तथा व्यापार निवेश प्रौद्योगिकी सहकार नवोन्मेष चेत्येतेषु क्षेत्रेषु नूतनानाम् अवसराणां सृजनमस्ति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः सार्वजनिक जीवन यात्रा अद्यैव आरब्धा आसीत्, यस्याः अद्य 25 वर्षाणि पूर्णानि भवन्ति। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः च अद्य विकसित भारत संकल्प सभां संबोधयिष्यतः। प्रधानमन्त्रिणः तथा भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षस्य संबोधनाभ्यां सह दलस्य अनेके वरिष्ठ नेतारः अपि उत्तर प्रदेशस्य विभिन्नेभ्यः क्षेत्रेभ्यः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन कार्यक्रमे सहभागं करिष्यन्ति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
6: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु। यूट्यूब मञ्चे च न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु।
5: केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन बहुमाध्यम सम्बद्ध परिवहन योजनां सुव्यवस्थितां कर्तुं एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन प्राधिकरणस्य स्थापनायै अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्नस्य मन्त्रिमण्डलोपवेशनस्य अनन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् इदं प्राधिकरणं दशवर्षीय योजनावधिम् आधृत्य दीर्घकालिकं राष्ट्रिय परिवहन महायोजनापत्रं सज्जीकरिष्यति। सः उक्तवान् यत् इदं देशे एकीकृत परिवहनापूर्ति व्यवस्थापन योजनायै शीर्ष संस्थारूपेण कार्यं करिष्यति। श्रीवैष्णवः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन लघु मध्यमोद्यमेषु स्वामित्व निवेशाय 10,000 करोड़ रूप्यकाणां लघु मध्यमोद्यम विकास निधेः स्थापनायै अपि अनुमोदनं प्रदत्तम्। भारत घाना देशयोर्मध्ये वैज्ञानिकानुसन्धानस्य शैक्षणिकक्षेत्रस्य क्षमतावर्धनस्य कृष्यनुसन्धानस्य तथा शिक्षायाश्च क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं द्वयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानं जातम्। विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशंकरस्य घानायात्रायाः समये एतयोः सन्धिज्ञापनपत्रयोः आदान प्रदानम् अभवत्। डॉ जयशंकरस्य घानादेशस्य विदेशमन्त्रिणः सैम ओकुजीतो अब्लक्वा इत्यस्य च मध्ये भारत घानादेशयोः व्यापक सहमतिं सुदृढीकर्तुं विस्तृतं विचारविनिमयं जातम्। ध्यातव्यमिदं यत् विदेशमन्त्रिणः इयं यात्रा अस्य मासस्य 10 दिनांकपर्यन्तं प्रवर्तिष्यते। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरासु प्रबलवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। भारतेन ह्यः रात्रौ लखनऊ नगरे क्रीड्यमाने प्रथम विंशति प्रतिविंशति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडायां वेस्ट इंडीज दलं 8 स्तोभिः पराजितम्। अनेन विजयेन भारतं 5 स्पर्धात्मिकायां श्रृंखलायां 1-0 इत्यन्तरेण अग्रे अस्ति। इति वार्ताः।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सभा को संबोधित करेंगे।

0: कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश से भाजपा के वरिष्ठ नेता वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा इतिहास बनाया है जिसकी मिसाल किसी भी लोकतांत्रिक देश में बहुत कम मिलती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
0: सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कामों की सूची जारी की है। नई सूची में कुल 375 तरह के कार्य शामिल हैं। इन्हें चार मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। सरकार के अनुसार इस नई व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने के साथ साथ लंबे समय तक काम आने वाला ग्रामीण बुनियादी ढांचा तैयार करना और आजीविका के अवसर मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी पहमला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते TEPA की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार सृजित करना विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में TEPA की प्रगति की समीक्षा, नए निवेश की घोषणाएं, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग मजबूत करने तथा प्रमुख क्षेत्रों में अवसर तलाशने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। भारत मोबाइल कांग्रेस 7 से 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। भारत और घाना ने वैज्ञानिक अनुसंधान, अकादमिक क्षेत्र, क्षमता निर्माण, कृषि अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर की घाना यात्रा के दौरान हुए। दोनों देश दक्षिण दक्षिण सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने घाना के विदेश मंत्री सैम ओकुटजेटो अब्लाक्वा के साथ समझौतों का आदान प्रदान किया। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कालाकोट और राजौरी सेक्टरों का दौरा कर परिचालन तैयारियों और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में सेना ने बताया कि सैनिकों ने उन्हें नियंत्रण रेखा और भीतरी इलाकों में सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनाई गई सतर्कता, प्रशिक्षण, तालमेल और नवीन प्रथाओं सहित प्रमुख परिचालन तैयारियों की जानकारी दी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादले और तैनाती में कथित पैसे के लेनदेन और भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज तेज हवाएं चलने की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज ऐसे ही मौसम की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

प्रातः 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा साप्ताहिक कार्यक्रम वसुंधरा। विषय होगा पर्यावरण असंतुलन कारण और निवारण। प्रस्तुतिकर्ता होंगी सुश्री प्रमिला तिवारी। प्रातः 7:30 पर आप सभी के लिए प्रस्तुत रहेगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 8:30 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार होंगी पूर्वी टोंडपे। प्रातः 9:00 कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जाएगा। प्रातः 9:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा। कलाकार होंगे हिमांशु विश्वरूप और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा वायलिन पर राग बिलास खानी तोड़ी। प्रातः 10:05 पर कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। प्रातः 11:00 फोन करें गीत सुने कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा। प्रातः दोपहर 12:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 12:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम संग्रहालय से। दोपहर 1:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा महिला कार्यक्रम। चर्चा के विषय होंगे समाज का कलंक, अस्पृश्यता, अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया और कपास के विभिन्न घरेलू उपयोग। कार्यक्रम में आप एक भेंट वार्ता भी सुन सकेंगे। विषय होगा वन्य जीव संरक्षण। दोपहर 1:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोक संगीत। प्रस्तुति ग्वालियर जिले की होगी। प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। कलाकार होंगे भंवर सिंह अहिरवार। दोपहर 1:45 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम सुगम संगीत। प्रस्तुति ग्वालियर जिले की होगी। प्रस्तुतिकर्ता होंगी साक्षी कुलश्रेष्ठ। दोपहर 2:00 आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 2:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

5:02 पर आप सुन सकेंगे युववाणी का कार्यक्रम। प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। प्रस्तुति ग्वालियर जिले की होगी। चर्चा के विषय होंगे, क्या हमें हर सवाल का जवाब पता होना चाहिए, और अगर हमें कोई देख न रहा हो तो हम क्या चुनेंगे। 5:33 पर फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। 6:00 NCERT का शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित होगा। 6:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। 7:20 पर आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से प्रसारित होगा कार्यक्रम चौपाल। चर्चा के विषय होंगे विश्व कपास दिवस और ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को अपनाएं। कार्यक्रम में आप एक भेंट वार्ता भी सुन सकेंगे जिसका विषय होगा सरसों की फसल में सल्फर युक्त उर्वरकों का प्रयोग। 8:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 9:15 पर पुनः फिल्म संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। 10:30 पर कार्यक्रम राग रजनी का प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से होगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:10 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कूनो से लाए गए दो चीतों को विमुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएगी और भोपाल में आज से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की शुरुआत होगी। 34 देशों और 15 राज्यों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गी प्रहला आज भारत मंडपम में दूसरे भारत EFTA समृद्धि शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये सम्मेलन भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते की पहली वर्षगांठ पर हो रहा है। इस सम्मेलन में स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंकस्टीन के अधिकारी, उद्योगपति और कारोबारी शामिल होंगे। 10 खरब डॉलर की निवेश साझेदारी और भारत में 10 लाख रोजगार विषय पर निवेश, तकनीकी नवाचार और व्यापार बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कूनो से लाए गए दो चीतों को विमुक्त करेंगे। इसके साथ ही यह प्रदेश में चीतों का तीसरा आवास बन जाएगा, जबकि कूनो और गांधी सागर में पहले से ही चीते मौजूद हैं। करीब 439 हेक्टेयर क्षेत्र में चीतों के लिए सुरक्षित आवास और निगरानी की व्यवस्था की गई है। चीतों के आने से सागर बुंदेलखंड में वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनने की उम्मीद है। हाल ही में कूनो में 5 नए शावकों के जन्म के बाद देश में चीतों की संख्या बढ़कर अब 60 हो गई है। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट शुरू होगा, जिसमें 34 देशों के 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और 15 राज्यों के 180 घरेलू टूर ऑपरेटर्स समेत 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मार्ट के दौरान 1,100 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्तावों और समझौतों को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें सीहोर का करीब 850 करोड़ रुपये का मेगा निवेश भी शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने SME ग्रोथ फंड की स्थापना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी देकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इससे कारोबार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए वित्तीय मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज देश भर में सेवा ज्योति यात्रा निकाली जाएंगी। प्रदेश में भी इसके लेकर खास तैयारियां की गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में सेवा ज्योति कलश यात्रा के जिला स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं सुबह 9:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली सभा को भी संबोधित करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के लिए पंजीयन कल से शुरू हो गया है। इसे लेकर मंत्रालय में मंत्री समूह की बैठक हुई। इस अभियान में विद्यार्थी, युवा, स्टार्टअप, MSME, किसान, कारीगर और ग्रामीण जनजाति नवाचारकर्ता स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए अपने आइडिया दे सकेंगे। राज्य स्तरीय ग्रैंड फिनाले 10 दिसंबर में प्रस्तावित है, जिसके बाद चयनित प्रतिभागी अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वर्ष 2027 को प्रदेश में युवा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने भोपाल में आयोजित CM यूथ कॉन्क्लेव में 12 नए मेडिकल कॉलेज और रोजगार परक कोर्स के लिए 12 नए विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की। डॉक्टर यादव ने कहा कि 1 लाख युवाओं को कौशल उन्नयन से जोड़ा जाएगा और सभी जिलों के सरकारी कॉलेजों में प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। युवाओं के स्टार्टअप आइडिया को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ रुपए का आइडिया फंड भी बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पोर्ट्स में प्रदेश के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स में 11 पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है।
2: भोपाल में हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जहां से निकले बच्चों ने 11 पुरस्कार एशियाड में जीते, जिसमें 5 गोल्ड मेडल है। हमने एजुकेशन में स्पोर्ट्स को एक सब्जेक्ट के रूप में भी लिया। स्पोर्ट्स के कोच, पढ़ाने वाले सारे फैकल्टी, उनके प्रमोशन की भी व्यवस्था की। 230 विधानसभा हर जगह स्टेडियम बनाने का निर्णय किया है।
0: वहीं मुख्यमंत्री ने 2029 तक प्रदेश को नशा मुक्त करने के संकल्प की बात भी कही।
2: नशे से परिवार के परिवार बिगड़ जाते हैं, युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। हमारी सरकार, हमने निर्णय किया 2029 तक हम पूरे प्रदेश को और माननीय

0: जी के नेतृत्व में देश को नशे से मुक्त कराएंगे।
1: प्रदेश में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत कल प्रदेश भर में बच्चों, किशोरों और महिलाओं को कृमिनाशक दवा दी गई। 1 से 19 साल तक के करीब 1,12,00,000 बच्चों और किशोरों के साथ साथ 1,00,000 महिलाओं को एल्बेंडाजोल की निर्धारित खुराक दी गई। यह अभियान कृमि संक्रमण, पोषण संबंधी समस्याओं और एनीमिया के जोखिम को कम करने के लिए चलाया जा रहा है। वहीं इसी के तहत जबलपुर के शासकीय पंडित लज्जाशंकर झा मॉडल स्कूल और सतना के कन्याधवारी स्कूल तथा श्योपुर के विजयपुर में भी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाई गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि नाड़ी विश्लेषण भारत की समृद्ध चिकित्सकीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है और इसे आधुनिक तकनीकी व आयुष विज्ञान से जोड़ने पर काम होना चाहिए। भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि नाड़ी विश्लेषण कम खर्चीली और बिना किसी शारीरिक नुकसान वाली जांच पद्धति है, जिसका ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है। कर्मयोगी भारत की ओर से नागरिक केंद्रित शासन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आज सेवा भाव विषय पर विशेष ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जाएगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होने वाले इस सत्र का संचालन नीति आयोग के सदस्य डॉ आर बालासुब्रमण्यम करेंगे, जिसमें सरकारी कर्मचारियों में संवेदनशीलता, जवाबदेही और नागरिक केंद्रित सोच को बढ़ाने पर चर्चा होगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात कर 15 जनवरी को भोपाल में होने वाले सेना दिवस कार्यक्रम का आमंत्रण दिया। सेना दिवस पर भोपाल में मुख्य परेड, सैन्य प्रदर्शनी, शौर्य संध्या और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट डिस्प्ले सहित कई कार्यक्रम होंगे। मुख्य परेड भेल क्षेत्र में होगी, जबकि सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी जम्बूरी मैदान में लगाई जाएगी। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा है कि बाल विवाह रोकने के लिए सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर काम करना होगा। भोपाल में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में उन्होंने कहा कि प्रदेश में 35,000 से ज्यादा अधिकारियों का मैदानी तंत्र तैयार किया गया है। अब बाल विवाह वाले हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर वहां पर कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने सभी मतदान केंद्रों पर अगले 3 दिनों तक विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों में पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे और फॉर्म 6 के अलावा कोई घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। मतदाता ऑनलाइन भी voters.eci.gov.in या ECI नेट मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश से मानसून विदा हो चुका है, लेकिन बारिश का सिस्टम अभी सक्रिय है। पूर्वी हिस्से में पिछले 2 दिनों से बादल और रिमझिम बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज जबलपुर, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, कटनी, उमरिया, शहडोल, मंडला और बालाघाट समेत 16 जिलों में अगले 24 घंटे में बारिश हो सकती है। अब रुक करते हैं खेल की खबर का। भारत ने कल लखनऊ में खेले गए पहले T20 मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.1 ओवर में 171 रन बनाए, जिसमें शर्फेन रदरफोर्ड ने 56 और शाई होप ने 52 रन की पारी खेली, जिसके जवाब में भारत ने मात्र 14.4 ओवर में ही 2 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने नाबाद 102 और ईशान किशन ने 37 रन बनाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय खेल मैदान में सांसद सुधीर गुप्ता ने कल 70वीं राज्य स्तरीय शालेय अंडर 14 बालक हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। नरसिंहपुर के गाडरवारा शहर के वितरण केंद्र परिसर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पंजीयन के उद्देश्य से सेवा सेतु कैंप का आयोजन किया गया और कटनी के शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माधवनगर में आयोजित जिला स्तरीय मोगली बाल उत्सव से कनिष्ठ और वरिष्ठ वर्ग के 4 विद्यार्थियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति आज भारत मंडपम में समृद्ध शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कूनों से लाए गए 2 चीतों को विमुक्त करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर आज देश भर में सेवा ज्योति यात्रा निकलेगी और भोपाल में आज से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट की शुरुआत होगी। 34 देशों और 15 राज्यों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि होंगे शामिल। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:21 हुए हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम वसुंधरा। कार्यक्रम के अंतर्गत विषय है पर्यावरण असंतुलन कारण और निवारण। प्रस्तुतिकर्ता हैं सुश्री प्रमिला तिवारी।
1: पर्यावरण असंतुलन के मायने हैं कि जिस वातावरण में हम सांस ले रहे हैं उसे प्रदूषित कर रहे हैं, उसे कैसे बचाएं और उसके बचाने की हमारी जिम्मेदारी है क्या, उसे निभाया कैसे जाए, आखिर वातावरण में इतना असंतुलन आया कैसे। प्रकृति ने तो हमें हर चीज़ साफ सुथरी दी है, हवा, पानी, सूर्य की रोशनी। पहले हवा की बात करें। जो लोग धूम्रपान करते हैं उन्हें ये एहसास भी नहीं है कि वे खुद को नहीं बल्कि आसपास के वातावरण को भी दूषित कर रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार एक सिगरेट पीने वाले से ज़्यादा नुकसान साथ में बैठे व्यक्ति को होता है। आप मुंबई दिल्ली का हाल देख लें, साफ हवा में सांस लेने के लिए लोग तरस रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, आंखों में जलन हो रही है, त्वचा के तमाम तरह के नए रोग पनप रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूषित हवा में सांस लेना हमारी मजबूरी है। आमतौर पर मानव गतिविधियों के कारण ही पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो रहा है। जब पर्यावरण में अवांछित पदार्थ ज़्यादा एकत्रित हो जाते हैं वही प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। आमतौर पर प्रदूषण के जो प्रमुख प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण, रेडिएशन प्रदूषण आदि। हम वायु प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण को भी अगर शामिल कर लें तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण पटाखे हैं। हम बम, लड़ियाँ, अनार जैसे पटाखे लाकर भी जलाते हैं और तालियां बजाकर खुशी जाहिर करते हैं, पर वातावरण में उससे कितना धुआं छोड़ा जा रहा है वो भी विषैला, ये हमें ध्यान ही नहीं है। बुजुर्ग खांस रहे हैं, कुत्ते डरकर छुपे हैं, बीमार कान पर तकिया रखे हैं और हम शान से वातावरण दूषित करने में व्यस्त हैं। आप पाएंगे कि जहाँ पटाखे चलाए जा रहे हैं वहाँ आसपास के पेड़ झुलस जाते हैं। वो पेड़ जिन्हें बड़े जतन से लगाया गया था कि वो हमें ऑक्सीजन देंगे, हमने उन्हें ही घायल कर दिया और अब पर्यावरण में असंतुलन नहीं होगा तो होगा क्या। सभ्यता विकास और औद्योगिक क्रांति के साथ प्रदूषण बढ़ाने के लिए हमारे पास नए विकल्प भी आ गए, उनमें प्लास्टिक की थैलियाँ भी शामिल हैं। आज के युग में प्लास्टिक एक बड़ा खतरा है प्रदूषण को बढ़ाने के लिए। प्लास्टिक की बोतलें, दूध की थैलियाँ, घी, आटा, मसाले, शरबत, कोल्ड ड्रिंक, हर चीज़ के साथ प्लास्टिक हमारे घरों में घुस चुका है। हर चीज़ की पैकेजिंग प्लास्टिक में हो रही है। सरकार ने उस पर कई नियम भी बनाए पर हम उन नियमों को ताक पर रख खाली हाथ हिलाते बाजार जाते हैं और कई प्लास्टिक बैग के साथ घर में प्रवेश करते हैं। अब तो पत्तल दोने भी प्लास्टिक के बन रहे हैं। हम लोग इन्हें इस्तेमाल करके कूड़े में फेंक देते हैं। हम स्वयं ही अपने आसपास के प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब तो रिसाइकलिंग की सुविधा है, हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। पर हम भूल जाते हैं कि कुल 10% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाता है, बाकी 90% या तो लोग नदियों में, पहाड़ों पर कूड़ेदानों में डंप कर देते हैं और वो हमारी नालियों को ब्लॉक करता है, गायों के गले में फंसकर मौत का कारण बनता है और समुद्री जीवों की हत्या का कारण भी। हाँ, एक बात और, ये जो रंगीन प्लास्टिक होती है उसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो ज़मीन में पहुंच जाते हैं, उससे मिट्टी व भूगर्भीय जल विषैला हो जाता है और अगर लोग प्लास्टिक जलाते हैं तो विषैले धुएं से वायु प्रदूषण बढ़ता है। यहाँ मैं हरियाणा के प्रदीप सांगवान का विशेष उल्लेख करना चाहती हूँ जो पिछले 7 सालों से हिमालय की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए हिमालय हीलिंग मिशन चला रहे हैं। वे पहाड़ों से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कम करके हिमालय को दूषित होने से बचा रहे हैं। वे और उनके साथी अब तक 800 टन कचरा निकाल कर रिसाइकलिंग के लिए भेज चुके हैं। शिमला, कुल्लू, मनाली में वेस्ट कलेक्शन सेंटर शुरू किया जो हर दिन 5 टन कचरा इकट्ठा करता है। अब हिमालयन रीजन का 95% कचरा रिसाइकलिंग के लिए जा रहा है। आजकल हर बड़े शहर में सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए बड़े बड़े पेड़ों के आसपास सीमेंट और कंक्रीट के घेरे बना दिए जाते हैं, पेवर टाइल्स लगा दिए जाते हैं, लगभग पैक ही कर दिए जाते हैं। और खबर यह है कि हजारों बड़े पेड़ों का जीवन खतरे में है। कुछ वृक्ष बिना आंधी पानी के अपने आप ही गिर रहे हैं, जड़ से टूट रहे हैं। ये

0: बीच से फटकर नष्ट भी हो रहे हैं। 2013 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आदेश जारी कर पेड़ों से 1 मीटर के दायरे में सीमेंट कंक्रीट का घेरा बनाने की मनाही की थी। इससे जड़ें खराब हो जाती हैं, जड़ों का सही विकास नहीं हो पाता। पेड़ों में फीडर रूट्स होते हैं, ये मिट्टी की ऊपरी सतह पर होते हैं, इसी से पेड़ों को जरूरी पोषण मिलता है। पर घेरे के नीचे ऑक्सीजन नहीं मिलती और बारिश के दिनों में भी पेड़ पानी नहीं सोख पाते, धीरे धीरे पेड़ कमज़ोर होकर मर जाते हैं। पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं, हरियाली होने से बारिश अच्छी होती है और नदियों में ज़्यादा पानी आता है। अब पेड़ों के कटने से बारिश असामान्य हो गई है, उसका एक कारण प्रकृति से छेड़छाड़ है। हम दिन के अखबार के साथ एक पन्ने का छोटा विज्ञापन भी हमेशा देखते हैं, जो देखकर हमेशा फेंक दिया जाता है। क्या कभी लोगों ने सोचा है कि उसके लिए कितने पेड़ कटे होंगे? हैदराबाद की बोवनपल्ली सब्जी बाजार से रोज 2000 टन कचरा निकलता था और 3.5 लाख बिजली का बिल आता था। यहाँ के भारी भरकम बिल को देख तेलंगाना एग्रीकल्चर मार्केट डिपार्टमेंट ने 2020 में करीब 3.5 करोड़ की लागत से कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र माने CBG स्थापित किया। यहाँ 23 एकड़ में फैले बोवनपल्ली बाजार में फल फूलों से 15 से 20 लाख किलोग्राम कचरा रोज निकलता है। इसे डाइजेस्टर की मदद से ईंधन में बदला जाता है। इससे 30 किलोग्राम LPG और 300 यूनिट बिजली तैयार होती है। 100 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट, 170 दुकानें रोशन होती हैं। बाजार कैंटीन में जैव ईंधन से 800 लोगों का खाना बनता है। इस सबसे बिजली खपत आधी से भी कम और कचरे की डंपिंग भी बेहद कम हो गई और इससे बीमारियों में कमी आई और शहर भी साफ सुथरा हो गया। चाहे वो हिमालयन हीलिंग हो, समुद्र का कचरा निकालना हो या सब्जी वेस्टेज से बिजली बनाना हो, एक ही बात सामने आती है कि कानून पर अमल कर अपना शहर, अपना वातावरण प्रदूषण से बचाना मेरा और आपका काम है। विज्ञापन जगत के पुरोधा एलेक पद्मसी ने एक बार कहा था, मेरा जो है वही मेरा है, जो सबका है वो किसी का नहीं। तो जो कचरा हम घर से निकालते हैं, हम सिर्फ उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी अपने घर की गंदगी सड़क पर फेंकने के बाद वो किसी की जिम्मेदारी नहीं रहती। वही पर्यावरण को दूषित करती है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। अभी हाल ही में पूरी दुनिया में पहाड़ गिरने से, ज़मीन धसकने से, बादल फटने से ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक में पूरा वातावरण ही अनचीना सा हो गया, क्योंकि हमने पहाड़ों को तोड़कर घर बना लिए, सुरंगें खोद डाली, पेड़ काट दिए, नदियों को गंदा कर दिया। प्रकृति तो कुपित होगी ही, करोड़ों रुपयों की संपत्ति तो नष्ट हुई, इंसानों ने अपने कितनों को खो दिया, क्या हमने कोई सबक लिया? पेड़ तो वातावरण को संतुलित करने के लिए हजारों की संख्या में लगाए जाते हैं, पर उनमें से पनपते कितने हैं? पेड़ लगाकर जब तक भूलते रहेंगे कि उन्हें पानी भी देना है, उनकी देखभाल करनी है, प्रकृति हमें बारिश के लिए तरसाती रहेगी, सर्दी गर्मी का भूगोल बदल जाएगा, समुद्र किनारे भी लोग गर्मी से झुलसते रहेंगे और हम ग्लोबल वार्मिंग पर सिर्फ सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे। जब तक हम प्रदूषण पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, पूरा वातावरण इतना ही डराता रहेगा। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग आपस में जुड़े हैं। पूरी दुनिया में 40-45 मंजिलें बनाने की होड़ में हम शुद्ध हवा और शुद्ध पानी से लोगों को वंचित करना जिस दिन बंद कर देंगे, ये समस्या ही समाप्त हो जाएगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वसुंधरा। कार्यक्रम वसुंधरा के अंतर्गत आपने सुना पर्यावरण असंतुलन कारण और निवारण विषय पर सुश्री प्रमिला तिवारी के विचार। ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत के अंतर्गत कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म मुझसे शादी करोगी से। इस गीत को लिखा है जलीश शेरवानी ने। संगीत साजिद अली और वाजिद अली का है। आवाज़ अलका याग्निक और उदित नारायण की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का ये पहला गीत।

0: भाई एक शेर के चेहरे का टैटू बना दो यहाँ शोल्डर पे।
1: अरे रुको रुको, पहले चेक तो कर लो कि निडल नई और डिस्पोजेबल है या नहीं।
0: मतलब?
1: मतलब ये कि संक्रमित सुई से टैटू बनवाने या किसी और तरह की निडल शेयरिंग से HIV एड्स और अन्य संक्रामक बीमारियों के संक्रमण का खतरा होता है, तो ये इंश्योर करें कि सिर्फ नई और डिस्पोजेबल निडल सिरिंजेस का ही यूज कर रहे हो।
0: ये तो बड़ी अच्छी बात बताई है भाई तुमने। अभी भी और आगे भी मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि डिस्पोजेबल नीडल सिरिंजेस ही यूज हों।
2: आप भी सतर्कता अपनाएं और HIV के संक्रमण से खुद को बचाएं। अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम फिल्म संगीत का हमने अगला गीत लिया है फिल्म एक्शन रिप्ले से। इस गीत को लिखा है इरशाद कामिल ने, संगीत प्रीतम का है और आवाज़ दलेर मेहंदी, ऋचा शर्मा, मास्टर सलीम की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आपने सुना फिल्म पार्टनर का ये गीत, जिसको लिखा था जलीस शेरवानी ने। संगीत साजिद अली और वाजिद अली का था, आवाज़ सोनू निगम, कुणाल गांजावाला, श्रेया घोषाल और सूजी की थी। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म BB No. 1 से। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत अनु मलिक का है और आवाज़ सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आपने सुना फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से ये गीत कार्यक्रम। ये गीत था रब ने बना दी जोड़ी से। इस गीत को लिखा था जयदीप साहनी ने, संगीत सलीम सुलेमान का था और आवाज़ सुखविंदर सिंह की थी। कार्यक्रम फिल्म संगीत अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं फिल्म सोनू की टीटू की स्वीटी से इस गीत के साथ, जिसको लिखा है कुमार ने, संगीत रोचक कोहली का है और आवाज़ अरिजीत सिंह की है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये ग्वालियर केंद्र है, प्रातः के 8 बजने को है। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया। पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। कहा, प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और भारत ने पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। श्री मोदी ने आज ही के दिन 7 अक्टूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बने। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का 25 वर्ष का कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की ताकत का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने स्वयं को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा जनसेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने की भावना के साथ काम किया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के 10 प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख किया। पहला बिंदु गुजरात से पूरे देश तक विकास के दृष्टिकोण का विस्तार है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने गुजरात में अपने कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से कई बदलाव किए, जिसके लिए उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने निरंतर सेवा देश की है, इसके लिए कैबिनेट ने अभिनंदन किया माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक प्रस्ताव पारित किया। जिस तरह से गुजरात में प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, नीतियों के माध्यम से कई ऐसे परिवर्तन किए जिसके लिए दुनिया भर में माननीय प्रधानमंत्री जी को जो काम उन्होंने किए वो सारे काम आगे जाके देश के लिए एक बड़ी टेम्पलेट बने। तो गुजरात मॉडल को दुनिया भर में पहचाना गया, सराहा गया और भारत भर में उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई।
1: जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता तथा सुशासन से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में बात करेंगे कि इस दृष्टिकोण को गोवा के सागरमाला कार्यक्रम ने किस तरह साकार किया है।
3: देश की 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा और करीब 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देना है। इसके तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, बेहतर समुद्री संपर्क, तटीय नौवहन को बढ़ावा देने और तटीय समुदायों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश की समुद्री क्षमता का बेहतर इस्तेमाल कर आर्थिक विकास को गति देने पर जोर दिया है।
4: भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है।
3: समुद्र और जलमार्ग गोवा की पहचान का अभिन्न हिस्सा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सागरमाला कार्यक्रम के तहत राज्य में बंदरगाहों और जलमार्गों के विकास के साथ साथ क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। गोवा के कैप्टन पोर्ट्स ऑक्टोवियो रोड्रिग्स ने आकाशवाणी को बताया कि सागरमाला के तहत राज्य में किस प्रकार की पहलें की जा रही हैं।
5: इट इज गोइंग टू चेंज मेनी जेटीज। नाउ सी अनदर 10 जेटीज वी आर गोइंग टू गेट ऑलरेडी अप्रूव्ड और ओनली थिंग नाउ वी हैव नीड टू इंस्टॉल इट। दे आर ऑल फ्लोटिंग जेटीज व्हिच विल टेक केयर ऑफ द टूरिज्म एक्टिविटीज ओवर देयर, पैसेंजर्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू आल्सो कम अप विद द ऑटो मेट्रो।
3: गोवा में अब तक सागरमाला के तहत 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जिन पर करीब 841 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। वहीं करीब 98 करोड़ रुपए की दो अन्य परियोजनाएं फिलहाल कार्यान्वयन के चरण में हैं। इन परियोजनाओं से गोवा के बंदरगाहों और जलमार्गों का आधुनिकीकरण हो रहा है और उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल संभव हो रहा है। साथ ही क्रूज पर्यटन और तटीय अर्थव्यवस्था के विस्तार की नई संभावनाएं भी खुल रही है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के अंतर्गत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के अंतर्गत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि नई सूची में पहले के ढांचे के तहत शामिल 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट।
6: इन कार्यों को चार विषयगत स्तंभों जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचा तथा अत्यधिक मौसम की घटनाओं और आपदा तैयारी के लिए विशेष कार्य के तहत पुनर्गठित किया गया है। नया ढांचा सिर्फ परिसंपत्तियों के पारंपरिक प्रकारों की सूची तक सीमित रहने के बजाय मजदूरी रोजगार को टिकाऊ ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण और विकास परिणामों के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। प्रत्येक कार्य की शुरुआत विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत जमीनी स्तर पर होने वाली विकेंद्रीकृत नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से होगी, जिसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इसे विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से ट्रैक किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत मोबाइल कांग्रेस से पहले कल सेवा तीर्थ में ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत में ये विचार प्रकट किए।
7: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने के लिए प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण आवश्यक है। उन्होंने प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को किफायती और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने अल्पविकसित और विकासशील देशों और बढ़ते डिजिटल विभाजन को रोकने के लिए प्रौद्योगिकी को अंतिम छोर तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौतियों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समस्या के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों की आवश्यकता है। जीएसएमए बोर्ड के सदस्यों ने डिजिटल और मोबाइल कनेक्टिविटी में वैश्विक नेता के रूप में भारत के उदय पर चर्चा की। बैठक में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर, जीएसएमए बोर्ड के सदस्य और सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 10वां संस्करण आज नई दिल्ली के यशोभूमि में शुरू होगा। इस वर्ष इसका विषय है सीमा रहित विस्तार। सम्मेलन में दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दर्शाया जाएगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 1.5 लाख से अधिक लोग, 500 से अधिक प्रदर्शक और साझेदार, 600 से अधिक स्टार्टअप और 900 से ज्यादा विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति के दबाव को देखते हुए लगभग 3.5 साल बाद ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में आरबीआई की नीतिगत रेपो दर 5.25% है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के हिमाचल प्रदेश दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करेंगी।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज अटल टनल रोहतांग का दौरा करने का कार्यक्रम है। वे सुरंग के उत्तर और दक्षिण दोनों पोर्टल पर जाएंगी और इस ऐतिहासिक टनल के बारे में सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों से जानकारी हासिल करेंगी। दोपहर बाद राष्ट्रपति मुर्मू मनाली के प्रसिद्ध हिडिम्बा मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर मनाली, अटल टनल रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, मनाली।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज सुनी जाए। श्री बिरला ने पोरवोरिम में गोवा विधानसभा परिसर के रजत जयंती समारोह में ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: गोवा ने अपनी विरासत और प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए देश की आर्थिक प्रगति के साथ कदम मिलाया है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सहमति और असहमति दोनों लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा है। आजादी के बाद से भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत हुआ है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं ने विभिन्न विचारों, मतों और दृष्टिकोणों को साथ लाने का काम किया है। श्री बिरला ने कहा कि देश और विदेश में आपदा के समय भारत के लोग हमेशा एकजुट होकर खड़े रहे हैं। उन्होंने युवाओं से लोकतांत्रिक संस्थाओं में सक्रिय भागीदारी की अपील की।
2: विपक्षी दलों ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर संसद भवन से निर्वाचन आयोग के मुख्यालय निर्वाचन सदन तक कल विरोध मार्च निकाला। हालांकि निर्वाचन आयोग की ओर जाते समय सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें आकाशवाणी भवन के पास रोक दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य दलों के विपक्षी सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है।

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने सांसदों ने संसद मार्ग पर धरना दिया। बाद में शाम को एसआईआर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आकाशवाणी भवन परिसर में विरोध

0: नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आज बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। भारत ने वेस्टइंडीज को पहले T20 क्रिकेट मैच में 8 विकेट से हरा दिया है। कल रात लखनऊ में खेले गए मैच में भारत की ओर से नमन धीर ने 3 और अक्षर पटेल तथा कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने 172 रन का लक्ष्य सिर्फ 14 ओवर 4 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का दूसरा मैच शुक्रवार को रांची में खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ने पेचिंग में एलेक्स डी मिनोर के चोट के कारण फाइनल से हटने के बाद 7वीं बार चाइना ओपन का खिताब जीत लिया है। ये जोकोविच के करियर का 102वां टूर स्तर का खिताब है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
1: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में जनसेवा के 25 साल पूरे होने को अखबारों ने मुखपृष्ठ पर दिया है। उपलब्धि शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, मोदी का अनूठा रिकॉर्ड, लगातार सत्ता में 25 साल पूरे, कोई चुनाव नहीं हारे। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने दैनिक जागरण में लिखा है, असाधारण जनसेवक हैं प्रधानमंत्री मोदी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अमर उजाला में लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलाव को संभव बनाया है, उन्होंने अपने कामों से ये दिखाया कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल न किया जा सके। छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार ने खोला खजाना, हिंदुस्तान की सुर्खी है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये के SME विकास कोष को दी मंजूरी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कैंप ऑफिस समेत 8 स्थानों पर CBI के छापे को दैनिक ट्रिब्यून ने सुर्खी बनाया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश और प्रवर्तन निदेशालय की रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री के OSD सहित 6 के खिलाफ FIR दर्ज। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित होंगे अब नए वायुसेना प्रमुख। लोकसत्य में एयर मार्शल मौजूदा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का स्थान लेंगे को प्रमुखता दी गई है। विश्व बैंक ने भारत का वृद्धि अनुमान बढ़ाया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% किया।
0: धन्यवाद देवेंद्र। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत 375 अनुमत कार्यों को अधिसूचित किया, पहले के 266 कार्यों की तुलना में 41% की वृद्धि। प्रधानमंत्री ने ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की, कहा प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। रिजर्व बैंक आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। और मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi completes 25 years as head of a government. Union Cabinet passes resolution to commemorate this landmark achievement. Government notifies 375 permissible works under Viksit Bharat G. Ramji scheme, marking 41% expansion from previous 266 works. Prime Minister Modi interacts with board members of Global System for Mobile Communications Association, says technology must become a tool for inclusive and sustainable development. RBI to announce bi-monthly monetary policy this morning. IMD forecasts heavy rain in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. And in men's cricket, India beat West Indies by 8 wickets in the first T20 international, taking 1-0 lead in the 5-match series. Prime Minister Narendra Modi has completed 25 years as head of a government today. His tenure is equally split, consisting of 12.5 years as Chief Minister of Gujarat and 12.5 years as Prime Minister. It was on this day in 2001, Mr. Modi was first sworn in as Chief Minister of Gujarat. He became Prime Minister in May 2014. We have more from a correspondent.
3: To commemorate this landmark achievement, Union Cabinet passed a resolution highlighting his governance journey. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that Mr. Modi's 25-year tenure is a testimony to the strength of Indian democracy. He said a person from an ordinary family who dedicated himself to the service of the nation and is continuing to serve the country is a major example of the vitality, vibrancy

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार है पूर्वी टोन पे, हम सुनवा रहे हैं आपको उनकी आवाज़ में ये भजन।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं पूर्वी टोंडवे। आइए सुनते हैं इनकी आवाज़ में ये अगला गीत।

कार्यक्रम सुगम संगीत का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम सुगम संगीत अब अपने समापन की ओर है। कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं कलाकार पूर्वी टोणवे की आवाज़ में इस गीत के साथ।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 9 बजने को हैं। लीजिए, अब आपके लिए प्रस्तुत है सूचनाओं और समाचारों का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर।

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसके हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है। जी हाँ, आज है विश्व कपास दिवस। कपास की हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण उपयोगिता है और हम जिस राज्य में रहते हैं जिसका नाम मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत खंडवा और खरगोन में कपास का बहुतायत में उत्पादन होता है, जिसे हम पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जानते हैं। विश्व कपास दिवस की स्थापना 2019 में की गई थी, जब उप सहारा अफ्रीका के 4 कपास उत्पादक देशों बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, जिन्हें सामूहिक रूप से कॉटन फोर कहा जाता है, ने 7 अक्टूबर को विश्व व्यापार संगठन को यह दिवस मनाने का प्रस्ताव दिया था। इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए तो इस दिवस का उद्देश्य अल्प विकसित देशों के कपास और कपास से संबंधित उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान कराने की आवश्यकता के प्रति जागरूकता को उत्पन्न कराना है। साथ ही ये संतत व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और विकासशील देशों को कपास मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण से अधिक लाभ प्राप्त करने

0: में सक्षम बनाता है। शीर्ष 5 कपास उत्पादक देश चीन, भारत, ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान हैं, जिनकी कुल मिलकर वैश्विक उत्पादन में 3/4 से अधिक हिस्सेदारी है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो कुल वैश्विक कपास उत्पादन का 23% है। कपास से विश्व में लगभग 2.4 करोड़ उत्पादकों को आजीविका मिलती है तथा 10 करोड़ से अधिक परिवारों को लाभ मिलता है। कपास विश्व में पॉलिएस्टर के बाद दूसरा सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला देश रेशा है, जो कुल रेशा मांग का लगभग 20% है। लगभग 80% कपास का उपयोग परिधानों में किया जाता है, शेष कपास घरेलू वस्त्रों और औद्योगिक उत्पादों में उपयोग किया जाता है। भारतीय कपास निगम की स्थापना जुलाई 1970 में वस्त्र मंत्रालय के अधीन की गई थी। इसका उद्देश्य मूल समर्थन उपायों के माध्यम से कपास मूल्य स्थिरीकरण को सुनिश्चित करना है। इसके अतिरिक्त यह निगम घरेलू वस्त्र उद्योग का व्यावसायिक खरीद परिचालन के माध्यम से समर्थन करता है और विशेष रूप से उत्पादन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उम्मीद करते हैं विश्व कपास दिवस के उपलक्ष्य में जो आपके साथ जानकारी साझा की गई वो आप सभी को पसंद आई होगी।
1: ओ वेलकम है जी, अपना ही गराज है। ट्रक्का वाला गीत है जी।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आपसे एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। भारतीय संगीत की समृद्ध परंपरा में कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो केवल कानों तक नहीं पहुंचती बल्कि सीधे हृदय को स्पर्श करती हैं। ऐसी ही एक अमर आवाज़ थी बेगम अख्तर, जिन्हें प्रेम और सम्मान से मलिकाए गज़ल कहा जाता है। सात अक्टूबर का दिन भारतीय संगीत प्रेमियों के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1914 में फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में बेगम अख्तर का जन्म हुआ था। उनका वास्तविक नाम अख्तरी बाई फैज़ाबादी था। बचपन से ही उन्हें संगीत के प्रति गहरा आकर्षण था और उन्होंने कठिन साधना के माध्यम से शास्त्रीय संगीत, ठुमरी, दादरा और गज़ल गायन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। बेगम अख्तर की गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी भावों की गहराई और आवाज़ की आत्मीयता। उनकी आवाज़ में एक ऐसी मिठास थी जिसमें प्रेम भी था, विरह भी, दर्द भी और जीवन का अनुभव भी। जब वे गज़ल गाती थी तो ऐसा लगता था मानो शब्द स्वयं भावनाओं का रूप लेकर श्रोता के सामने उपस्थित हो गए हों। उन्होंने गज़ल को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया बल्कि उसे एक गंभीर कलात्मक अभिव्यक्ति का स्वरूप प्रदान किया। उनकी प्रस्तुतियों में शास्त्रीय संगीत की बारीकियाँ और उर्दू शायरी की संवेदनशीलता का अद्भुत मेल दिखाई देता है। बेगम अख्तर ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया लेकिन उन्होंने परिस्थितियाँ को अपनी कला के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। उनका संगीत उनके संघर्ष, संवेदना और जीवन अनुभव का प्रतिबिंब बन गया। यही कारण है कि उनकी गाई हुई गज़लें आज भी श्रोताओं को उतनी ही भावुक करती हैं जितनी उनके समय में करती थीं। उनकी लोकप्रियता का दायरा केवल संगीत सभाओं तक सीमित नहीं था, उन्होंने फिल्मों में भी अपनी आवाज़ और अभिनय का जादू बिखेरा। लेकिन अंततः उनका सबसे स्थायी परिचय एक ऐसी महान गायिका के रूप में बना जिन्होंने गज़ल, ठुमरी और दादरा को भारतीय संगीत की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बेगम अख्तर की कला की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सादगी। वे सुरों को दिखावे के लिए नहीं बल्कि भावों को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल करती थी। उनकी गायकी में तकनीकी दक्षता के साथ साथ आत्मा की आवाज़ सुनाई देती थी। उनके योगदान में देश ने भी सम्मान दिया। इन्हें पद्मश्री और बाद में पद्मभूषण जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया। वर्ष 1974 में केरल में त्रिशूर में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान उनका निधन हुआ लेकिन उनकी आवाज़ आज भी भारतीय संगीत विरासत में जीवित है। आज बेगम अख्तर की जयंती पर उन्हें याद करना केवल एक महान गायिका को श्रद्धांजलि देना नहीं बल्कि भारतीय संगीत की उस परंपरा को नमन करना है जिसमें सुर, साधना, साहित्य, संवेदना और संस्कृति का अद्भुत संगम दिखाई देता है। आज की युवा पीढ़ी के लिए बेगम अख्तर का जीवन यह संदेश देता है कि महानता केवल प्रतिभा से नहीं बल्कि लगन, अनुशासन, निरंतर अभ्यास और अपनी कला के प्रति समर्पण से प्राप्त होती है। आइए उनकी जयंती के अवसर पर

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

ये अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर, और आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग ग्वालियर में एक बार पुनः स्वागत है। नई विधा में नोवल भविष्य के लिए आशान्वित करती है। इस वर्ष चिकित्सा का नोवल पुरस्कार संयुक्त रूप से तीन वैज्ञानिकों को ऑप्टोजेनेटिक्स की नई विधा में उल्लेखनीय काम करने के लिए मिला है। इसमें प्रकाश के जरिए मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के व्यवहार में बदलाव लाया जा सकता है। इनका शोध दुनिया में ब्रेन रेटिना बीमारियों के अलावा बुढ़ापे की बीमारियों जैसे पार्किंसन, अल्जाइमर, मिर्गी, अवसाद, दर्द और अन्य सेंसरी तकलीफ़ों और न्यूरॉन क्षरण के इलाज में उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। ऑप्टोजेनेटिक्स नाम ही इन तीनों वैज्ञानिकों में एक कार्ल डिसेरोथ ने 2006 में अपने एक शोध में दिया था। ऑप्टोजेनेटिक्स के क्षेत्र में शोध के लिए यह पहला नोबेल है। इसके पहले 1967 में चिकित्सा

के ही फिजियोलॉजी विभाग में विजन और न्यूरो सिग्नल्स पर शोध के लिए 3 वैज्ञानिकों को नोबेल से नवाजा गया था। नए शोध से भावी चिकित्सीय लाभ का आयाम काफ़ी विस्तृत होगा, जिसमें दिमागी बीमारियों के सभी पहलुओं को प्रकाश के जरिए दुरुस्त करने की क्षमता होगी। हाल ही में माइक्रोबायोलॉजी, खासकर जेनेटिक्स विभाग पर शोधों ने एक नई क्रांति को जन्म दिया है। कृषि में बीजों से लेकर मानव जीन्स में मॉडिफिकेशन और एडिटिंग से बीमारियों के मूल कारणों को खत्म किया जा रहा है। भारत ने बीजों में मॉडिफाइड जीन्स पर तो प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन कृषि वैज्ञानिकों ने चावल और दाल की कई किस्मों पर जीन एडिटिंग के जरिए प्रतिरोधी क्षमता विकसित की है और अब उनका प्रयोग शुरू किया जा रहा है। ऑप्टोजेनेटिक्स का यह शोध ही मानव कल्याण में नई पहल होगी।

मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलोहर्ट्ज़ तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 9:30:21 हुए हैं। लीजिए अब आप सबके लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के कार्यक्रम में कलाकार हैं हिमांशु विश्वरूप और इनके द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है वॉयलिन वादन में राग बिलास खानी तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आपने सुना कलाकार हिमांशु विश्वरूप को, और इन्होंने प्रस्तुत किया वॉयलिन पर राग बिलास खानी तोड़ी। मीडियम वेव 216.45 मीटर यानी 1386 किलो हर्ट्स तथा मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10 बजने को हैं। ज़िले की चिट्ठी का प्रसारण अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

अल्मोड़ा जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की। जिले के चंद्रिकापुर में आंगन मिलन कार्यक्रम में महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और महिला कल्याण योजनाओं की जानकारी दी गई। पोषण का संदेश देने के लिए विटामिन वाले अनाज से रंगोली भी सजाई गई। वहीं अमरवाड़ा में 15 वार्डों का सामूहिक आंगन मिलन हुआ, जहां विधायक कमलेश शाह ने सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं त्योहारी सीजन में मिलावट के खिलाफ भी प्रशासन सख्त है। छिंदवाड़ा के चांद क्षेत्र के ग्राम सटोटी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने गुड़ बनाने वाली एक इकाई पर कार्रवाई की। जांच में पुराना और खराब गुड़ दोबारा तैयार कर बेचने की बात सामने आई। यूनिट के पास खाद्य लाइसेंस भी नहीं था, जिसके चलते यूनिट को सील कर दिया गया। अब बात उस वीरांगना की, जिसका साहस आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। रानी दुर्गावती की 502वीं जयंती पर छिंदवाड़ा में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राजीव भवन में उनके पराक्रम और सेवा को याद कर श्रद्धांजलि दी गई, तो वहीं रानी दुर्गावती चौक पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं दूसरी तरफ पांडोना के विकास को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जिले के विकास में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। जिला सलाहकार समिति की बैठक में रोजगार के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने, कृषि और कौशल विकास का विस्तार करने और पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए। हनुमान लोक के अगले चरण के काम में तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी एक अच्छी पहल हुई है। छिंदवाड़ा के गोधुली वृद्धाश्रम परिसर में डे केयर सेंटर शुरू किया गया है। यहां बुजुर्गों के स्वास्थ्य परीक्षण, योग, ध्यान, मनोरंजन और आपसी संवाद की सुविधा रहेगी। इसके साथ ही डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के जरिए उन्हें साइबर ठगी और ऑनलाइन लेन देन में सावधानियों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। अब बात करते हैं खेती और मौसम की। पांडुना में इस मानसून सत्र में अब तक 623.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो कि सामान्य से करीब 23% कम है। इसका असर खरीफ की बोनी पर भी पड़ा है और पिछले साल के मुकाबले बोनी क्षेत्र करीब 6.41% कम रहा। हालांकि ये कमी सूखे के 15% वाले संकेतक से नीचे है। कम बारिश को देखते हुए किसानों को अब रबी में कम पानी वाली फसलों पर जोर देने की सलाह दी गई है। कृषि विभाग ने सरसों, चना और अलसी को प्राथमिकता देने को कहा है। छिंदवाड़ा की कृषक वैज्ञानिक परिचर्चा में भी किसानों को उपलब्ध नमी का बेहतर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं सही किस्म के प्रमाणित बीज लेने और जीरो टिलेज तथा उतेरा पद्धति अपनाने की सलाह भी दी गई है। पानी की चिंता सिर्फ खेतों तक नहीं, बल्कि आने वाली गर्मियों में पेयजल को लेकर भी है। जिला विकास

एवं निगरानी समिति की बैठक में गर्मी के लिए अभी से पेयजल और जल संरक्षण की तैयारी पर चर्चा की गई। सांसद विवेक बंटी साहू ने साल भर पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब छिंदवाड़ा की खूबसूरत वादियों की बात करते हैं। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने वाली 10 दिवसीय मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन सावरवानी और तामिया पहुंची। करीब 1520 किलोमीटर की इस यात्रा में देश विदेश के 22 राइडर्स शामिल हैं। सावरवानी में राइडर्स ने होम स्टे और स्थानीय लोक नृत्य का आनंद लिया, जबकि तामिया में पातालकोट समेत दूसरे पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी ली। पर्यटन को एक नया रंग देने के लिए धूसावानी को एस्ट्रो विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर्यटक खुले आसमान के नीचे चांद, ग्रह और तारों को देख सकेंगे। स्थानीय 25 युवक युवतियों को प्रशिक्षण देकर एस्ट्रो गाइड बनाया जा रहा है। सेवा और स्वच्छता की बात करें तो गांधी जयंती पर छिंदवाड़ा में सेवा मेरा योगदान अभियान चलाया गया। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने जिला अस्पताल से फव्वारा चौक तक सफाई की। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद पार्क में पौधरोपण किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त परिसर का संदेश दिया गया और बेहतर कार्य करने वाले स्वच्छता कर्मियों को इस अवसर पर सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में माय भारत वॉलंटियर्स का प्रशिक्षण भी हुआ। युवाओं से स्वच्छता, पर्यावरण, शिक्षा, खेल, कौशल विकास और जनसेवा से जुड़े कामों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने की अपील की गई। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन की। प्रदेश के कृषि संकाय के विद्यार्थियों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्नातक काउंसलिंग में प्रवेश का रास्ता आसान हुआ है। अब ABC और इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम के विद्यार्थियों को भी प्रवेश का अवसर मिलेगा। इससे कृषि स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले की राह आसान होगी। और आखिर में बात करते हैं जंगल, वन्यजीव और बच्चों की। वन्यजीव संरक्षण सप्ताह के तहत सांवरी और छिंदवाड़ा वन परिक्षेत्र के स्कूलों में बीते दिनों निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 120 बच्चों ने जंगल, वन्यजीव और इंसान के साथ प्रकृति के सह अस्तित्व को अपनी कल्पनाओं के जरिए कागज पर उतारा। छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों की रिपोर्ट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे छिंदवाड़ा जिले की चिट्ठी, आलेख था राकेश प्रजापति का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए अब आपके लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की पहली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है MLB रोड ग्वालियर से। सुरेश खुराना पप्पी, किरण खुराना, लव्या और आरव खुराना के साथ साथ SK पप्पी की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से। गुरुदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा परिवार की। इसी के साथ उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल ने भी फरमाइश की है। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म अजनबी से इस गीत की, जिसको लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का है और आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ।
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना, कुछ तो।
2: कभी छोड़ दे मेरा साथ,
3: फिर ना कभी कहना।

0: बधाई हो, आपकी बीवी प्रेग्नेंट है।
1: सच?
0: हाँ हाँ सच। लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है आपके कंधों पर। आपको माँ और उसके होने वाले बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखना होगा और जल्दी से जल्दी HIV की जांच भी करवाना, क्योंकि HIV का संक्रमण गर्भ के दौरान माँ से बच्चे को भी हो सकता है।
1: डॉक्टर, अगर HIV पॉजिटिव आए तो
0: बिना कोई देरी किए ART केंद्र से ART ट्रीटमेंट लो, ताकि समय पर माँ और बच्चे दोनों को सही केयर दी जा सके।
1: डॉक्टर, हम आज ही जाकर HIV की जांच कराते हैं।
0: और इस बारे में अगर कोई भी जानकारी लेनी हो तो मुझे या फिर 1097 पर कॉल कर लेना।
2: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। समय है इस कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का, जो कि हमें प्राप्त हुई है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी की। संदलपुर आत्री से कालीचरण यादव, दीपक यादव, चांदनी यादव और उर्मिला देवी यादव की। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी और आसना अंसारी के साथ साथ मोहम्मद कैफ अंसारी की। कुम्भार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन और पांडुरंग कुम्भार की। बठिंडा रोड मंडी

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। कार्यक्रम की अगली फरमाइश प्राप्त हुई है बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग की। और इसी के साथ एक फरमाइश और प्राप्त हुई है गांव

जाखौद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक की। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, सायना शर्मा और निवान शर्मा की, और इसी के साथ मंडी शर्मा की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म शोर से इस गीत की, जिसको लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है, आवाज़ मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्यामा चित्तर की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश का प्रसारण आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम में समय है कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का, जो कि है दादरी गेट विभानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें और प्राप्त हुई है। फरमाइश करता है धनौरा बिटाली तहसील नांदूरा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मांगेश पाटिल और सचिन पाटिल। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर विर्क, जयतेग विर्क और मीका विर्क। एक फरमाइश हमको और प्राप्त हुई है ग्राम महेशबाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न ढाड़े, वकील वाल्मीकि ढाड़े, निनाजी धाड़े और स्वप्निल धाड़े की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म आंधी से।

गीत की, जिसको लिखा है गुलजार ने, संगीत राहुल देव बर्मन का है और आवाज़ लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश कुछ कार्यक्रम में शामिल करते हैं जो कि हमें प्राप्त हुई है गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी और बेबी वामिका और वाणी की। इसी के साथ एक फरमाइश हमें प्राप्त हुई है पटेल नगर मलौत से डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया, गीता रानी जाजौरिया, गगनदीप जाजौरिया, आरजू जाजौरिया और गुड्डू की। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया,

और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की। और अंत में जो फरमाइश प्राप्त हुई है, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म यादों की बारात से इस गीत की, जिसको लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का है और आवाज़ आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: बधाई हो दद्दा, बहुत बहुत बधाई हो। बिटिया जन्मी है, घर में लक्ष्मी आई है, बहुत बहुत बधाई हो।
1: बेटी को भी समझे बेटा समान, उड़ने को दे खुला आसमान, फिर देखें बेटियों की उड़ान, नाप लेंगी अपने नन्हे परों से पूरा आसमान।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का, जो कि हमें प्राप्त हुई है दतरेंगी छत्तीसगढ़ से। भागवत शर्मा शांति देवी, क्षमा कीजिएगा, भागवत वर्मा शांति देवी, लीलावती विनीता और रुद्र वर्मा की। इसके साथ एक फरमाइश हमें और मिली है बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक और मयंक मूणत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूणत की। समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतांग बिहार से सोनम सिंह और अनामिका सिंह की। जेल रोड रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा और कुसुम मिश्रा। जलंधर से मीना कौर और संदीप कौर। खंडवा से राकेश, पिंकी और दुर्गा की। लोनी से नंसी नसीमुल इस्लाम, मुनौरी, प्रकाश, वीर राजपूत और अनुप्रिया चंद्रवंशी की। और रेडियो के दीवाने ग्रुप दिल्ली से रेशमा अंसारी और शकीला अंसारी की। छत्तीसगढ़ कोरिया से डोनट पाबो। छत्तीसगढ़ से प्रभा जयपुरिया और गौरैया से अशोक जाटव। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म ब्लैकमेल से इस गीत की, जिसको लिखा है राजेंद्र कृष्णा ने। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और आवाज़ किशोर कुमार की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश आकाशवाणी ग्वालियर से आप सुनते हैं रविवार से शुक्रवार तक सुबह 10:05 से सुबह 11 बजे तक। यदि आप भी अपनी फरमाइश पर कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 9425702768। एक बार फिर से सुनिए 9425702768। तो कार्यक्रम सुनिए और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी फरमाइश भी हम तक पहुंचाइए।
1: समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू जमुना देवी साहू प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू की। और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है फिल्म कभी कभी से इस गीत की, जिसको लिखा है साहिर ने, संगीत खयाम का है और आवाज़ किशोर कुमार और लता मंगेशकर की है। ये सुनते हैं इनकी फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अगला गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। समय है कार्यक्रम में कार्यक्रम की अगली फरमाइश को शामिल करने का। कार्यक्रम में अगली और अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा की। हरदोई रोड लखनऊ उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और इन सभी लोगों ने फरमाइश की है। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से इस गीत की, जिसको लिखा है संतोष आनंद ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और आवाज़ लता मंगेशकर की है। आइए सुनते हैं इन सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का ये अंतिम गीत।

ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। प्रातः के 10:58 होने को हैं। इस घंटे की खास खबर का प्रसारण कुछ ही देर में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ऑनलाइन सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य डॉ आर बालासुब्रमण्यम करेंगे। केंद्र सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत अनुमत कार्यों की सूची अधिसूचित कर दी है। नए ग्रामीण कार्य ढांचे के तहत कुल 375 कार्यों को अनुमत किया गया है, जिनमें 41% की वृद्धि की गई है। वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने कल मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से मुलाकात कर 15 जनवरी 2027 को भोपाल में होने वाले सेना दिवस कार्यक्रम का आमंत्रण दिया। इसकी मुख्य परेड BHEL क्षेत्र में होगी, जबकि सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी जम्बूरी मैदान में लगाई जाएगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आज से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट शुरू हो रहा है। इसमें 34 देशों के 100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और 15 राज्यों के 180 घरेलू टूर ऑपरेटर समेत 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित सत्र में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। वहीं उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया है। स्मृति मंधाना इससे पहले 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 4 एकदिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी कर चुकी हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
2: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान और हमारे जो श्रोता हैं, हम अपना फोन नंबर उनको बता देते हैं। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। हमारे जो पुराने श्रोता हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि यदि आपका फोन हफ्ते भर के अंदर लगा है तो कृपया हमारे नए श्रोताओं को मौका दें। और अब हम देखते हैं कि हमारे पहले श्रोता कौन हैं। कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है। मेरी बात किससे हो रही है?
3: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापत आपका नियमित श्रोता।
2: तो आप बताइए क्या हाल चाल है?
3: बहुत ही बढ़िया सर,
2: बस बढ़िया ही रहना चाहिए। और आप हमारे कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं?
3: आइए आपकी बात आपके साथ और समय में मतलब आकाशवाणी भोपाल नमस्कार है, हर वक्त सुनता रहता हूँ।
2: वाह वाह वाह, और ये तो बड़ी अच्छी बात कही आपने, आप हमारे सभी कार्यक्रम सुनते रहते हैं
3: जी।
2: तो अब ये बताइए आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
3: रफी साहब की आवाज में कोई भी गीत दे दीजिए आप।
2: अब मुझे बता दीजिए कौन सा गाना।
3: रफी साहब की आवाज में कोई भी गीत दे दीजिए आप, ये कोई भी चलेगा। अपने तो अपने को तो मतलब श्रोता होने के नाते कॉल जरूरी है।
2: हाँ हाँ, तो ये
3: 2 महीने बाद में।
2: हाँ, तो अब आपको हम ये गाना सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी ने लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत अपने रेडियो सेट पर।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। मेरी बात किस से हो रही है?
1: सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: हम चंद्रेश बोल रहा हूँ, मजमुआ सानी से, जिला रायसेन, तहसील बेगमगंज।
0: अरे वाह, क्या जी चंद्रेश जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल साहब बढ़िया है।
0: बस बढ़िया ही होना चाहिए। और सुनाइए कि आपके आसपास का माहौल कैसा? बेहतरीन है?
1: हाँ अच्छा है साहब माहौल।
0: पानी तो चला गया?
1: हाँ पानी तो गया।
0: हाँ अब क्या खास है
1: साहब? हम कुछ कर नहीं पाते, विकलांग हैं जी, घर में जो काम है वो करते रहते हैं, चला फिरी का।
0: चला फिरी का घर का काम वही करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि आपने कॉल किया है तो आपके मन में कोई सा गाना होगा जिसके लिए आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, बताइए वो गाना कौन सा है?
1: सर फिल्म का नाम है खोज।
0: खोज, अच्छा खोज फिल्म का
1: गाने वो ना, याद तुम्हारी जब जब आए।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवा रहे हैं। ये नितिन मुकेश की आवाज़ है, अनजान का लिखा हुआ है, बपी लहरी का संगीत है। सुनिए अपने रेडियो सेट पर ये गाना।

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आपका स्वागत है, मेरी बात कैसे हो रही है?
1: जी श्रीमान जी, ग्राम बापुर छतीपुर ग्राम पंचायत छतीपुर तहसील करेरा जिला शिवपुरी से सरनाम सिंह रजक।
0: रजक जी क्या हाल चाल है?
1: बस आपकी दुआओं से ऊपर वाले की कृपा से सर बहुत बढ़िया सर।
0: बस बढ़िया ही रहना चाहिए, हमारी यही दुआएं हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हैं और हमारे सारे देश के लोग बहुत बढ़िया रहें और सारी दुनिया के लोग बढ़िया रहें।
1: शिरसा जी को शुभ विचार है। मुस्कान से खिला चेहरा हर गम की दवा है।
0: हाँ,
1: मुस्कान से खिला चेहरा हर गम की दवा है, दुख का कोई भी पहरा, दुख का कोई भी पहरा इसके आगे नहीं ठहरा है। और सर जी,
0: जी
1: हाथी से 1000 गज की दूरी और घोड़े से 100 हाथ की दूरी और सींग वाले जानवर से 10 हाथ की दूरी और दुष्ट इंसान जहाँ पर भी हो वो स्थानीय त्याग देना चाहिए श्रीमान जी।
0: अरे वाह क्या बात है, इतने अच्छे विचार आपको कहाँ से ग्रहण करते हैं, आप कहाँ से लाते हैं?
1: पंचायत विभाग में नौकरी करता हूँ सर जी, पंचायत में नौकरी करता हूँ, उसे मेरे कंप्यूटर लैपटॉप पे आते हैं जी।
0: अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, तो आपको याद हो जाते हैं?
1: जी श्रीमान जी, मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और फिर याद कर लेता हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है, और इतनी अच्छी बात है याद करने से, जब हम अच्छी चीजें पढ़ते हैं ना तो हमारे मन के विचार भी अच्छे होते हैं। और जैसा
1: 1000 शुभ विचार है मेरे पास, 1000।
0: अरे वाह क्या बात है,
1: ये करके रखा है 1000 मैंने।
0: अच्छा अब ये बताइए कि देखिए आपने सुविचार है, आपके इतने शानदार विचार होने के साथ में गाना कौन सा आपने चुना है?
1: श्रीमान जी आप मुझे सुनवा देना, वो है फिल्म का नाम है आगे की सोच।
0: आगे की सोच
1: जी हाँ। सपना ओ सपना सपना मुझे बना ले अपना, शहर में क्या रखा है गोरी, गांव में आके बसना ओ मेरी प्यारी सपना।
0: वाह वाह वाह, किशोर कुमार उषा मंगेशकर की आवाज है, बाल किशनपुरी का लिखा हुआ ये गाना है, राम लक्ष्मण का संगीत है, हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
2: सपना

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जावेद खान। मेरी बात किससे हो रही है?
1: सहीना भी बोल रहे हैं, हम शहडोल से बोल रहे हैं।
0: शहडोल से बोल रही हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि क्या हाल चाल है?
1: हमारा सब अच्छा है सर।
0: और आपके आसपास का मौसम कैसा है?
1: आज का मौसम थोड़ा गड़बड़ है सर, पानी थोड़ा बुलिया रहा है
0: जी।
1: आप ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अब ये बताइए हमें कि कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: सलमान खान का कोई सा भी गाना सुनना है।
0: अगर आप फिल्म का नाम बता देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: साजन का गाना।
0: साजन का, चलिए साजन का हम आपको गाना सुनवा रहे हैं। साजन फिल्म का कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: कोई सा भी सुना दीजिए।
0: चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं पहली बार मिले हैं, ये SP बालसुब्रमण्यम की आवाज है। सुनिए अपने रेडियो सेट पर

0: कार्यक्रम फोन करेगी सुने में आप सभी का स्वागत है और अगले कॉलर हमारे कौन हैं हम उनसे बात करते हैं।
1: जी कहते हैं जो लोग समाज पर अपना कंट्रोल करता उसे सुपरमैन कहते हैं।
0: वाह क्या बात है।
1: लेकिन सर जी मैं कहता हूँ कि जो अपने ऊपर कंट्रोल करता है वो सुपरमैन कहलाता है, जो अपने अंदर के आत्मा के ऊपर कंट्रोल करता है वो सुपरमैन कहलाता है।
0: वाह क्या बात है क्या बात है, इतनी ज्ञान की बातें आपने हमें दी। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ और सर जी को सत नमस्कार कर रहा हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपने कॉल किया।
1: जावेद सर जी बोल रहे हैं?
0: जी मैं जावेद खान बात कर रहा हूँ।
1: जी जी जी जी जी बहुत दिन के बाद रूबरू हुए हैं और आपसे रूबरू होकर जो है हम गदगद हो गए।
0: वाह क्या बात है, हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप कॉल करते हैं।
1: और कहते हैं जो न झुकता है न रुकता है
0: जी,
1: और जो अपनी जान पर खेल कर दूसरों की जान बजाता है वही हिंदुस्तानी कहलाता है।
0: वाह क्या
1: हिंदुस्तानी कहलाता है।
0: वाह क्या बात है क्या बात है, यही हमारे देश की भावना हर एक व्यक्ति में होना चाहिए और देश के प्रति इतनी आस्था।

0: था, या ये कहें कि देश के प्रति इतनी प्यार मोहब्बत, यही हमारे देश को मजबूत बनाता है।
1: बिल्कुल, जो हमारे अंदर जो है संस्कार दिए जाते हैं वो सर्वधर्म सद्भाव के संस्कार दिए जाते हैं, और उसी में हम लोग जीते हैं, उसी में हमारी अनेकता में एकता, और वही हमारी राष्ट्रशक्ति है, वही हमारी राष्ट्रभक्ति है।
0: हाँ बिल्कुल, क्या बात कही है आपने। तो अब ये बताइए कि कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती हो बसेरा, वो भारत देश है मेरा। सर जी ये गीत मुझे सुनना है।
0: ये गाना है, ये
1: मेरे सामने प्रेमदास बाबा जी बैठे हैं और उनके साथ ये गीत को मैं सुनूंगा।
0: ये गाना है सिकंदर आजम का।
1: जी जी जी जी सर जी, तो ये गीत मुझे सुनना है, और मैं जो है इस गीत को जो है आपके साथ और अपने प्रेमदास बाबा जी जो हमारे साथ बैठे हैं और उनके साथ ये गीत को मैं सुनना चाहूंगा।
0: अरे बिल्कुल, आप सुनिएगा अपने रेडियो सेट पर, लीजिए सुनिए ये गीत।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुनने में आपका स्वागत है। मेरी बात किससे हो रही है?
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: हाँ, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से।
0: जाखड़े साहब, क्या हाल चाल है?
1: हाँ, अभी तो इधर सर गर्मी है बहुत, अभी
0: गर्मी है
1: बहुत अभी।
0: हाँ, अच्छा,
1: गर्म बहुत हो रहा है।
0: वो तो प्रकृति का नियम है, कहीं गर्मी, कहीं धूप, कहीं साया, कहीं बरसात, ये सब चीज़ें तो हैं। और इसी के बीच में जो हर पल आगे बढ़ता रहता है, बस यही तो जिंदगी है।
1: हाँ, बराबर है
0: ना। तो अब आप हमें ये बताइए कि कौन सा गाना आपने पसंद किया है आज सुनने के लिए?
1: हाँ, हमें मोहम्मद रफी के आवाज में वो गाना है, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।
0: नहीं, ये किशोर कुमार की आवाज है।
1: अच्छा, किशोर कुमार का है क्या?

0: मैं ग्राम गोपीक्रिया तहसील भांडेर जिला दतिया बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से राहुल पाल बोल रहा हूँ।
1: राहुल जी क्या हाल चाल है?
0: सर जी मेरे हाल चाल बहुत बढ़िया है, आप बताएं सर जी आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल शानदार, सदाबहार, बहुत अच्छे।
0: जी जी सर जी, मैं फिलहाल दिल्ली NCR फरीदाबाद में रहकर प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और दिल्ली NCR का मौसम बहुत बढ़िया है, धूप खिली हुई है और रात्रि के समय में गुनगुनी सर्दी भी पड़ने लगी है, गुलाबी गुलाबी सी।
1: अरे वाह क्या बात है। तो अब ये बताइए कि आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
0: हमारा हेलो फरमाइश एकता रेडियो श्रोता ग्रुप है, उस ग्रुप से हम जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप के कुछ सदस्य हैं गौतम राय बोले जी, सत्येंद्र कुमार चंचोलिया जी, सतीश रघुवंशी जी, सुनील झा जी, सोनू गौतम जी, भगवान सिंह परमार जी, लोकेंद्र वर्मा जी, तुकाराम यादव जी, इसके अलावा विजय पाटिल जी, राजू यादव जी, फूलचंद पाल जी, मणिराम पाल जी, मोहम्मद वकर फरीदी जी और हैं लोकेंद्र गुर्जर जी के साथ मेहरबान सिंह नागल।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत,
0: आज मुझे आप सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम रहेगा जीत और गीत के बोल रहेंगे अभी सांस लेने की फुर्सत।

0: कार्यक्रम फोन करेगी, सुने में आपका स्वागत
1: हेलो
0: है। हेलो
1: जी सर, नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: सर मैं नरेंद्र दांगी बोल रहा हूँ, जिला सीहोर।
0: क्या हाल चाल है
1: सर? खेती बाड़ी करते हैं, सोयाबीन की फसल की कटाई चल रही है हमारे क्षेत्र में अभी।
0: हाँ, सोयाबीन कटना शुरू हो गया?
1: इस बार कम हुआ बहुत ही, ये मानो पिछले बार से आ गया आज।
0: अच्छा, और
1: हाँ कुछ हो सकता बारिश के कारण हुआ, पहले बारिश नहीं हुई, बाद में रेगुलर हुई, उससे फर्क पड़ रहा है।
0: अब ये बताइए कि कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: शाम के समाचार तो परमानेंटली सुनते हैं 7-10। सर फिल्म खराब है, मैं तुलसी तेरे आंगन की गीत के बोले, ये खिड़की जो बंद रहती है।
0: ये खिड़की जो बंद रहती है, ऐसी कौन सी खिड़की है जो बंद रहती है?

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों भारतीय पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 25 वर्षों में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर आज प्रदेश भर में सेवा ज्योति यात्राएं निकाली जा रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। अब रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। रिजर्व बैंक के स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की दर 5.25% तय की गई है। वहीं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर को भी बढ़ाकर

0: 5.75% कर दिया गया है। भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में आज से 4 दिवसीय मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट की शुरुआत हो रही है। इसमें 34 देशों के 100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय और 15 राज्यों के 180 घरेलू टूर ऑपरेटर समेत 600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 8 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित सत्र में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। वहीं उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा भी की जाएगी। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया है। स्मृति मंधाना इससे पहले 18 T20 अंतर्राष्ट्रीय और 4 एक दिवसीय मैचों में भारत की कप्तानी कर चुकी हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है फिल्म रखवाला से। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण के शब्द हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। पसंद आप सब श्रोताओं की। इस गीत को पसंद किया है बठेना के श्रोताओं ने। ये हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। सारा गांव के श्रोता भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। ये है सुजान वर्मा, सौहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। पालदा नाका इंदौर के श्रोता हैं हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और मोहम्मद रफ़ी मंसूरी। सिंहपुर बड़ा के श्रोता हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा। उमरखेड़ महाराष्ट्र के श्रोताओं की भी यही पसंद है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं अभिजीत गवाड़कर, सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन और इनके परिवार के सदस्य। बहादुरा नागपुर के श्रोताओं की भी पसंद यही गीत है। पत्र लिखने वाले श्रोता हैं वैशाली शैलेश गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर। तो आइए सुनते हैं इन सब की पसंद पर रखवाला फिल्म का ये नगमा।

0: अब आपको सुनवा रहे हैं घर औंदा फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है रूना लैला और भूपेंद्र ने, गुलजार के बोल हैं, संगीत जयदेव का है। पसंद आप सब श्रोताओं की। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचौलिया, प्रियंका पंचौलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सनमति पंचौलिया। बक्सर बिहार से शरीफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम आबिदा, दानिश अंसारी, और बक्सर से ही हैं राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन इस गीत को सुनना चाहते हैं। रिंगनी छत्तीसगढ़ के श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, उनकी भी फरमाइश घरौंदा फिल्म का ये नगमा है।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

लीजिए सुनिए रंग फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों ने। समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। पसंद आप सब श्रोताओं की। बिस्वा से ये पत्र हमें लिखा है नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश, कार्तिक, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति और प्रयाग चौधरी, इनका साथ दिया है मालती चौधरी और खुशी वाणी ने। बक्सर से जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की, गौरीनगर इंदौर से। तो आइए सुनते हैं रंग फिल्म का ये नगमा।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हमने आपके लिए चुना है आन मिलो सजना फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। पसंद आप सब श्रोताओं की। धामणी मानोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण और प्रज्वल के साथ अनुत डेरे इस गीत को सुनना चाह रहे हैं। इसी गीत को पसंद किया है छबड़ा राजस्थान के श्रोताओं ने भी। ये हैं आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। डबरीपारा के श्रोता हैं महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र गजेंद्र और जयंती मरकाम। कुछ और श्रोता इसी गीत को पसंद कर रहे हैं, इन्होंने हमें पत्र लिख भेजा है भाटापारा दतरिंगी से। छत्तीसगढ़ के ये श्रोता हैं द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा। बिजनौर के श्रोता भी इसी गीत को सुनना चाहते हैं। ये हैं मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल।

0: आन मिलो सजना, इस फिल्म का गीत आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज़ थी, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। श्रोताओं, अगर आप भी अपनी पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी, श्यामला हिल्स, भोपाल, और यहाँ का पिन कोड है 462002। तो आप हमें पत्र लिखिए अपनी फरमाइश पूरी करने के लिए, और फिलहाल आज के इस कार्यक्रम से अनुमति दीजिए। नमस्कार। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे आपकी फरमाइश कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर। सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6:00 आकाशवाणी भोपाल पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबा से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।
2: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है संग्रहालय से कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति। आज सुनिए इसका छठवां भाग।
1: मुल्क जन्नत निशा के इतिहास में वो बहुत अंधेरा वक्त था जब शाह किश्वर की फतहों की बाढ़ बड़े जोर शोर के साथ उस पर आई। सारा देश तबाह हो गया, आजादी की इमारतें ढह गईं और जानो माल के लाले पड़ गए। शाह बामुराद खूब जी तोड़कर लड़ा, खूब बहादुरी का सबूत दिया और अपने खानदान के 3 लाख सूरमाओं को अपने देश पर चढ़ा दिया। मगर विजेता की पत्थर काट देने वाली तलवार के मुकाबले में उसकी ये मर्दाना जांबाजियां बेअसर साबित हुईं। मुल्क पर शाह किश्वर कुशा की हुकूमत का सिक्का जम गया और शाह बामुराद अकेला और तन्हा, बेयारो मददगार, अपना सब कुछ आज़ादी के नाम पर कुर्बान करके एक झोपड़े में ज़िंदगी बसर करने लगा। ये झोपड़ा पहाड़ी इलाके में था, आसपास जंगली कौमें आबाद थीं और दूर दूर तक पहाड़ों के सिलसिले नज़र आते थे। इस सुनसान जगह में शाह बामुराद मुसीबत के दिन काटने लगा। दुनिया में अब उसका कोई दोस्त न था। वो दिन भर आबादी से दूर एक चट्टान पर अपने ख्याल में मस्त बैठा रहता था। लोग समझते थे ये कोई ब्रह्म ज्ञान के नशे में चूर सूफी है। शाह बामुराद को यूं बसर करते एक जमाना बीत गया। जवानी की विदाई और बुढ़ापे के स्वागत की तैयारियां होने लगीं। तब एक रोज शाह बामुराद बस्ती के सरदार के पास गया और उसने कहा,
2: मैं अपनी शादी करना चाहता हूं।
1: वो अचंभे में आ गया, मगर चूंकि दिल में शाह साहब के कमाल और फकीरी में गहरा विश्वास रखता था, पलटकर जवाब न दे सका और अपनी कुंवारी नौजवान बेटी रिंदा की शादी उनसे कर दी। तीसरे साल इस युवती की कामनाओं की वाटिका में एक नौरस पौधा उगा। शाह साहब खुशी के मारे जामे में फूले न समाए, बच्चे को गोद में उठा लिया और हैरत में डूबी हुई माँ के सामने जोश भरे लहजे में बोले,
2: खुदा का शुक्र है कि मुल्क जन्नत निशा का वारिस पैदा हुआ।
3: ये नाजुक सा बच्चा इस मुल्क का बादशाह होगा।
2: बेशक बेगम, मुझे खुशी है अक्ल और जहानत में, हिम्मत और ताकत में ये अपनी दुगनी उम्र के बच्चों से बढ़कर है।
1: सुबह होते ही गरीब रिंदा बच्चे का बनाव सिंगार करके और उसे नाश्ता खिलाकर अपने काम धंधों में लग जाती थी और शाह साहब बच्चे की उंगली पकड़कर उसे आबादी से दूर चट्टान पर ले जाते थे। वहां कभी उसे पढ़ाते, कभी हथियार चलाने की मश्क कराते और कभी उसे शाही कायदे समझाते। बच्चा था तो कमसिन, मगर इन बातों में ऐसा जी लगाता और ऐसे चाव से लगा रहता गोया उसे अपने वंश का हाल मालूम है। मिजाज भी बादशाहों जैसा था। गांव का एक एक बच्चा उसके हुक्म का फरमा बरदार था। माँ उस पर गर्व करती, बाप फूला न समाता और सारे गांव के लोग समझते कि वो शाह साहब के जब तप का असर है।
3: मेरा बच्चा मसूद देखते देखते 7 साल का हो गया है, या अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाना।
1: एक रोज शाम का वक्त था, शाह साहब अकेले सैर करने गए और जब लौटे तो उनके सर पर एक जड़ाऊ ताज शोभा दे रहा था। रिंदा उनका ये हुलिया देखकर सहम गई और मुंह से कुछ बोल न सकी। तब उन्होंने नौजवान मसूद को गले से लगाया, उसी वक्त उसे नहलाया धुलाया और एक चट्टान के तख्त पर बैठाकर दर्द भरे लहजे में बोले,
2: मसूद, मैं आज तुमसे रुखसत होता हूँ और तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूँ। ये उसी मुल्क जन्नत निशा का ताज है। कोई वो जमाना था कि जब ये ताज तुम्हारे बदनसीब बाप के सर पर जेब देता था। अब वो तुम्हें मुबारक हो। रिंदा, तेरा बदकिस्मत शोहर किसी जमाने में इस मुल्क का बादशाह था और अब तू इसकी मलिका है। मुल्क का बादशाह था और अब तू इसकी मलिका है। मैंने ये राज तुझसे अब तक छिपाया।

0: मगर हमारे अलग होने का वक्त बहुत पास है। अब छिपाकर क्या करूं मसूद, तुम अभी बच्चे हो मगर दिलेर और समझदार हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने बाप की आखिरी वसीयत पर ध्यान दोगे और उस पर अमल करने की कोशिश करोगे। ये मुल्क तुम्हारा है, ये ताज तुम्हारा है और ये रियाया तुम्हारी है। तुम इसे अपने कब्जे में लाने की मरते दम तक कोशिश करते रहना, और अगर तुम्हारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएं और तुम्हें भी यही बेसरो सामानी की मौत नसीब हो, तो यही वसीयत तुम अपने बेटे से कर देना और ये ताज जो उसकी अमानत होगी उसके सुपुर्द करना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। खुदा तुम दोनों को खुश व खुर्रम रखे और तुम्हें मुराद को पहुँचाए।
1: ये कहते कहते शाह साहब की आंखें बंद हो गईं। रिंदा दौड़कर उनके पैरों से लिपट गईं और मसूद रोने लगा। दूसरे दिन सुबह गांव के लोग जमा हुए और पहाड़ी गुफा की गोद में शाह बामुराद की लाश रख दी गई। शाह किश्वर कुशा ने आधी सदी तक खूब इंसाफ के साथ राज किया, मगर किश्वर कुशा दोयम ने सिंहासन पर आते ही अपने अक्लमंद बाप के मंत्रियों को एक सिरे से बर्खास्त कर दिया और अपनी मर्जी के मुआफिक नए नए वजीर और सलाहकार नियुक्त किए। सल्तनत का काम रोज बरोज बिगड़ने लगा। सरदारों ने बेइंसाफी पर कमर बांधी और हुक्काम रियाया पर जोर जबरदस्ती करने लगे। यहां तक कि खानदाने मुरांदिया के एक पुराने नमकखोर ने मौका अच्छा देखकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। आसपास के लोग उसके झंडे के नीचे जमा होने लगे और कुछ ही हफ्तों में एक बड़ी फौज कायम हो गई और मसूद भी नमकखोर सरदार की फौज में आकर मामूली सिपाहियों का काम करने लगा। मसूद का यौवन अभी आरंभ हो रहा था। उसके दिल में मर्दाना जोश और बाजुओं में शेरों की कुव्वत मौजूद थी। ऐसा लंबा तड़ंगा सुंदर नौजवान बहुत कम किसी ने देखा होगा। शेरों के शिकार का उसे इश्क था। लबो लहजा ऐसा दिलकश पाया कि जिस वक्त मस्ती में आकर कोई कौमी गीत छेड़ देता तो राह चलते मुसाफिरों और पहाड़ी औरतों का जमघट लग जाता था। कितने ही भोले भाले दिलों पर उसकी मोहनी सूरत नक्श थी, कितनी ही आँखें उसे देखने को तरसती थी और कितनी ही जानें उसकी मोहब्बत की आग में घुलती थीं। मगर मसूद पर अभी तक किसी का जादू न चला था। हाँ, अगर उसे मोहब्बत थी तो उसकी आबदार शमशीर से, जो उसने बाप से विरसे में पाई थी। इस तेग को वो जान से ज़्यादा प्यार करता था और उसे पूरा यकीन था कि यही तलवार किसी दिन किश्वर कुशा दोयम के सर पर चमकेगी। एक रोज एक शेर का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया।
2: कितनी सख्त धूप है, भूख और प्यास से जी बेताब हो रहा है। यहां तो ना कोई मेवे का दरख्त नजर आ रहा है और ना कोई बहता हुआ पानी का सोता जिससे भूख और प्यास की आग बुझा सकूं।
1: मसूद हैरान और परेशान खड़ा था कि सामने से एक चांद जैसी सुंदर लड़की हाथ में बर्छी लिए बिजली की तरह तेज घोड़े पर सवार आती हुई दिखाई दी।
2: भला की खूबसूरत है ये लड़की। पसीने की मोती जैसी बूंदें इसके माथे पर झलक रही हैं। अंबर की खुशबू में बसे हुए बाल दोनों कंधों पर किस बेतकल्लुफी से बिखरे हुए हैं। मेरा दिल हाथ से फिसला जा रहा है। मैंने दुनिया को जला डालने वाला ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा।
1: उसके ऊपर एक सख्ता सा छा गया। ये जवान लड़की उस जंगल में मलिका शेर अफगन के नाम से मशहूर थी। मलिका ने मसूद को देखकर घोड़े की बाग खींच ली और गर्म लहजे में बोली,
3: क्या तू वही नौजवान है जो मेरे इलाके में शेरों का शिकार किया करता है? बतला, तेरी इस गुस्ताखी की क्या सजा दूं?
2: इस सवाल का जवाब मैं खूब देता अगर आपके बजाय यह किसी दिलेर मर्द की जबान से निकलता।
1: इन शब्दों ने मलिका के गुस्से की आग को और भी भड़का दिया। उसने घोड़े को चमकाया और बर्छी उछालती सर पर आ पहुंची। उसने अब तक मलिका के वारों को काटने के सिवाय खुद एक हाथ भी न चलाया था। तब मलिका घोड़े से कूदी और अपना रूमाल फाड़ फाड़ कर मसूद के जख्म बांधने लगी। ऐसा दिलेर और गैरतमंद जवां मर्द उसकी नज़र में आज तक न गुजरा था। वो बहुत आराम से उठवाकर अपने खेमे में ले आई और पूरे दो हफ्तों तक उसकी

0: तीमारदारी में लगी रही। घाव भर गया और मसूद का चेहरा फिर पूरन मासी के चांद की तरह चमकने लगा। अब मलिका ने उसके पास आना जाना छोड़ दिया। एक रोज मलिका शेर अफगन ने मसूद को दरबार में बुलाया और ये बोली,
1: ऐ घमंडी नौजवान, अब मेरे इलाके से जा। मैं तेरी गुस्ताखी माफ करती हूँ, मगर आइंदा मेरे इलाके में शिकार के लिए आने की हिम्मत न करना। फिलहाल ताकीद के तौर पर तेरी तलवार छीन ली जाएगी, ताकि तू घमंड के नशे में चूर होकर फिर उधर कदम बढ़ाने की हिम्मत ना करे।
2: जब तक मेरे दम में दम है, कोई ये तलवार मुझसे नहीं ले सकता।
0: ये सुनते ही एक देव जैसा लंबा तड़ंगा हैकल पहलवान ललकार कर बढ़ा और मसूद की कलाई पर तेगे का तुला हुआ हाथ चलाया। मसूद ने वार खाली किया और संभल कर तेगे का वार किया तो पहलवान की गर्दन की पट्टी तक बाकी न रही। ये कैफियत देखते ही मलिका की आंखों से चिंगारियां उड़ने लगी।
1: खबरदार, ये शख्स यहाँ से जिंदा वापस न जाने पाए।
0: चारों तरफ से आजमाए हुए मजबूत सिपाही पिल पड़े और मसूद पर तलवारों और बर्छियों की बौछार पड़ने लगी। मसूद का जिस्म जख्मों से छलनी हो गया, खून के फव्वारे जारी थे और खून की प्यासी तलवारें जबान खोले बार बार उसकी तरफ लपकती थी और उसका खून चाट कर अपनी प्यास बुझा लेती थी। कितनी ही तलवारें उसकी ढाल से टकरा कर टूट गईं, कितने ही बहादुर सिपाही जख्मी होकर तड़पने लगे और कितने ही उस दुनिया को सिधारे, मगर मसूद के हाथ में वो आबदार शमशीर ज्यों की त्यों बिजली की तरह कौंधती और वार करती रही। यहाँ तक कि इस फन के कमाल को समझने वाली मलिका ने खुद उसकी तारीफ का नारा बुलंद किया और उसके तेगे को चूमकर बोली,
1: मसूद, तू बहादुरी के समंदर का मगर है। शेरों के शिकार में वक्त बर्बाद मत कर। दुनिया में शिकार के अलावा और भी ऐसे मौके हैं जहाँ तू अपने आबदार तेगे का जौहर दिखा सकता है। जा और मुल्क और कौम की खिदमत कर। शेर और शिकार हम जैसी औरतों के लिए छोड़ दे।
0: नमकखोर सरदार की फौज रोज बरोज बढ़ने लगी। पहले तो वो अंधेरे के पर्दे में शाही खजानों पर हाथ बढ़ाता रहा, धीरे धीरे एक बाकायदा फौज तैयार हो गई। यहाँ तक कि सरदार को शाही फौजों के मुकाबले में अपनी तलवार आजमाने का हौसला हुआ और पहली लड़ाई में 24 किले इस नई फौज के हाथ आ गए। और जब मस्कात के मजबूत किले में सरदार नमकखोर शाही किलेदार की मसनत पर अमीराना ठाट बाट से बैठा और अपनी फौज की कारगुजारियां और जंबाजियों के इनाम देने के लिए एक तश्त में सोने के तमगे मंगवा कर रखे, तो सबसे पहले जिस सिपाही का नाम पुकारा गया वो नौजवान मसूद था।
3: मसूद, तुझ पर हमारी पूरी फौज फख्र करती है। लड़ाई के मैदान में सबसे पहले तेरी तलवार चमकती है और धावे के वक्त सबसे पहले तेरे ही कदम उठते हैं। दुश्मन के मोर्चे में ऐसा बेधड़क घुसता है तू जैसे आसमान में चमकता हुआ लाल तारा। तेरी तलवार के वार कयामत बरसाते हैं और तेरे तीर मौत का संदेश देते हैं, इसलिए हम तुझे बहादुरी का तमगा इनाम में देते हैं।
0: किश्वर कुशा दोयम ने बागियों को कुचलने के लिए अब की एक जबरदस्त फौज रवाना की और मीर शुजा को उसका सिपा सालार बनाया, जो लड़ाई के मैदान में अपने वक्त का इस फंदियार था। सरदार नमकखोर ने यह खबर पाई तो हाथ पांव फूल गए। मीर शुजा के मुकाबले में आना अपनी हार को बुलाना था। आखिरकार ये राय तय पाई गई कि इस जगह से आबादी का निशान मिटाकर हम लोग किलेबंद हो जाएं। उस वक्त नौजवान मसूद ने उठकर बड़े पुरजोश लहजे में कहा,
2: नहीं, हम किलेबंद नहीं होंगे, हम मैदान में रहेंगे और हाथों हाथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। हमारे सीनों की हड्डियां ऐसी कमजोर नहीं हैं कि तीर तुपुक के निशाने बर्दाश्त ना कर सकें। किलेबंद होना इस बात का ऐलान है कि हम आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्या आप लोग जो शाह बामुराद का नाम लेवा हैं, भूल गए कि इस मुल्क पर उसने अपने खानदान के 300,000 सपूतों को फूल की तरह चढ़ा दिया? नहीं, हम हरगिज किलेबंद नहीं होंगे। हम दुश्मन के मुकाबले में ताल ठोक कर आएंगे और अगर खुदा इंसाफ करने वाला है तो जरूर हमारी तलवारें दुश्मनों के गले मिलेंगी और हमारी बर्छियां उनके पहलुओं में जगह पाएंगी।
3: मसूद, तेरी हिम्मत और हौसले की मैं दाद देता हूं, तू हमारी फौज की शान है। बेशक हम किले बंद ना होंगे, हम दुश्मन के मुकाबले में ताल ठोक कर आएंगे और अपने प्यारे जन्नत निशां के लिए अपना खून पानी की तरह बहाएंगे।

0: तू हमारे लिए आगे आगे चलने वाली मशाल है और हम सब आज इसी रोशनी में कदम आगे बढ़ाएंगे।
1: मसूद ने चुने हुए सिपाहियों का एक दस्ता तैयार किया और कुछ इस दमखम और कुछ इस जोश खरोश से मीर शुजा पर टूटा कि उसकी सारी फौज में खलबली पड़ गई। 3 घंटे तक बला का शोर मचा रहा, यहाँ तक कि शाही फौज के कदम उखड़ गए और वो सिपाही जिसकी तलवार मीर शुजा के गले मिली मसूद था। सरदारी फौज और अफसर सबके सब लूट के माल पर टूटे और मसूद जख्मों से चूर और खून में रंगा हुआ अपने कुछ जान पर खेलने वाले दस्तों के साथ मस्कात के किले की तरफ लौटा। मगर जब होश ने आंखें खोली और हवास ठिकाने हुए तो वो देखता है,
2: ये सजे हुए कमरे में मखमली गद्दे पर किसने लिटा दिया? फूलों की सुहानी महक और लंबी छरहरी सुंदरियों के जमघट से कमरा चमन बना हुआ है। ये किसका महल है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा?
1: मसूद ताज्जुब से इधर उधर ताकने लगा कि इतने में एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती तश्त में फूलों का हार लिए धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। मसूद देखते ही पहचान गया, ये मलिका शेर अफगन थी। मलिका ने फूलों का हार मसूद के गले में डाला, हीरे जवाहरात उस पर चढ़ाए और सोने के तारों से टकी हुई मसनत पर बड़ी आन बान से बैठ गईं। साजिंदों ने शहनाई पर विजयी अतिथि के स्वागत के सुहाने राग अलापने शुरू किए। इधर तो नाच गाने की महफिल थी, उधर आपसी ढाह ने नए नए शिगुफे खिलाए। सरदार से शिकायत की कि मसूद जरूर दुश्मन से जा मिला है। इसके सबूत में कुछ जाली खत भी दिखाए गए और इस कमीनी कोशिश में जबान की ऐसी चालाकी से काम लिया कि आखिर सरदार को इन बातों पर यकीन आ गया। पो फटे जब मसूद मलिका शेर अफगन के दरबार से विजय का हार गले में डाले सरदार को बधाई देने गया तो बजाय इसके की कद्रदानी का सिरोपा और बहादुरी का तमगा पाए, उसको खरी खोटी बातों के तीर का निशाना बनाया गया और हुक्म मिला कि तलवार कमर से खोलकर रख दे।
2: ये तेगा मैंने अपने बाप से विरसे में पाया है, ये मेरे पिछले बड़प्पन की आखिरी यादगार है, ये मेरी बाहों की ताकत और मेरा सहयोगी और मददगार है। इसके साथ कैसी कैसी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, क्या मैं जीते जी इसे अपने पहलू से अलग कर दूं? अगर मुझ पर कोई आदमी लड़ाई के मैदान से कदम हटाने का इल्ज़ाम लगा सकता, अगर कोई शख्स इस तेगे का इस्तेमाल मेरे मुकाबले में ज़्यादा कारगुजारी के साथ कर सकता, अगर मेरी बाहों में तेगा पकड़ने की ताकत न होती तो खुदा की कसम मैं खुद ही तेगा कमर से खोल कर रख देता। मगर खुदा का शुक्र है कि मैं इन इल्ज़ामों से बरी हूँ। फिर क्यों मैं इसे हाथ से जाने दूँ? क्या इसलिए कि मेरी बुराई चाहने वाले कुछ थोड़े से डाहियों ने सरदार नमकखोर का मन मेरी तरफ से फेर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी सरकशी पर सरदार और भी गुस्सा हो जाएंगे और यकीनन मुझसे तलवार शमशीर के जोर से छीन ली जाएगी। ऐसी हालत में मेरे ऊपर जान छिड़कने वाले सिपाही कब अपने को काबू में रख सकेंगे? जरूर आपस में खून की नदियां बहेंगी और भाई भाई का सिर कटेगा। खुदा न करे कि मेरे सबब से ये दर्दनाक मारकाट हो।
1: ये सोचकर उसने चुपके से शमशीर सरदार नमकखोर के बगल में रख दी और खुद सर नीचा किए जब्त की इंतहाई कुव्वत से गुस्से को दबाता हुआ खेमे से बाहर निकल आया। उसने जिल्लत और बदनामी सब गवारा की, तलवार देना गवारा किया, बगावत का इल्ज़ाम लेना गवारा किया और अपने साथियों के सामने सर झुकाना गवारा किया, मगर ये गवारा ना किया कि उसके कारण फौज में बगावत और हुक्म न मानने का ख्याल पैदा हो। उसने खून बरसाती हुई आंखों से दोस्तों को अलविदा कहा और हसरत भरा दिल लिए उठा और एक गुफा में छिप बैठा। और जब सूरज डूबने पर वहां से उठा तो उसके दिल ने फैसला कर लिया था,
2: मैं बदनामी का दाग माथे से मिटाऊंगा और डाहियों को शर्मिंदगी के गड्ढे में गिराऊंगा।
1: मसूद ने फकीरों का भेष अख्तियार किया, सर पर लोहे की टोपी के बजाय लंबी जटाएं बनाई, जिस्म पर जिरा बख्तर के बजाय गेरुए रंग का बाना सजाया, हाथ में तलवार के बजाय फकीरों का प्याला लिया, जंग के नारे के बजाय फकीरों की सदा बुलंद की और अपना नाम शेख मकमूर रख लिया। उधर किश्वर कुशा दोयम का दरबार सजा हुआ है, अंगूरी शराब का दौर चल रहा है। यकायक भेदियों ने खबर दी कि मीर शुजा की हार हुई और वह जान से मारे गए। ये सुनकर किश्वर कुशा के चेहरे पर चिंता के लक्षण दिखाई पड़े। सरदारों को संबोधित करके बोले,
3: आप लोगों में ऐसा दिलेर कौन है जो इस बदमाश सरदार का सर कलम करके हमारे सामने पेश करे?

0: आपको बादशाहत के सपने देखता हूँ। ये यकीन कि मैं बादशाह हूँ मुझे बादशाह बनाए हुए। अफसोस आज ये मंसूबे टूट गए और वो सपना तितर बितर हो गया।
1: मसूद के चरित्र में मर्दाना जब्त अपनी हद तक पहुंच गया था। उसने उफ तक न की, एक ठंडी आह भी न भरी, बल्कि पहला आदमी जिसने मलिका के हाथों को चूमा और उसके सामने सर झुकाया वो फकीर मखमूर था। हाँ, ठीक उस वक्त जबकि मलिका के हाथों को चूम रहा था, उसकी जिंदगी भर की लालसाएं आंसू की एक बूंद बनकर मलिका की मेहंदी रची हथेली पर गिर पड़ी कि जैसे मसूद ने अपनी लालसा का मोती मलिका को सौंप दिया। मलिका ने हाथ खींच लिया और फकीर मखमूर के चेहरे पर मोहब्बत से भरी निगाह डाली। जब सल्तनत के सब दरबारी भेंट दे चुके तब तोपों की सलामियां दगने लगीं। शहर में धूमधाम का बाजार गर्म हो गया और खुशियों के जलसे चारों तरफ नजर आने लगे। तख्त नशीनी के तीसरे दिन मसूद खुदा की इबादत में बैठा हुआ था कि मलिका शेर अफगन अकेले उसके पास आई और बोली,
2: मसूद, मैं एक नाचीज तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ और वो मेरा दिल है। क्या तुम उसे मेरे हाथों से कबूल करोगे?
0: मैं तो मुद्दत से तुम्हारी बर्छी की नोक का घायल हूँ। मेरी किस्मत है कि आज तुम मरहम रखने आई हो।
1: मुल्क जन्नत निशा अब आजादी और खुशहाली का घर है। मलिका शेर अफगन को अभी गद्दी पर बैठे साल भर से ज्यादा भी नहीं गुजरा, मगर सल्तनत का कारोबार बहुत अच्छी तरह और खूबी से चल रहा है और इस बड़े काम में उसका प्यारा शौहर मसूद, जो अभी तक फकीर मकबूर के नाम से मशहूर है, उसका सलाहकार और मददगार है। रात का वक्त था, शाही दरबार सजा हुआ था। बड़े बड़े वजीर अपने पद के अनुसार बैठे हुए थे और नौकर जर्क बर्क वर्दियां पहने हाथ बांधे खड़े थे कि एक खिदमतगार ने आकर अर्ज की,
3: मलिका शेर अफगन को खिदमतगार का सलाम। दोनों जहान की मलिका एक गरीब औरत बाहर खड़ी है और आपके कदमों का बोसा लेने की गुजारिश करती है।
2: अंदर हाजिर करो।
3: जो हुक्म मलिका है हुजूर।
1: खिदमतगार बाहर चला गया और जरा देर में एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आई और अपनी पिटारी से एक जड़ाऊ ताज निकालकर बोली,
4: तुम लोग इसे ले लो, अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। मियाँ ने मरते वक्त मसूद को देकर कहा था कि तुम इसके मालिक हो, मगर अपने जिगर के टुकड़े मसूद को कहाँ ढूंढूं? रोते रोते अंधी हो गई, सारी दुनिया की खाक छानी मगर उसका कहीं पता न लगा। अब जिंदगी से तंग आ गई हूँ, जीकर क्या करूंगी? यह अमानत मेरे पास है, जिसका जी चाहे ले ले।
1: दरबार में सन्नाटा छा गया। यकायक मसूद अपनी जगह से उठा और रोता हुआ रिंदा के पैरों पर गिर पड़ा। रिंदा अपने जिगर के टुकड़े को देखते ही पहचान गई, उसे छाती से लगा लिया और वो जड़ाऊ ताज उसके सर पर रखकर बोली,
4: साहबो, यही मेरा प्यारा मसूद है। ये मुल्क इसका है, ये सारी हुकूमत इसकी है, आज से ये अपने मुल्क का बादशाह है।
1: दरबार में कयामत का शोर मचने लगा। दरबारी उठे और मसूद को हाथों हाथ ले जाकर तख्त पर मलिका शेर अफगन के बगल में बिठा दिया।
5: संग्रहालय से इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का छठा भाग। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास खबरें।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी बड़ी पूंजी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी। एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि श्री मोदी ने जन केंद्रित नीतियों, निर्णय लेने में दृढ़ता और परिणामों की गारंटी के माध्यम से शासन की परिभाषा को ही बदल दिया है, साथ ही प्रदर्शन की राजनीति के आदर्श की स्थापना की है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के सार्वजनिक जीवन और जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रदेश भर में आज सेवा ज्योति यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी कर इसे 5.5% कर दिया है। फरवरी 2023 के बाद पहली बार नीतिगत दर में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल मुंबई में आयोजित सत्र में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। वहीं उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 बैठक में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। आज विश्व कपास दिवस है। इस दिन का उद्देश्य कपास के वैश्विक आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व को उजागर करना है। इस साल का विषय है खुशहाली के लिए कपास, व्यापार बदलाव और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि का निर्माण। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने स्मृति मंधाना को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नई कप्तान नियुक्त किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।

महिला सभा कार्यक्रम में आप सभी सखियों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं आपकी सखी निरंजना। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सखियों, कैसी हैं आप? मुझे मालूम है आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगी। सखियों, मैंने आकाशवाणी में पहले सखी संगनी और अब महिला सभा कार्यक्रम के जरिए आपसे बातचीत करते हुए अपने जीवन के खूबसूरत पलों को जिया है। कार्यकाल का यह सफ़र भले ही पूरा हुआ, पर आप सबका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। यादों की झोली में अनमोल पल समेटे हुए आज के बाद मैं अपने इस महिला सभा कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहूंगी, पर परोक्ष रूप से ये रिश्ता हमेशा हमारे संग रहेगा। इन्हीं यादों के सफ़र के साथ सखियों, अब हम चर्चा करते हैं आज के विषय की। आज का विषय है समाज का कलंक है अस्पृश्यता। सखियों, भारत में प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से 8 अक्टूबर तक अस्पृश्यता निवारण सप्ताह मनाया जाता है। इस सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज से छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को पूरी तरह समाप्त करना और लोगों में समानता के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस बुराई को रोकने के लिए भारतीय संविधान के तहत अस्पृश्यता का पूरी तरह से अंत कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका आचरण दंडनीय अपराध है। ये भारतीय समाज में सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने और देश को विकसित देश बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक पहलुओं पर युवाओं का ध्यान आकर्षित करके सभी वर्ग को स्वतंत्र और सक्षम बनाना है, ताकि सभी वर्ग समानता के व्यवहार को अपने जीवन में अपनाते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण करें और देश के विकास में अपना सहयोग दें।

0: सखियों, अभी आपने गीत का आनंद लिया, अब हम अपनी चर्चा के इस सफर को वन्य जीवों की ओर ले चलते हैं। और आप सभी जानती हैं कि वन्य जीव और प्रकृति हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए मानव और वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। आज इसी विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आपको सुनवा रहे हैं ये भेंटवार्ता, वन्य जीव और संरक्षण। श्री लवित भारती, वन संरक्षक ग्वालियर से बात कर रही हैं डॉक्टर विभूति सिंह।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ग्वालियर का ये विशेष वन्य जीव सप्ताह, जो हर साल अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। उस अवसर के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वन संरक्षक लवित भारती जी को, जो भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं। स्वागत करते हैं सर आपका हमारे स्टूडियो में।
2: जी नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को भी मेरी ओर से नमस्कार।
1: वन्य जीव सप्ताह मनाया जा रहा है और हमारा प्रदेश जो मध्य प्रदेश है, विशेष रूप से हमारा जो क्षेत्र है, ये वन्य जीव संरक्षण के मामले में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?
2: वन्य जीव संरक्षण के लिए बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अगर हम कैटेगराइज करें तो इसमें पहली चुनौती है कि उनके जो प्राकृतिक हैबिटेट है वो श्रिंक हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की नीड बढ़ रही है, डिपेंडेंसी फॉरेस्ट पे बहुत ज़्यादा है, तो एक रीज़न वो है। दूसरा, लोगों की नीड के हिसाब से तो फिर भी पर्याप्त है, लेकिन ग्रीड ऐसा है कि किसी के पास 5 हेक्टेयर ज़मीन है तो उसको लगता है कि 25 हो जाए, फिर जंगल की तरफ बढ़ते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं, हैबिटेट की क्वालिटी थोड़ा सा डिग्रेड हो रही है, तो इस प्रकार के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। दूसरा ये भी है कि बहुत सारे लोग जो इतने परस्पर साथ में रहे आ रहे हैं इतने सालों से, अब उनके साथ चैलेंज ये है कि वाइल्ड लाइफ की संख्या में भी वृद्धि हो रही है और ह्यूमन पॉपुलेशन में भी वृद्धि हो रही है। जब दोनों का टकराव होता है तो कहीं ना कहीं खामियाजा इंसानों को भुगतना होता है किसी फॉर्म में, और कभी वो वाइल्ड लाइफ को भुगतना होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी एक कॉमन ग्राउंड तैयार है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी पॉपुलेशन का मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब वो एक कॉमन स्पेस शेयर कर रहे हैं। जैसे कोई गांव है जो जंगल से लगा हुआ है, वहाँ पर उनकी खेती जो जंगली जानवर हैं वो कभी उजाड़ देते हैं, नुकसान पहुँचा देते हैं। दूसरा, कभी जंगली जानवर से उनका एनकाउंटर हो जाता है, वो जंगल में गाय को या बकरियों को चराने जाते हैं और वहाँ पे किसी हिंसक जीव से उनका सामना हो जाता है, कई बार घायल कर देता है, कई बार विषम परिस्थितियों में किसी की मृत्यु भी हो जाती है। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। अब उसको आपसी परस्पर

0: पर उन लोगों का समन्वय बना रहे, किस तरीके से दोनों का सह अस्तित्व हम लोग स्थापित कर पाएँ, ये हमारे लिए एक चैलेंज है और उसके लिए हम लोग काफ़ी प्रयास भी करते हैं। लोगों को विभिन्न मंचों के माध्यम से जोड़ते हैं, लोगों की सहभागिता से हम वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के लिए कदम उठाते हैं, लोगों को रोज़गार से जोड़ते हैं जिससे कि कम से कम वनों पर उनकी निर्भरता हो। इस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए जो भी आवश्यक उपाय हैं वो सारे करने की कोशिश करते हैं।
1: जी, एक जो कॉम्प्रिहेंसिव एक क्वेश्चन है फॉरेस्ट और उसके कंजर्वेशन को लेकर, कि जब डेवलपमेंट की बात होती है तो जाहिर सी बात है कि आप अर्बनाइजेशन की तरफ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब तक की सर्विस में आपको कुछ एक्सपीरियंस या कुछ इंसाइट्स डेवलप हुए हैं कि आप विकास भी कर लें और अपने वन्य जीवों का जो हैबिटेट है उसको भी संरक्षित कर लें?
0: ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है आज के परिदृश्य में, क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे कि डेवलपमेंट एक नीड है और आज अगर हम देखते हैं तो ह्यूमन एक ऐसी पॉपुलेशन है या ह्यूमन एक ऐसी स्पीसीज है जो पूरा वर्ल्ड, पूरा ग्लोब कंट्रोल कर रही है। सारी स्पीसीज़ का अस्तित्व उनके विवेक पर निर्धारित है, कैसे वो उस स्पीसीज़ को डील करेंगे उनका अस्तित्व उस पर निर्भर करता है। अब जैसे डेवलपमेंट की बात आती है तो हम लोग जो फॉरेस्ट सर्विस है या जो एनवायरनमेंट की लॉबी है या जो लोग भी इसमें काम करते हैं,
1: स्टेक होल्डर्स
0: हैं, जो प्रकृति प्रेमी हैं, वो सभी लोग ये चाहते हैं कि विकास ना रुके, लेकिन विकास किस कॉस्ट पे होना है, किस गति से होना है और कितना मिनिमल डिस्ट्रक्शन हो, कितना कम इम्पैक्ट पड़े प्रकृति पर कि हम लोग प्रकृति को भी बचा लें और डेवलपमेंट भी ना रुके। उसको बचाए रखने के लिए ये सारे उपाय किए गए हैं और यही हमारे सर्विस का एक प्राइम मैंडेट भी है।
1: अभी आपने कॉन्फ्लिक्ट की बात कही, जैसे कि अर्बनाइजेशन या जो शहरी इलाका है और जो फॉरेस्ट है वो तो दो अलग अलग, हम मान के चलते हैं कि दो अलग अलग यूनिट्स हैं या दो अलग अलग एंटिटी हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका जीवन जंगलों पर ही आधारित है, ऐसे भी कई लोग अभी हैं क्षेत्र में, तो खेतों और बस्तियों के आसपास ये वन्य जीवों की जो मौजूदगी भी होती है, जब ये बढ़ती है तो वन विभाग और जो स्थानीय समुदाय हैं किस तरह संतुलन बना सकते हैं?
0: संतुलन बनाए रखने के लिए हम अपेक्षा करते हैं कि जानवर ज़्यादा समझदारी दिखाए इंसान की अपेक्षा, जहाँ समझदारी जिसको भगवान ने दिमाग दिया है, और जो जंगलों की तरफ बढ़ रहा है वो इंसान है। जंगल कभी भी जहाँ थे वहीं हैं और जंगल कम ही हुए हैं, बड़े नहीं हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी परिस्थिति में उनके पास जो एनिमल्स के पास जो स्पेस है वो कम है, और जब कभी भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो अपने सर्वाइवल के लिए वो बाहर निकलते हैं या फाइट करते हैं या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका इंसान की ही है कि उसे अपने दायरों को सीमित रखना होगा, उसको समझना होगा, एक एनिमल के स्पेस को सम्मान देना होगा। और कभी ऐसा होता है कि एक ही स्पेस पर दोनों ना हो, वही कॉन्फ्लिक्ट का कारण है। अगर एनिमल है तो इंसानों को कुछ रिस्पेक्ट दे के पीछे हट जाना चाहिए, और जहाँ पर ह्यूमन होता है तो एनिमल अपने आप पीछे हट जाता है वहाँ से। तो वो दोनों को एक पारस्परिक रिस्पेक्ट की ज़रूरत है और एक सहानुभूति की भी ज़रूरत है इंसानों को जानवर के प्रति, क्योंकि वो अपने लिए कहीं भी कोई मंच नहीं है जहाँ पर वो अपनी जाके अपनी पुकार लगा सकते हैं। तो उनके लिए आवाज़ भी हमें बनना है, उनकी समस्या भी हम हैं और समाधान भी हमें बनना है।
1: ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि जो जानवर हैं उनकी समस्या भी हम ही हैं और समाधान के जो रास्ते हैं वो भी हम ही को निकालने हैं। लवित जी, ये बताइए कि आज के समय में वन्यजीव को लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, आपको कौन सी गलतफहमियां लगती हैं कि ये मेजर एक मिथ है लोगों के बीच और जिसको बदलना चाहिए?
0: मिथ को तो ऐसा है कि वो अलग अलग एनिमल्स को लेके अलग अलग मिथ है। लोगों को ये लगता है कि एनिमल जो भी हिंसक एनिमल है वो सिर्फ नुकसान पहुँचाने के लिए ही है और वो फर्स्ट होते हैं जो अटैक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एनिमल बहुत ही शाय होते हैं, चाहे वो कितना ही पावर क्यों ना हो। टाइगर के केस में देखें तो टाइगर भी बहुत पावर होता है, लेकिन वो हमेशा ह्यूमन के साथ कॉन्फ्लिक्ट या एनकाउंटर अवॉइड करता है। वो कोशिश करता है कि कम से कम इंसान के साथ उसकी आमना सामना हो, कम से कम उसका इंसानों के साथ ऐसी स्थिति बने जहाँ पर कि उसको 1-to-1 आना पड़े। वो तो हमारी गलती होती है कि हम जानवर को ना पहचानते हुए कि कहाँ बैठा है, किस झाड़ी में बैठा है, और हम उसके इतने नज़दीक पहुँच जाते हैं कि जो पर्सनल स्पेस है एनिमल का और एक सेफ स्पेस है उसको हम लोग पार कर जाते हैं, उसके बाद जो एक्शन लेता है वो रिटेलिएशन या एक भय में वो घबरा कर लेता है। मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं, मैंने ह्यूमन डेथ के भी केसेस देखे हैं, और उसमें हमेशा ये देखा है कि

0: होता है, उसके पास पावर इतना है कि एक ह्यूमन बॉडी उसको नहीं झेल पाती है, और बहुत ही दुखद घटनाएं घटती हैं ऐसी। तो उस सब चीज़ों को रिस्पेक्ट करने के लिए और मिथ को निकालने के लिए कि एनिमल हमेशा अटैकिंग फॉर्म में ही होता है या अग्रेसिव ही होता है, ऐसा नहीं है। हम अगर उसके स्पेस को या उसके भाव को समझें और रिस्पेक्ट करें तो ये घटनाएं टाली जा सकती हैं। और हम लोगों को यही जागरूकता संदेश भी देते हैं कि जब आपको पता है, हम लोग मुनादी कराते हैं कि यहाँ पे टाइगर की मूवमेंट है या यहाँ पर हाथी आए हुए हैं, तो आप लोग इस क्षेत्र में ना जाएं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में ना आए। अगर आप उस टाइम पे उस वार्निंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और नहीं जाते तो वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकता है। और एनिमल हमेशा रेजिडेंट नहीं होता, वो आता है और चला जाता है, एक स्पेस को यूज़ कर रहा है वो। बस एक ही टाइम पे दोनों का होना ज़रूरी नहीं है, या जानकारी नहीं होने के अभाव में उसके इतने पास चले जाते हैं और फिर घटनाएं दुर्घटनाएं घट जाती हैं।
1: प्रामाणिक जानकारी अगर किसी को लेनी है किसी एरिया में जाने से पहले, तो वो कहाँ पर संपर्क कर सकते हैं?
0: जहाँ पर भी टाइगर रिजर्व हैं या कोई भी एनिमल रिजर्व है, सेंचुरीज हैं, पहली चीज़ तो ये है कि वहाँ पर बिना पास के प्रवेश ही प्रतिबंधित है। अगर आपको जाना है तो आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ जाइए, आपके लिए बिल्कुल डेजिग्नेटेड जोन है, सफारी है, आपको पूरी सुरक्षा के साथ में, गाइड के साथ में भेजा जाता है। जो जानकार होता है वो आपको जानकारी भी देगा और आपको सुरक्षित वापस भी लेकर आएगा। और जहाँ पर गांव लगे हुए हैं वहाँ पे हम लोग शिविर आयोजित करके गांव वालों को जागरूक करते हैं और उनको जानवर और एनिमल के बिहेवियर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि एनिमल का बिहेवियर कैसा है और आपको किस तरीके से उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके रहना है।
1: कई सारी दुर्घटनाएं उस बीच भी होने की संभावना रहती है जब आप अननेसेसरीली मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए सेल्फीज और उनके साथ वीडियोग्राफी करते हैं, उस समय भी सावधानियां संभवतः बहुत जरूरी होती होंगी।
0: बिल्कुल, पार्क में आप कभी जाओगे तो आपको देखा होगा कि निर्देश रहते हैं कि किसी भी स्थिति में आपको जंगल में उतरना नहीं है। वो नहीं उतरने का रीज़न यही है कि वो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड है, क्योंकि एनिमल कहाँ छुपा है, कहाँ बैठा है, हमारी नज़रें कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हैं, लेकिन एनिमल वो हमें सब देख रहे होते हैं और छुप के देख रहे होते हैं। उतरना हमारी सेफ्टी के लिए ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आप अगर सेफ जोन पे हैं, आप जिप्सी पर हैं, सेल्फी लीजिए, वीडियो बनाइए, आप आराम से सारा सब कुछ देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आप अपनी सेफ्टी के साथ खुद कंप्रोमाइज़ करते हैं, कई लोग ऐसे देखे गए हैं, मतलब गाड़ी रोक के वो कहीं उतर जाते हैं, एक सेंटर पॉइंट होता है जहां उतरना अलाउड होता है, उसके अलावा कहीं और उतर जाते हैं, और फिर ऐसे आप अनवांटेड घटनाओं को आमंत्रित करते हैं। ऐसी चीज़ों को हम लोग प्रमोट नहीं करते हैं।
1: लवित जी, हमारे श्रोताओं को, खासकर बच्चे और युवा हमें जो सुन रहे हैं, उनको वन्य जीव सप्ताह के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं बच्चों को और हमारे श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगा, भगवान ने हमें इंसान बनाया है, हमारी जिम्मेदारी उतनी ही महत्वपूर्ण बन जाती है कि हम अपने साथ साथ प्रकृति को भी सुरक्षित रखें, और जो अन्य स्पीसीज़ हैं, जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनको भी हम संभाल कर एक साथ प्रकृति के फॉर्म में इंटरेक्ट करते हुए उनको भी साथ लेकर चलें, जिसमें उनका भी अस्तित्व रहे, हमारा भी अस्तित्व रहे, एक सामंजस्य रहे, आपसी सामंजस्य रहे, एक तालमेल रहे। जैसे हम लोगों को बचपन से ही हमारी स्टोरीज़ में बताया गया कि हमारे दोस्त होते हैं, हाथी मेरा साथी है, हम लोगों को हर एनिमल से कुछ ना कुछ लिंक करके स्टोरीज़ बनाई गई हैं, हमारे देवताओं के सारे वाहन किसी न किसी वन्य प्राणी को लेकर बनाए गए हैं। उसका मतलब ही ये है, संदेश देने का, कहीं ना कहीं हमारा अस्तित्व इन्हीं जानवरों पर निर्भर करता है और हमें सह अस्तित्व की तरफ ही जाना है, जहाँ पर कि वो भी सुरक्षित रहें और हम भी सुरक्षित रहें। हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी यही कहती हैं, प्रकृति को साफ रखना है, नदियों को साफ रखना है, वातावरण को और हमारे एनवायरनमेंट, जंगलों को सुरक्षित रखना है। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमारे दायित्व भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, और हम अपने दायित्वों को निभाएं और प्रकृति और जंगली जानवरों को सुरक्षित रखें, उनके वातावरण को सुरक्षित रखें, उनके रहवास को सुरक्षित रखें, तभी हम एक खूबसूरत हरी भरी पृथ्वी की परिकल्पना कर सकते हैं और सह अस्तित्व की परिकल्पना कर सकते हैं। वसुधैव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं वो सारी स्पीसीज़ के लिए है, उसी अवधारणा पर हमें चलने की जिम्मेदारी, लीडरशिप इंसानों को लेने की ज़रूरत है।
1: लवित जी, वन्य जीव संरक्षण और प्रकृति से जुड़े अपने महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: सखियों। अभी आपने सुनी ये भेंटवार्ता

वन्य जीव और संरक्षण। श्री ललित भारती वन संरक्षक ग्वालियर से बात कर रही थी डॉक्टर विभूति सिंह। उम्मीद है आपने इस भेंटवार्ता के जरिए बहुत कुछ जानकारी प्राप्त की होगी। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष के बारे में। सखियों, अंतरिक्ष की दुनिया आश्चर्यजनक घटनाओं से सजी हुई अत्यंत रहस्यमयी दुनिया है। अंतरिक्ष में लाखों गैलेक्सियां हैं, जिसमें लाखों सूर्य, तारे, चंद्रमा, धरती, ग्रह, उपग्रह, उल्का और ब्लैक होल हैं। वैज्ञानिकों ने हमारी गैलेक्सी में असंख्य तारामंडल ढूंढे हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसमें हम धरती पर रहते हैं। माना जाता है कि इसी गैलेक्सी में धरती जैसे ग्रहों पर जीवन हो सकता है, जहाँ पर मनुष्य रहते हैं। अंतरिक्ष में अब तक कई गैलेक्सियां ढूंढी जा चुकी हैं और अनगिनत अभी भी मौजूद है। अंतरिक्ष कितना बड़ा है यह कोई नहीं जानता और ना ही बता सकता है, क्योंकि यह अनादि और अनंत है। अंतरिक्ष में वायु नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। यही कारण है कि यहाँ अंधेरा रहता है। सूर्य जैसे तारों के कारण ही प्रकाश रहता है, तो वो भी सिर्फ ग्रहों पर। अंतरिक्ष की रहस्यमयी दुनिया के बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं, कुछ बता नहीं सकते। सखियों, अंतरिक्ष की जानकारी के साथ अब हम आनंद लेते हैं इस गीत का।

0: सखियों, कपास के बारे में तो आप सभी जानती हैं, पर आज हम कपास के घरेलू उपयोग के बारे में जानेंगे। कपास के बीज, तेल और रेशे का उपयोग स्वास्थ्य, सौंदर्य और दैनिक कार्यों के लिए किया जाता है। रुई से हम घाव और चोट की सफाई करते हैं। कपास के बीजों में विटामिन ई और स्वस्थ वसा होती है, इसलिए इसके बीजों का लेप या तेल रूखी त्वचा को नमी देता है और सूजन और मुहासों को भी कम करने में मददगार है। सूती कपड़ों, बेडशीट, पर्दे, टॉवेल और घरेलू उपयोग की वस्तुओं को बनाने में कपास के रेशे सबसे अहम माने जाते हैं। कपास के तेल का उपयोग भोजन पकाने और कोलेस्ट्रॉल संतुलन के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार कपास की उपयोगी जानकारी के साथ अब अपने महिला सभा कार्यक्रम से विदा लेते हुए मैं यही कहूंगी, आकाशवाणी से भरा सफर अब पूरा हुआ, खुशियों और अपनों का नया सवेरा हुआ। काम से विदाई है, पर आप सबसे नहीं या अंत नहीं, एक नई शुरुआत है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर बाद।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
5: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना।
2: घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भंवर सिंह अहिरवार के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे भंवर सिंह अहिरवार के गाए हुए कुछ लोकगीत, प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम कुछ भक्ति रचनाएं आपको सुनवाने जा रहे हैं। गायिका हैं साक्षी कुलश्रेष्ठ। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे साक्षी कुलश्रेष्ठ के गाए हुए कुछ भजन। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर बाद।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: सुनिए आकाशवाणी भोपाल पर स्वराज संस्थान संचालनालय का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग, हर गुरुवार सुबह 8:30 पर।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
3: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
6: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
3: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
3: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
3: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

गीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है फिल्म बंदिश से। आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इसके बाद आप सुनेंगे चितचोर फिल्म का गीत यशोदास और हेमलता की आवाजों में। इसके लिए गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना जरूर पूरा करेगा। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि कभी नीतिगत निष्क्रियता की चर्चा से जुड़ा भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में स्थिति पूरी तरह बदल गई है।
1: हमें भारत के सामर्थ्य को कभी भी कम नहीं आंकना है। भारत ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपने संकल्पों को दुनिया के सामने रखा, तब भी भारत पर अविश्वास करने वाले बहुत थे, लेकिन भारत ने तय समय से पहले ही वो लक्ष्य हासिल किया। ऐसा करने वाला भारत G20 का इकलौता देश है। विकसित भारत का हमारा सपना भी है, हमारा संकल्प भी है, और उसे पूरा करने का हमारे पास सामर्थ्य भी है।

0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 वर्ष की जनसेवा यात्रा पूरी करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुई प्रधानमंत्री मोदी की जनसेवा यात्रा राष्ट्र निर्माण और विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की निरंतर यात्रा रही है। मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट से निपटने, अनुच्छेद 370, नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई और आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वस्थ, सुदीर्घ और यशस्वी जीवन की कामना की है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का 7वां संस्करण आज से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश के टूरिज्म पोटेंशियल को ग्लोबल प्लेटफॉर्म देने के लिए भोपाल में शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्च 2026। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का पर्यटन सेक्टर अब इन्वेस्टमेंट, रोजगार और नए बिजनेस अवसरों का हब बन रहा है। इसी कड़ी में 7 से 10 अक्टूबर तक भोपाल में आयोजित MPTM 2026 में 34 देशों के 100 से अधिक इंटरनेशनल और 15 राज्यों के 180 से अधिक घरेलू टूर ऑपरेटर सहित 600 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल होंगे। 4 दिनों में होंगी 10,000 से अधिक B2B मीटिंग्स, जहां पर्यटन कारोबारियों, निवेशकों और स्थानीय स्टेक होल्डर्स के बीच नए कनेक्शन और नई साझेदारियां आकार लेंगी। यानी मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ, हेरिटेज, एडवेंचर, ग्रामीण पर्यटन और डिजिटल टूरिज्म के सेक्टर में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की लीडरशिप में प्रदेश की पर्यटन कहानी अब लोकल से ग्लोबल होने की ओर बढ़ रही है।
0: प्रदेश में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए आज से 3 दिन तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि फॉर्म 6 के अलावा किसी मतदाता से घोषणा पत्र नहीं लिया जाएगा। 1 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं के आवेदन लिए जाएंगे, जबकि 1 जनवरी 2027 को 18 साल के होने वाले युवा अग्रिम रूप से आवेदन जमा कर सकेंगे। मतदाता voters.eci.gov.in या ECI नेट मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर के महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में आयोजित की जा रही 5 दिवसीय 70वीं राज्य शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के अंतर्गत खेल परिसर में विभिन्न संभागों के खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। अक्टूबर माह में नवरात्रि, दशहरा, वाल्मीकि जयंती आदि त्योहारों को देखते हुए कल आगरमालवा में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। नर्मदापुरम में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 137 में SIR के बाद मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र मतदाताओं और पहली बार पात्र हो रहे युवाओं के नाम जोड़ने की प्रक्रिया को लेकर BLO का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: 5% किया। चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। और भारत ने 31वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आज फिजी में एक बैठक में पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सुबह श्री विनायक मंदिर जाकर देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और इस दौरान हासिल अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
1: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों की समस्याओं का समाधान तलाशने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भारत अब अपनी बढ़ती ताकत और चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए चर्चा में है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती है। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इंपोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी चुनौतियों का स्थायी समाधान तलाश रहा है।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि बड़ी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के सबसे गरीब और वंचित वर्गों के कल्याण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार की पहल की भी सराहना की।
2: जब किसी व्यक्ति के साथ उनकी सोच उनकी दृष्टि 140 करोड़ लोगों का संकल्प बन जाता है तो वो एक सामूहिक स्वप्न बनता है। जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं वही विकसित भारत 2047 के सूत्रधार हैं। इस संकल्प को पूरा करने के लिए आपके देश के लोगों को शक्ति की सप्तधारा का रोड मैप दिया है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि श्री मोदी ने समावेशी विकास की सोच को देशव्यापी अभियान में बदल दिया है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी को जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना, नक्सलवाद की समाप्ति और देश के बुनियादी ढांचे को उच्चतम स्तर तक पहुंचाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं।
3: जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा ये 25 साल स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे। ये 25 साल में गरीबी से मुक्ति, सुरक्षित भारत, धारा 370 हटाना, नक्सलवाद समाप्त करना, राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को ऊपरी सीमा तक ले जाना और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव

0: ने कहा कि एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति ने राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया और लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। उधर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज सभी जिलों में सेवा ज्योति यात्रा का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में जीपीओ के पास पटेल पार्क में सेवा ज्योति यात्रा के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 25 वर्ष की जनसेवा में असंभव को संभव कर दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी द्वारा भारतीय कृषि के बदलाव पर लिखे गए एक लेख को साझा किया। ये लेख प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की यात्रा को दर्शाता है। इसमें गुजरात सहित भारतीय कृषि के व्यापक परिवर्तन की जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भारत के विकास में उनके नेतृत्व और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट टी वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और भारत बेल्जियम के बीच साझेदारी को और गहरा करने की तत्परता व्यक्त की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर उनकी सराहना की है। एक हिंदी दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री तोबगे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का महत्व अब केवल भारत ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों और ग्लोबल साउथ के लिए भी बढ़ गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी का निर्माण न केवल वर्तमान के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया जा रहा है। घाना के विदेश सेवा संस्थान में श्री जयशंकर ने कहा कि कूटनीति और प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदले बिना उसका प्रबंधन किया जाना चाहिए और आपसी हितों में मतभेदों के बावजूद भी सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: डॉक्टर जयशंकर ने अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, डिजिटल प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में भारत की प्रगति को भी रेखांकित किया। उन्होंने भारत और अफ्रीका के युवाओं को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री जयशंकर ने ईंधन, खाद्य, उर्वरक और वित्त के लिए अनुकूल आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर बल दिया और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत की साझेदारी में व्यापार, अवसंरचना, क्षमता निर्माण, मानवीय सहायता और आपदा राहत, कृषि, स्वास्थ्य और स्वच्छ ऊर्जा शामिल हैं। उन्होंने घाना में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: भारत ने फिजी में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के 31वें सम्मेलन COP31 से पहले एक सत्र में जलवायु परिवर्तन पर और अधिक ठोस कार्रवाई तथा पेरिस समझौते के शीघ्र कार्यान्वयन का आह्वान किया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी दृष्टिकोण में मौजूदा कमियों को दूर करना और वर्तमान जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वैश्विक और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच बढ़ती महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
3: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
4: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं। समिति ने 2 के मुकाबले 4 मतों से अपने रुख को सोच समझकर मौद्रिक शक्ति की ओर बदलने का भी फैसला किया है।
3: कैलिब्रेटेड टाइटनिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 4-2।
0: रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का ये आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है, बिना किसी सीमा के विस्तार। प्रधानमंत्री मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में लखपति दीदी योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है।
5: ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना संचालित की जा रही है। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को विभिन्न सतत आजीविका गतिविधियों के माध्यम से हर वर्ष कम से कम 1,00,000 रुपए की आय अर्जित करने में सक्षम बनाना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य है। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, ऋण की सुविधा, उद्यमिता के लिए मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री ने बताया है कि देश भर में अब 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
6: 3 करोड़ बहनों को हमने लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया था, उसको पार कर लिया। अब हम 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। 3 करोड़ नई लखपति दीदी बनना मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव मातृशक्ति के द्वारा आने वाला है।
5: परभणी जिले की शिल्पा देशमुख ने इस संबंध में अपने अनुभव आकाशवाणी के साथ साझा किए।
7: ड्रोन की वजह से मुझे अलग ही पहचान मिली है और मेरे उत्पन्न में बढ़त हुई है। इसकी वजह से मेरी सालाना इनकम 1,00,000 रुपए से अधिक हो गई है। इसलिए मुझे अब सिर्फ ड्रोन दीदी ही नहीं बल्कि लखपति दीदी के नाम से ही बुलाया जाता है।
5: ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से परिवारों, गांवों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने में लखपति दीदी महत्वपूर्ण पहल है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
0: दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति के प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी OSD राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। मौसम विभाग ने आज नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में आज गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वर्तमान सरकार की नीति सभी नागरिकों के लिए समाधान पर केंद्रित। उन्होंने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने भारत और अफ्रीका की युवा आबादी को कुशल और सशक्त नागरिक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि कर इसे 5.5% किया। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

इस वक्त आप हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ। लीजिए अब सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता सिंह। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा सुरीला सा नमस्कार। कई श्रोताओं कैसे हैं आप सब? हमें मालूम है कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी और इंतज़ार में होंगे कि कब आपकी फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो। देखिए मौसम बहुत ही खूबसूरत सा है इन दिनों। बदलते मौसम के साथ मन का मौसम भी बदल रहा है और मन का मौसम जब बदलता है तो जो हमारे पसंदीदा गीत होते हैं उनका भी मिजाज कुछ बदलता हुआ सा हमारे होठों पर आता है। तो हम जानना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से श्रोता हैं जिन्होंने अपनी पसंद के गीत हमें लिखकर भेजे हैं और उनकी पसंद में किस तरह के परिवर्तन हैं ये भी हम महसूस करेंगे आज के गीतों के माध्यम से। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं आपकी कसम इस फिल्म का गीत। इस गीत के लिए आवाज़ें लता मंगेशकर और लता मंगेशकर की है और गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन। रिंगनी छत्तीसगढ़ से इसी गीत को पसंद करते हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा और यवतमाल से ये खत आया हुआ है राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल, चेतन, रोशनी, बेबी प्रियांशी का। और ये चिट्ठी मैं उठा रही हूँ, इंदौर से आई हुई ये चिट्ठी है। श्रोताओं के नाम लिखे हुए हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस तपस्या और करिश्मा कामले। तो आइए लता मंगेशकर की आवाज़ में कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं अपने इन दोस्तों की पसंद पर। क्या कह गई है किसी की नज़र कुछ न पूछिए, क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ न पूछिए।

आपकी फरमाइश का अगला गीत हमराज फिल्म से हमने लिया है, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजें हैं। इसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने और संगीत तैयार किया है रवि ने। अनुरोध आप सबका है, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और बीबी आरजू जाजोरिया, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे। ये खत आया हुआ है बक्सर से, लिखने वाले श्रोता हैं मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और सानवी गुप्ता। और मलोट कैंप पंजाब से ये चिट्ठी आई है, सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लखविंदर संधु, महावीर संधु, गुरचरण गरोवर और रमेश मिगलानी इसके लिखने वाले हैं। और इसी गीत को पसंद करते हैं बहादुरपुर ज़िला जलगांव से संतोष दादा सोनार और रविंद्र सोनार। आप सबकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं हमराज फिल्म का ये नगमा। एक तेरी तमन्ना ने कुछ ऐसा नवाजा है, एक तेरी तमन्ना ने कुछ ऐसा नवाजा है, मांगी ही नहीं जाती अब कोई दुआ हमसे।

इस अंतराल के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी फरमाइश कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला गीत हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर है। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर राही, सरिता गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाणकर, प्रणीता गवाणकर, अर्जुन गवाणकर टुकटुक और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गवाणकर, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर परी। ये चिट्ठी आई है सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने इसे लिखा है। इसी गीत को पसंद करते हैं घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। ये चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ में है, इसे लिखा है श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित ने गोला बाजार बक्सर से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं तीव्रता डबरीपारा छत्तीसगढ़ से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह, जयंती मरकाम, ममता, मनीषा, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहद्रीबाई, मंजू, मानसी, मनमोहन सिंह और गिरजाबाई मरकाम। और अगला खत है दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी का। आप सबने पसंद किया है लता मंगेशकर की आवाज़ में शागिर्द फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत निर्देशक हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पहले इसमें एक अदा थी, नाज था, अंदाज था, रूठना अब तो तेरी आदत में शामिल हो गया।

फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। इसे लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है SD बर्मन ने और अनुरोध आप सबका है। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी और बबलू मंसूरी। और प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा। तुम क्या गए कि सारा जमाना चला गया, वो रात दिन नहीं है, वो शाम और सहर नहीं है।

0: आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना जरूर पूरा करेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 25 साल की जनसेवा यात्रा पूरी करने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का 7वां संस्करण आज से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए आज से 3 दिन तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रैपिड एक्शन फोर्स के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और प्रदेश से मॉनसून की विदाई के बाद भी अगले 3 दिन पूर्वी हिस्से के कई जिलों में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रहने की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें कि आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों के अंतर्गत आज शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का प्रसारण समय है शाम 5:33, 6:30 और रात 8:35। शाम 6 बजे होगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। जन सेवा से देश सेवा, हमारा ये विशेष कार्यक्रम सुनिएगा आज रात 8 बजे। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है बंटवारा। ये नाटक सुनिए रात 10 बजे, प्रस्तुतकर्ता मीनाक्षी मिश्रा। और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में रात 10:30 हम आपको सुनवाएंगे सौरभ व्रत चक्रवर्ती का सुरबहार वादन राग बिहाग। आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण के अंतर्गत शाम 7:21 पर होगा कार्यक्रम ग्राम सभा। इसमें आज किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर राजेंद्र पटेल के साथ की गई भेंटवार्ता, सरसों की उन्नत उत्पादन तकनीक। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही DTH के ऑडियो चैनल, OTT वेब्स और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी भोपाल है। दिन के 3:02 हो चुके हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये सभा अब संपन्न होती है। 5 बजे अपनी सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, नमस्कार। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

डीटीएच पर ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं भंवर सिंह अहिरवार के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।

लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे भंवर सिंह अहिरवार के गाए हुए कुछ लोकगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए साक्षी कुलश्रेष्ठ के स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की है।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप कुछ भक्ति रचनाएं सुन रहे थे। गायिका थी साक्षी कुलश्रेष्ठ। प्रस्तुति आकाशवाणी ग्वालियर की थी। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए चित्रपट संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल। और उसके बाद आप सुनेंगे सरगम फिल्म का गीत।

0: आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक का लेख साझा किया है। श्री कोटक ने लेख में बताया कि सुधारों, बुनियादी ढांचे और विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, रक्षा तथा डीप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए पहलों से देश की नई औद्योगिक क्षमताओं का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल मुंबई में उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले होने वाले इस संवाद में मध्य प्रदेश में विकसित किए जा रहे विभिन्न सेक्टर के औद्योगिक क्षेत्रों और उनमें उपलब्ध निवेश अवसरों को संबंधित उद्योग समूहों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट का 7वां संस्करण आज से भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 4 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ करेंगे। और प्रदेश में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए आज से 3 दिन तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

सामईन, अभी आप भारती विश्वनाथन की आवाज में गजल समाअत फरमा रहे थे। सामईन, फिराक की शायरी में सिर्फ इश्क और हुस्न ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी तहजीब और जिंदगी के रंग भी नुमाया हैं। वो उर्दू को हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीबी जिंदगी की जबान के तौर पर देखते हैं। उनकी शायरी में मौसम, फितरत, धूप, चांदनी रात, तन्हाई और जिंदगी के मामूली से मामूली तजुर्बे भी एक खास जमालियाती कैफियत इख्तियार कर लेते हैं। यही फिराक का कमाल है कि वो रोजमर्रा के एक मंजर को भी एहसास और शेर में तब्दील कर देते हैं। सामईन, अब समाअत फरमाइए प्रकाश पाठक की आवाज में गजल।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की जब्त शुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का छठा भाग।
1: मुल्क जन्नत निशा के इतिहास में वो बहुत अंधेरा वक्त था जब शाह किश्वर की फतहों की बाढ़ बड़े जोर शोर के साथ उस पर आई। सारा देश तबाह हो गया, आजादी की इमारतें ढह गईं और जानो माल के लाले पड़ गए। शाह बामुराद खूब जी तोड़कर लड़ा, खूब बहादुरी का सबूत दिया और अपने खानदान के 300,000 सूरमाओं को अपने देश पर चढ़ा दिया। मगर विजेता की पत्थर काट देने वाली तलवार के मुकाबले में उसकी ये मर्दाना जांबाजियां बेअसर साबित हुईं। मुल्क पर शाह किश्वर कुशा की हुकूमत का सिक्का जम गया और शाह बामुराद अकेला और तन्हा, बेयारो मददगार, अपना सब कुछ आज़ादी के नाम पर कुर्बान करके एक झोपड़े में जिंदगी बसर करने लगा। ये झोपड़ा पहाड़ी इलाके में था, आसपास जंगली कौमें आबाद थीं और दूर दूर तक पहाड़ों के सिलसिले नजर आते थे। इस सुनसान जगह में शाह बामुराद मुसीबत के दिन काटने लगा। दुनिया में अब उसका कोई दोस्त न था। वो दिन भर आबादी से दूर एक चट्टान पर अपने ख्याल में मस्त बैठा रहता था। लोग समझते थे ये कोई ब्रह्म ज्ञान के नशे में चूर सूफी है। शाह बामुराद को यूं बसर करते एक जमाना बीत गया। जवानी की विदाई और बुढ़ापे के स्वागत की तैयारियां होने लगीं। तब एक रोज शाह बामुराद बस्ती के सरदार के पास गया और उसने कहा,
2: मैं अपनी शादी करना चाहता हूं।
1: वो अचंभे में आ गया, मगर चूंकि दिल में शाह साहब के कमाल और फकीरी में गहरा विश्वास रखता था, पलटकर जवाब न दे सका और अपनी कुंवारी नौजवान बेटी रिंदा की शादी उनसे कर दी। तीसरे साल इस युवती की कामनाओं की वाटिका में एक नौरस पौधा उगा। शाह साहब खुशी के मारे जामे में फूले न समाए, बच्चे को गोद में उठा लिया और हैरत में डूबी हुई माँ के सामने जोश भरे लहजे में बोले,
2: खुदा का शुक्र है कि मुल्क जन्नत निशा का वारिस पैदा हुआ।
3: ये नाजुक सा बच्चा इस मुल्क का बादशाह होगा।
2: बेशक बेगम, मुझे खुशी है। अक्ल और जहानत में, हिम्मत और ताकत में ये अपनी दुगनी उम्र के बच्चों से बढ़कर है।
1: सुबह होते ही गरीब रिंदा बच्चे का बनाव सिंगार करके और उसे नाश्ता खिलाकर अपने काम धंधों में लग जाती थी और शाह साहब बच्चे की उंगली पकड़कर उसे आबादी से दूर चट्टान पर ले जाते थे। वहां कभी उसे पढ़ाते, कभी हथियार चलाने की मशक कराते और कभी उसे शाही कायदे समझाते। बच्चा था तो कमसिन, मगर इन बातों में ऐसा जी लगाता और ऐसे चाव से लगा रहता गोया उसे अपने वंश का हाल मालूम है। मिजाज भी बादशाहों जैसा था। गांव का एक एक बच्चा उसके हुक्म का फरमा बरदार था। माँ उस पर गर्व करती, बाप फूला न समाता और सारे गाँव के लोग समझते कि वो शाह साहब के जब तप का असर है।
3: मेरा बच्चा मसूद देखते देखते 7 साल का हो गया है, या अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाना।
1: एक रोज शाम का वक्त था, शाह साहब अकेले सैर करने गए और जब लौटे तो उनके सर पर एक जड़ाऊ ताज शोभा दे रहा था। रिंदा उनका ये हुलिया देखकर सहम गई और मुंह से कुछ बोल न सकी। तब उन्होंने नौजवान मसूद को गले से लगाया, उसी वक्त उसे नहलाया धुलाया और एक चट्टान के तख्त पर बैठा कर दर्द भरे लहजे में बोले,
2: मसूद, मैं आज तुमसे रुखसत होता हूँ और तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपता हूँ। ये उसी मुल्क जन्नत निशा का ताज है। कोई वो जमाना था कि जब ये ताज तुम्हारे बदनसीब बाप के सर पर जेब देता था। अब वो तुम्हें मुबारक हो। रिंदा, तेरा बदकिस्मत शोहर किसी जमाने में इस मुल्क का बादशाह था और अब तू इसकी मलिका है। मुल्क का बादशाह था और अब तू इसकी मलिका है। मैंने ये राज तुझसे अब तक छिपाया था, मगर हमारे अलग होने का वक्त बहुत पास है। अब छिपा कर क्या करूं? मसूद, तुम अभी बच्चे हो मगर दिलेर और समझदार हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने बाप की आखिरी वसीयत पर ध्यान दोगे और उस पर अमल करने की कोशिश करोगे। ये मुल्क तुम्हारा है, ये ताज तुम्हारा है और ये रियाया तुम्हारी है। तुम इसे अपने कब्जे में लाने की मरते दम तक कोशिश करते रहना और अगर तुम्हारी तमाम कोशिशें नाकाम हो जाएं और तुम्हें भी यही बेसरो सामानी की मौत नसीब हो तो यही वसीयत तुम अपने बेटे से कर देना और ये ताज जो उसकी अमानत होगी उसके सुपुर्द करना। मुझे तुमसे और कुछ नहीं कहना। खुदा तुम दोनों को खुश व खुर्रम रखे और तुम्हें मुराद को पहुंचाए।
1: ये कहते कहते शाह साहब की आंखें बंद हो गईं। रिंदा दौड़कर उनके पैरों से लिपट गईं और मसूद रोने लगा। दूसरे दिन सुबह गांव के लोग जमा हुए और पहाड़ी गुफा की गोद में शाह बामुराद की लाश रख दी गई। शाह किश्वर कुशा ने आधी सदी तक खूब इंसाफ के साथ राज किया, मगर किश्वर कुशा दोयम ने सिंहासन पर आते ही अपने अक्लमंद बाप के मंत्रियों को एक सिरे से बर्खास्त कर दिया और अपनी मर्जी के मुआफिक नए नए वजीर और सलाहकार नियुक्त किए। सल्तनत का काम रोज बरोज बिगड़ने लगा। सरदारों ने बेइंसाफी पर कमर बांधी और हुक्काम रियाया पर जोर जबरदस्ती करने लगे। यहां तक कि खानदाने मुरांदिया के एक पुराने नमकखोर ने मौका अच्छा देखकर बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। आसपास के लोग उसके झंडे के नीचे जमा होने लगे और कुछ ही हफ्तों में एक बड़ी फौज कायम हो गई और मसूद भी नमकखोर सरदार की फौज में आकर मामूली सिपाहियों का काम करने लगा। मसूद का यौवन अभी आरंभ हो रहा था। उसके दिल में मर्दाना जोश और बाजुओं में शेरों की कुव्वत मौजूद थी। ऐसा लंबा तड़ंगा सुंदर नौजवान बहुत कम किसी ने देखा होगा। शेरों के शिकार का उसे इश्क था। लबो लहजा ऐसा दिलकश पाया कि जिस वक्त मस्ती में आकर कोई कौमी गीत छेड़ देता तो राह चलते मुसाफिरों और पहाड़ी औरतों का जमघट लग जाता था। कितने ही भोले भाले दिलों पर उसकी मोहिनी सूरत नक्श थी, कितनी ही आँखें उसे देखने को तरसती थीं और कितनी ही जानें उसकी मोहब्बत की आग में घुलती थीं। मगर मसूद पर अभी तक किसी का जादू न चला था। हाँ, अगर उसे मोहब्बत थी तो उसकी आबदार शमशीर से, जो उसने बाप से विरसे में पाई थी। इस तेग को वो जान से ज़्यादा प्यार करता था और उसे पूरा यकीन था कि यही तलवार किसी दिन किश्वर कुशा दोयम के सर पर चमकेगी। एक रोज एक शेर का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गया।
4: उफ, कितनी सख्त धूप है, भूख और प्यास से जी बेताब हो

0: यहाँ तो ना कोई मेवे का दरख्त नजर आ रहा है और ना कोई बहता हुआ पानी का सोता जिससे भूख और प्यास की आग बुझा सकूं।
1: मसूद हैरान और परेशान खड़ा था कि सामने से एक चांद जैसी सुंदर लड़की हाथ में बर्छी लिए बिजली की तरह तेज घोड़े पर सवार आती हुई दिखाई दी।
0: उफ, भला की खूबसूरत है ये लड़की। पसीने की मोती जैसी बूंदें इसके माथे पर झलक रही हैं। अंबर की खुशबू में बसे हुए बाल दोनों कंधों पर किस बेतकल्लुफी से बिखरे हुए हैं। मेरा दिल हाथ से फिसला जा रहा है। मैंने दुनिया को जला डालने वाला ऐसा हुस्न आज तक नहीं देखा।
1: उसके ऊपर एक सख्ता सा छा गया। यह जवान लड़की उस जंगल में मलिका शेर अफगन के नाम से मशहूर थी। मलिका ने मसूद को देखकर घोड़े की बाग खींच ली और गर्म लहजे में बोली,
2: क्या तू वही नौजवान है जो मेरे इलाके में शेरों का शिकार किया करता है? बतला, तेरी इस गुस्ताखी की क्या सजा दूं?
0: इस सवाल का जवाब मैं खूब देता अगर आपके बजाय यह किसी दिलेर मर्द की जबान से निकलता।
1: इन शब्दों ने मलिका के गुस्से की आग को और भी भड़का दिया। उसने घोड़े को चमकाया और बर्छी उछालती सर पर आ पहुंची। उसने अब तक मलिका के वारों को काटने के सिवाय खुद एक हाथ भी न चलाया था। तब मलिका घोड़े से कूदी और अपना रूमाल फाड़ फाड़ कर मसूद के जख्म बांधने लगी। ऐसा दिलेर और गैरतमंद जवां मर्द उसकी नज़र में आज तक न गुजरा था। वो बहुत आराम से उठवाकर अपने खेमे में ले आई और पूरे दो हफ्तों तक उसकी तीमारदारी में लगी रही। घाव भर गया और मसूद का चेहरा फिर पूरनमासी के चांद की तरह चमकने लगा। अब मलिका ने उसके पास आना जाना छोड़ दिया। एक रोज मलिका शेर अफगन ने मसूद को दरबार में बुलाया और ये बोली,
2: ऐ घमंडी नौजवान, अब मेरे इलाके से जा। मैं तेरी गुस्ताखी माफ करती हूँ, मगर आइंदा मेरे इलाके में शिकार के लिए आने की हिम्मत न करना। फिलहाल ताकीद के तौर पर तेरी तलवार छीन ली जाएगी ताकि तू घमंड के नशे में चूर होकर फिर उधर कदम बढ़ाने की हिम्मत न करे।
0: जब तक मेरे दम में दम है कोई ये तलवार मुझसे नहीं ले सकता।
1: ये सुनते ही एक देव जैसा लंबा तड़ंगा हैकल पहलवान ललकार कर बढ़ा और मसूद की कलाई पर तेगे का तुला हुआ हाथ चलाया। मसूद ने वार खाली किया और संभल कर तेगे का वार किया तो पहलवान की गर्दन की पट्टी तक बाकी न रही। यह कैफियत देखते ही मलिका की आंखों से चिंगारियां उड़ने लगी।
2: खबरदार, ये शख्स यहाँ से जिंदा वापस न जाने पाए।
1: चारों तरफ से आजमाए हुए मजबूत सिपाही पिल पड़े और मसूद पर तलवारों और बर्छियों की बौछार पड़ने लगी। मसूद का जिस्म जख्मों से छलनी हो गया। खून के फव्वारे जारी थे और खून की प्यासी तलवारें जबान खोले बार बार उसकी तरफ लपकती थी और उसका खून चाटकर अपनी प्यास बुझा लेती थी। कितनी ही तलवारें उसकी ढाल से टकराकर टूट गईं, कितने ही बहादुर सिपाही जख्मी होकर तड़पने लगे और कितने ही उस दुनिया को सिधारे, मगर मसूद के हाथ में वो आबदार शमशीर ज्यों की त्यों बिजली की तरह कौंधती और वार करती रही। यहाँ तक कि इस फन के कमाल को समझने वाली मलिका ने खुद उसकी तारीफ का नारा बुलंद किया और उसके तेगे को चूमकर बोली,
2: मसूद, तू बहादुरी के समंदर का मगर है। शेरों के शिकार में वक्त बर्बाद मत कर। दुनिया में शिकार के अलावा और भी ऐसे मौके हैं जहां तू अपने आबदार तेगे का जौहर दिखा सकता है। जा और मुल्क और कौम की खिदमत कर। शेरों शिकार हम जैसी औरतों के लिए छोड़ दे।
1: नमकखोर सरदार की फौज रोज बरोज बढ़ने लगी। पहले तो वो अंधेरे के पर्दे में शाही खजानों पर हाथ बढ़ाता रहा। धीरे धीरे एक बाकायदा फौज तैयार हो गई। यहाँ तक कि सरदार को शाही फौजों के मुकाबले में अपनी तलवार आजमाने का हौसला हुआ और पहली लड़ाई में 24 किले इस नई फौज के हाथ आ गए। और जब मस्कात के मजबूत किले में सरदार नमकखोर शाही किलेदार की मसनत पर अमीराना ठाट बाट से बैठा और अपनी फौज की कारगुजारियां और जंबाजियों के इनाम देने के लिए एक तश्त में सोने के तमगे मंगवा कर रखे, तो सबसे पहले जिस सिपाही का नाम पुकारा गया वो नौजवान मसूद था।
3: मसूद, तुझ पर हमारी पूरी फौज फख्र करती है। लड़ाई के मैदान में सबसे पहले तेरी तलवार चमकती है और धावे के वक्त सबसे पहले तेरे ही कदम उठते हैं। दुश्मन के मोर्चे में ऐसा बेधड़क घुसता है तू

0: जैसे आसमान में चमकता हुआ लाल तारा। तेरी तलवार के वार कयामत बरसाते हैं और तेरे तीर मौत का संदेश देते हैं, इसलिए हम तुझे बहादुरी का तमगा इनाम में देते हैं।
1: किश्वर कुशा दोयम ने बागियों को कुचलने के लिए अब की एक जबरदस्त फौज रवाना की और मेष शुजा को उसका सिपा सालार बनाया, जो लड़ाई के मैदान में अपने वक्त का इस फंदियार था। सरदार नमकखोर ने यह खबर पाई तो हाथ पांव फूल गए। मेष शुजा के मुकाबले में आना अपनी हार को बुलाना था। आखिरकार ये राय तय पाई गई कि इस जगह से आबादी का निशान मिटाकर हम लोग किलेबंद हो जाएं। उस वक्त नौजवान मसूद ने उठकर बड़े पुरजोश लहजे में कहा,
2: नहीं, हम किलेबंद नहीं होंगे, हम मैदान में रहेंगे और हाथों हाथ दुश्मन का मुकाबला करेंगे। हमारे सीनों की हड्डियां ऐसी कमजोर नहीं है कि तीर तुपुक के निशाने बर्दाश्त ना कर सकें। किलेबंद होना इस बात का ऐलान है कि हम आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्या आप लोग जो शाह बामुराद का नाम लेवा है भूल गए कि इस मुल्क पर उसने अपने खानदान के 300,000 सपूतों को फूल की तरह चढ़ा दिया? नहीं, हम हरगिज किलेबंद नहीं होंगे। हम दुश्मन के मुकाबले में ताल ठोक कर आएंगे और अगर खुदा इंसाफ करने वाला है तो जरूर हमारी तलवारें दुश्मनों के गले मिलेंगी और हमारी बर्थियां उनके पहलू में जगह पाएंगी।
0: मसूद, तेरी हिम्मत और हौसले की मैं दाद देता हूं, तू हमारी फौज की शान है। बेशक हम किले बंद ना होंगे, हम दुश्मन के मुकाबले में ताल ठोक कर आएंगे और अपने प्यारे जन्नत निशां के लिए अपना खून पानी की तरह बहाएंगे। तू हमारे लिए आगे आगे चलने वाली मशाल है और हम सब आज इसी रोशनी में कदम आगे बढ़ाएंगे।
1: मसूद ने चुने हुए सिपाहियों का एक दस्ता तैयार किया और कुछ इस दमखम और कुछ इस जोश खरोश से मीर शुजा पर टूटा कि उसकी सारी फौज में खलबली पड़ गई। 3 घंटे तक बला का शोर मचा रहा, यहाँ तक कि शाही फौज के कदम उखड़ गए और वो सिपाही जिसकी तलवार मीर शुजा के गले मिली मसूद था। सरदारी फौज और अफसर सबके सब लूट के माल पर टूटे और मसूद जख्मों से चूर और खून में रंगा हुआ अपने कुछ जान पर खेलने वाले दस्तों के साथ मस्कात के किले की तरफ लौटा। मगर जब होश ने आंखें खोली और हवास ठिकाने हुए तो वो देखता है,
3: ये सजे हुए कमरे में मखमली गद्दे पर किसने लिटा दिया? फूलों की सुहानी महक और लंबी छरहरी सुंदरियों के जमघट से कमरा चमन बना हुआ है। ये किसका महल है? मैं यहाँ कैसे पहुंचा?
1: मसूद ताज्जुब से इधर उधर ताकने लगा कि इतने में एक अप्सरा जैसी सुंदर युवती तश्त में फूलों का हार लिए धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी। मसूद देखते ही पहचान गया, ये मलिका शेर अफगन थी। मलिका ने फूलों का हार मसूद के गले में डाला, हीरे जवाहरात उस पर चढ़ाए और सोने के तारों से टकी हुई मसनत पर बड़ी आन बान से बैठ गईं। साजिंदों ने शहनाई पर विजयी अतिथि के स्वागत के सुहाने राग अलापने शुरू किए। इधर तो नाच गाने की महफिल थी, उधर आपसी डाह ने नए नए शिगुफे खिलाए। सरदार से शिकायत की कि मसूद जरूर दुश्मन से जा मिला है। इसके सबूत में कुछ जाली खत भी दिखाए गए और इस कमीनी कोशिश में जबान की ऐसी चालाकी से काम लिया कि आखिर सरदार को इन बातों पर यकीन आ गया। पो फटे जब मसूद मलिका शेर अफगन के दरबार से विजय का हार गले में डाले सरदार को बधाई देने गया तो बजाय इसके कि कद्रदानी का सिरोपा और बहादुरी का तमगा पाए, उसको खरी खोटी बातों के तीर का निशाना बनाया गया और हुक्म मिला कि तलवार कमर से खोलकर रख दे।
3: ये तेगा मैंने अपने बाप से विरसे में पाया है, ये मेरे पिछले बड़प्पन की आखिरी यादगार है, ये मेरी बाहों की ताकत और मेरा सहयोगी और मददगार है। इसके साथ कैसी कैसी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। क्या मैं जीते जी इसे अपने पहलू से अलग कर दूं? अगर मुझ पर कोई आदमी लड़ाई के मैदान से कदम हटाने का इल्ज़ाम लगा सकता, अगर कोई शख्स इस तेगे का इस्तेमाल मेरे मुकाबले में ज़्यादा कारगुजारी के साथ कर सकता, अगर मेरी बाहों में तेगा पकड़ने की ताकत न होती तो खुदा की कसम मैं खुद ही तेगा कमर से खोल कर रख देता। मगर खुदा का शुक्र है कि मैं इन इल्ज़ामों से बरी हूँ। फिर क्यों मैं इसे हाथ से जाने दूँ? क्या इसलिए कि मेरी बुराई चाहने वाले कुछ थोड़े से डाहियों ने सरदार नमकखोर का मन मेरी तरफ से फेर दिया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी

0: रिंदा के पैरों पर गिर पड़ा। रिंदा अपने जिगर के टुकड़े को देखते ही पहचान गई। उसे छाती से लगा लिया और वो जड़ाऊ ताज उसके सर पर रखकर बोली,
1: साहबो, यही मेरा प्यारा मसूद है। ये मुल्क इसका है, ये सारी हुकूमत इसकी है। आज से ये अपने मुल्क का बादशाह है।
0: दरबार में कयामत का शोर मचने लगा। दरबारी उठे और मसूद को हाथों हाथ ले जाकर तख्त पर मलिका शेर अफगन के बगल में बैठा दिया। भेंटें दी जाने लगीं, सलामियां दगने लगीं। नफीरियों ने खुशी का गीत गाया और बाजों ने जीत का शोर मचाया। मगर जब जोश की ये खुशी जरा कम हुई और लोगों ने रिंदा को देखा तो वो मर चुकी थी। आरजुओं के पूरे होते ही जान निकल गई। गोया आरजुएं रूह बनकर उसके मिट्टी के तन को जिंदा रखे हुए थी।

संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 6। डीटीएच पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 188.3 दो मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी संध्याकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। 4 दिन का यह आयोजन आज शुरू हुआ। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का विषय है बिना किसी सीमा के विस्तार। इसमें दूरसंचार, डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भारत की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राहली सिलासागर में आयोजित वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में विभिन्न टाइगर रिजर्व की इको विकास समितियों को चेक वितरित किए। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वन्य कर्मियों को सम्मानित भी किया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि आज देश की महिलाएं देश के विकास में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। नई दिल्ली में सुरक्षा अधिकारियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुश्री देवी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब देश की माताओं, बहनों और बेटियों को सशक्त और सुरक्षित बनाया जाएगा। और रतलाम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहभागिता की। उन्होंने कहा कि महोत्सव किसानों को नई तकनीक, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और समृद्धि के नए अवसरों से जोड़ने का व्यापक अभियान है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। युवा श्रोता सुने अपना कार्यक्रम युवा वाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति है।

कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी सिंपल सी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगे हों? जैसे किसी ने आपसे पूछा और उस वक्त आपके पास कोई जवाब नहीं था, आपने बस कह दिया पता नहीं, लेकिन उसके बाद दिमाग में उस पता नहीं को लेकर एक पूरी मीटिंग सी बैठ गई। शायद मुझे पता होना चाहिए था, बाकी सबको तो पता होता है, मैं इतना कन्फ्यूज्ड क्यों हूँ? कभी कभी किसी सवाल का जवाब हम नहीं जानते, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंता हमें इस बात की होती है कि हमें जवाब पता क्यों नहीं है। क्या हर सवाल का जवाब पता होना ज़रूरी है? क्या हर सिचुएशन में हमें तुरंत तय कर लेना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या? और अगर हम थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा सोच लें या बस कह दें कि मुझे अभी नहीं पता, तो क्या ये कोई कमज़ोरी है? क्या ये एक जवाब नहीं हो सकता? क्या हमेशा परफेक्ट होना ज़रूरी है? नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त हरिप्रिया, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज की चर्चा कोई करंट अफेयर्स या सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन सवालों की जो हम अक्सर दूसरों से नहीं खुद से पूछते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सवालों का कोई फिक्स्ड जवाब नहीं होता। आज हम ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो मैंने शुरुआत में आपसे पूछा था कि क्या हमें सच में हर चीज़ का जवाब पता होना चाहिए? हमारी लाइफ में सवालों की कोई कमी नहीं होती। हम बहुत छोटे होते हैं तब से ही हमें सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा ABCD सुनाओ, चलो पोएम सुनाओ, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? और ये सब सवाल तब पूछे जाते हैं जब हम धीरे धीरे चीज़ें सीख रहे होते हैं, महज 2-3 साल के होते हैं। और फिर थोड़ा धीरे धीरे बड़े होते हैं तो स्कूल आ जाता है। स्कूल से आते ही मम्मी पूछती हैं, आज स्कूल में क्या हुआ था, होमवर्क क्या मिला है, अच्छा तुम्हारा टेस्ट कैसा गया? और हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। फिर हम कॉलेज में आते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं, और धीरे धीरे शायद हमारी आदत बन जाती है कि हर क्वेश्चन का मतलब है आंसर करना। लेकिन लाइफ थोड़ी अलग है। लाइफ के क्वेश्चंस के सामने अक्सर ऑप्शंस नहीं होते, कोई आंसर की नहीं होती, और हमेशा कोई टीचर नहीं होता जो लाइफ के सवालों का क्या जवाब देना है हमें बता सके। इसी वजह से लाइफ के कुछ सवाल हमें अनकंफर्टेबल कर देते हैं और हम बहुत सारी चीज़ों में कंफ्यूज होने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं खुद पर। अभी हमसे पूछा जाता है कि आगे क्या करना है, तुम्हारा प्लान क्या है, और कभी कभी हम खुद से ही पूछते हैं कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, और हमारे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन शायद हमें एक चीज़ एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, दैट नॉट नोइंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नोइंग। हर चीज़ पहले से क्लियर नहीं होती, कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस के बाद समझ आती हैं। कभी हम कोई डिसीजन से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम खुद को सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, और बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि ये हमारे लिए सही नहीं था।

0: कभी कोई डिसीजन उस वक्त गलत लगता है और कुछ समय बाद समझ आता है कि नहीं, इससे हमने बहुत कुछ सीखा। तो फिर ज़रा सोचिए कि ये राइट आंसर एग्जैक्टली क्या है, और क्या हमारी लाइफ में हर डिसीजन का सिर्फ एक राइट आंसर होता है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमेशा हर चीज़ का राइट आंसर होना ज़रूरी है। कभी कभी दो अलग चॉइसेस भी इक्वली रीजनेबल हो सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कौन सी चॉइस उस वक्त के लिए बेटर है ये समझने में हमें थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हमें तो सब कुछ इंस्टेंट चाहिए। आज की जेनरेशन में एक चीज़ बहुत कॉमन है, इंस्टेंट आंसर्स। कुछ भी जानना है सर्च कर लो, कुछ समझना है यूट्यूब पे वीडियो देख लो, और कुछ डिसाइड करना है फटाफट किसी दोस्त को फ़ोन लगा के पूछ लो। और टेक्नोलॉजी ने ये सब बहुत आसान कर दिया है, लेकिन लाइफ के आंसर्स गूगल पर नहीं मिलते। हाँ, अगर आप मुझे क्या करना चाहिए यह गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको हज़ार जवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से आपका कौन सा जवाब है ये आपको कैसे पता? और चलो, देख के लग भी रहा है कि हाँ ये मेरा जवाब है, तो आपका जवाब आपको खुद फिगर आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो जवाब है किसी और का। बस आपको देख कर लग रहा है कि हाँ मैं भी सेम सोचता हूँ, तो मेरे लिए भी यही सही है। तो इस चीज़ को आपको खुद ही समझना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि क्या सच में जो देख के लग रहा है वही मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ। और शायद इसी प्रोसेस को पेशेंस कहते हैं। हर चीज़ का जवाब तुरंत ढूंढने की जगह कभी कभी सवाल के बारे में थोड़ा सोचना भी ज़रूरी है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब हम सोच कर नहीं, देख कर और समझ कर देते हैं। जैसे आपको किस टाइप के लोगों के साथ रहना पसंद है, या आपको किस किस माहौल में शांति मिलती है, आप किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, या आपको किस तरह की लाइफ मीनिंगफुल लगती है। इन सब का जवाब एक दिन में नहीं मिलता, और अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से पीछे हैं। मे बी यू आर स्टिल फिगरिंग इट आउट, और ऑनेस्टली फिगरिंग इट आउट भी लाइफ का एक प्रॉपर फेज होता है। हम अक्सर अनसर्टेनिटी को प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी कभी कभी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अगर मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज़ और अच्छी हों। लाइफ में किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती, तो शायद हमें हर जवाब के पीछे भागने की बजाय एक और स्किल डेवलप कर लेनी चाहिए, अनसर्टेनिटी के साथ कम्फर्टेबल हो जाना। और इतना कम्फर्टेबल हो जाना कि हम आसानी से कह सकें अभी मुझे नहीं पता, बिना यह सोचे कि मुझे जज किया जाएगा या मेरी इमेज पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और मुझे नहीं पता कहने के बाद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये उठता है कि अगर मुझे नहीं पता तो दुनिया मुझसे क्या एक्सपेक्ट करती है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी, मैं खुद से क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। इसका हम नहीं सोचते, पता नहीं क्यों हम खुद से ज़्यादा दूसरों की सोचते हैं। हमें दूसरों की चीज़ें सुनते सुनते कभी कभी अपने आप पर ध्यान देना ही नहीं, हमें नहीं हम आएगा सॉरी हम दूसरों की चीज़ें सुनते सुनते कभी कभी अपने आप पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं। हम सबसे पहले बस ये सोचते हैं ये करूँगी तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन अगर एक मिनट के लिए हम सारी चीज़ें साइड में रख दें तो शायद एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल सामने आएगा कि हम खुद क्या चाहते हैं। हम इस पर अभी और चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत सा गाना।
1: Your present to ruin a beautiful future.

0: You're different. You know, सबसे अलग.
1: लग रहा है बहुत बड़ा हो जाएगा.
2: कोई बात नहीं,
1: ठीक है. तो अभी हम बात कर रहे थे.

और किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी को खुश नहीं करना या किसी से कोई भी सलाह नहीं लेनी, तो आप अपना दिन कैसे स्पेंड करेंगे? आप क्या सीखेंगे, किस चीज़ के लिए टाइम निकालेंगे और किस चीज़ को खुलकर दिल से करेंगे? और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप किस तरह का इंसान बनना चाहेंगे? ये सवाल सुनने में थोड़ा फिलोसफिकल लग सकता है, लेकिन हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो इसका हमसे बहुत इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, क्योंकि हम फैसले सिर्फ अपनी मर्ज़ी से नहीं लेते। कभी कभी हम इमेजिन करते हैं कि दूसरे लोग हमारे डिसीजंस को कैसे देखेंगे, और उसकी वजह से हमारा डिसीजन बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को कुछ नया ट्राई करना है, लेकिन वो सोचता है कि लोग हंसेंगे। किसी को किसी डिफरेंट फील्ड में इंटरेस्ट है, लेकिन उसे लगता है कि ये करूँगा तो घर वाले नाराज़ हो जाएंगे। किसी को अपनी लाइफ का पेस स्लो रखना है, लेकिन आसपास के लोग फास्ट मूव कर रहे हैं तो उसे लगता है कहीं मैं पीछे तो नहीं रह जाऊँगा, और यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है। हम अक्सर अपनी लाइफ के बिहाइंड द सीन्स को किसी और की हाईलाइट रील से कंपेयर कर देते हैं और फिर खुद से ही निराश हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर कोई देख ही नहीं रहा हो तो तब भी आप वही लाइफ चूज़ करेंगे? अगर आंसर हाँ है तो मुबारक हो, आप किसी और के ज़रिए या किसी और की सलाह से सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए वो लाइफ नहीं जी रहे हैं। और अगर आपका जवाब ना है तो शायद एक बार रुककर सोचना चाहिए कि हम ये कर किस लिए रहे हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी अंतर है कि अपनी मर्ज़ी से जीने का मतलब ये नहीं होता कि किसी से एडवाइस ही नहीं लेना। पेरेंट्स की बात बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती है, टीचर्स की एडवाइस काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, फ्रेंड्स का पर्सपेक्टिव ज़रूरी हो सकता है, लेकिन एडवाइस और डिसीजन में अंतर यह है कि एडवाइस दूसरे दे सकते हैं, पर डिसीजन इवेंचुअली आपको ही लेना है। समझने के लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अब सेल्फ अवेयरनेस कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, बस इतना नोटिस करना कि किस चीज़ के बाद हमें ऐसा लगता है कि आज का दिन बहुत वर्थ वाइल था। हम किस चीज़ को सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं? ये सवाल हमारे लिए आईने की तरह हो सकते हैं, और शायद सबसे कठिन भी। अगर हमें किसी को प्रूव नहीं करना हो तो हम क्या चूज़ करेंगे? क्योंकि कभी कभी हमारी लाइफ में अचीवमेंट से ज़्यादा वैलिडेशन ज़रूरी हो जाता है। कुछ अचीव किया है तो अप्रूवल चाहिए, और ये नॉर्मल भी है क्योंकि आजकल सब यही कर रहे हैं। हम सोशल मीडिया के ज़माने की जनरेशन है, हमें एप्रिसिएशन अच्छा लगता है, मगर एप्रिसिएशन ही हर डिसीजन का रीज़न बन जाए, ये तो सही नहीं। अच्छा, हम सबसे पूछते हैं इससे, नहीं नहीं, हमें खुद से पूछना चाहिए कि इससे मुझे क्या मिल रहा है, पर हम पूछते हैं इससे लोग मुझे क्या समझेंगे, और दोनों सवालों में बहुत अंतर है। इसलिए कभी कभी सिर्फ अपने लिए कुछ करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कुछ पढ़ना, वॉक पर जाना, म्यूज़िक सुनना, घर वालों के साथ टाइम बिताना, या कुछ देर सिर्फ और सिर्फ चुप बैठकर अपने साथ वक्त बिताना, ताकि हमें पता चले कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम सिर्फ दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से नहीं जी रहे हैं, हम खुद एक इंडिविजुअल हैं और हमारी लाइफ चॉइसेस भी अलग हो सकती हैं। कभी कभी मन कर सकता है कि सबसे ब्रेक लेके सिर्फ घूमने निकल जाए, लेकिन अगर हम ये सोचें कि और कोई वो नहीं कर रहा, या अगर मैं ब्रेक लूँगा तो कोई मुझसे आगे निकल जाएगा, तो शायद हम किसी और की वजह से खुद के डिसीजंस को डाउट कर रहे हैं, लाइफ में बस भाग रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप भी वैसा ही सोचें जैसे सब सोचते हैं, सबकी लाइफ चॉइसेस और डिसीजंस अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए हमें वो करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले और आसपास के लोग भी उससे खुश रहें। इसलिए हमें हमारे दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, और उस आवाज़ को सुनने के लिए हमें दुनिया की वॉल्यूम को कम करना पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी? कि डिसीजन तो ले लिया, पर रिज़ल्ट कब होगा, कब मिलेगा रिज़ल्ट? रिज़ल्ट की वजह से हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। इतना टाइम क्यों लग रहा है, सबसे ज़रूरी सवाल। तो अब हम आते हैं सेल्फ डाउट पर। बार

बार खुद से ही सवाल करते हैं कि सबकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, मगर मेरी लाइफ में क्यों नहीं। और शायद ये बात हमारी पूरी लाइफ पर लागू होती है। हर चीज़ का अपना टाइम होता है, ये बात सुनना आसान लगता है, लेकिन उस टाइम का वेट करते करते हमें हार नहीं माननी चाहिए, और शायद यही असली चैलेंज है।

तो आज हमने खुद से 3 सवाल पूछे। क्या हर चीज़ का जवाब हमें पता होना ज़रूरी है? और अगर कोई जज नहीं कर रहा तो हम क्या चूज़ करेंगे? हम चूज़ कर लेंगे, लेकिन क्या हम उसका इंतज़ार कर सकते हैं? बैठकर सोचिएगा, खुद से पूछिएगा, हम जो लाइफ जी रहे हैं क्या हम उसके इसलिए चूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम सच में चाहते? क्या हम जो लाइफ जी रहे हैं हम उसे इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि हम सच में चाहते हैं, या क्योंकि हमें लगता है कि बस चूज़ करना चाहिए? और अगर इसका जवाब आपको ना

मिले तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने आज की बात ही यहीं से शुरू की थी। हर चीज़ का जवाब मिलना ज़रूरी नहीं है। मे बी सम क्वेश्चंस नीड टाइम, मे बी सम आंसर्स नीड एक्सपीरियंस। शायद कुछ जवाब तब मिलते हैं जब हम उन्हें ढूंढना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखिए, खुद को कंपेयर करना बंद करिए और अपनी लाइफ की जर्नी को वक्त दीजिए। ऐसे ही कुछ रोचक बातें लेकर आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।

युवा श्रोता सुन रहे थे युवाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी ग्वालियर की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
3: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी

लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।

लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आरंभ पलक मुझल के गाए हुए इस गीत से है, जिसे लिखा मनोज मुंतशिर ने, संगीत अमाल मलिक का है। फिल्म है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी।

0: मिथुन, अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में गाए शिवाय फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार एकांश का कार्यक्रम भारत का गौरवशाली अंतरिक्ष सफर।
1: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कटियार। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा आज विश्वभर में प्रेरणा का पर्याय बन चुकी है। अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने से लेकर चंद्रमा के अनदेखे दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहराने तक और अब गगनयान के जरिए भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को गगन में भेजने की तैयारियों तक, भारत ने यह साबित किया है कि सीमित संसाधनों और उच्च स्वदेशी तकनीक के बल पर कम खर्च में असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। अंतरिक्ष में भारत की इस अभूतपूर्व विजय, वैज्ञानिक उपलब्धियों और युवाओं के लिए उभरते अवसरों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल के प्रधान क्यूरेटर एवं केंद्र प्रमुख श्री साकेत सिंह कौरव जी। साकेत जी, आकाशवाणी भोपाल के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को और परिवार को आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: तो चलिए इस चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। साकेत जी, अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचकर इतिहास रचने वाला देश का मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान दुनिया भर के लिए कम लागत में उच्च तकनीक का एक अद्भुत उदाहरण बना। इस मिशन से हमें कौन कौन सी तकनीकी और वैज्ञानिक लाभ हासिल हुए और इस पूरे मिशन को किस रूप में आप देखते हैं?
2: ये भारत के लिए काफी गौरव का पल रहा है, क्योंकि आप जब इंटरप्लैनेटरी मिशन की बात करते हैं तो भारत पहली बार ये प्रयास कर रहा था कि हम अपनी पृथ्वी की कक्षाओं को ही सिर्फ नहीं छोड़ रहे थे, न हमारे सिर्फ पड़ोसी चांद पे जा रहे थे, हम एक दूसरे ग्रह पे जा रहे थे जो भी सूर्य के चक्कर लगाता है और वो हमारे पड़ोसी ग्रहों में से एक है, वो है मंगल।
1: जी,
2: और अगर आप बात माने साइंस फिक्शन में भी आज से कई वर्षों सैकड़ों वर्षों पहले कल्पनाएं करने की कोशिश की भी की गई है मंगल पे जीवन को लेकर। आर्थर सी क्लार्क ने भी अपनी बातें रखी हैं और जाने माने उपन्यासकारों में से जूल वर्न और एच जी वेल्स जैसे लोगों ने भी लिखा है। तो मंगल हमेशा भारतीय छोड़िए पूरी दुनिया का एक सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है और रहेगा, क्योंकि जब तक इंसान की पहुंच में वो आ नहीं जाएगा। इंसानी अभियानों की बात कर रहे हैं
1: जी।
2: नासा ने वाइकिंग मिशन के माध्यम से कुछ रोवर उतारना 70-80 के दशक में शुरू किया। उसके बाद नासा बहुत पावरफुल तरीके से रशियंस वगैरह भी मंगल को बहुत एक्सेस करते रहे। भारत इस पहल में दूर नहीं रहना चाहता था। भारत ने भी इस टेक्नोलॉजी को डिमॉन्स्ट्रेट करने का एक सही अवसर ढूंढा। फ्रूगल इनोवेशन हम कहते हैं कि कम लागत में उच्चतम क्वालिटी के गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक अभियानों को डिजाइन करना बिना किसी साइंटिफिक एम को नुकसान पहुंचाए। ये कमाल की इंजीनियरिंग की विधा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने, उसके इंजीनियर साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप की और ये हमारे उसके मूल भाव में

0: डॉक्टर विक्रम साराभाई के समय से ही है इसरो की संस्थापना से लेकर। वो ये अभियान पहले ही अटेम्प्ट में सिर्फ मंगल पे पहुंचा नहीं बल्कि मंगल पर सफलतापूर्वक ऑर्बिटर के रूप में, ऑर्बिटर यानी कि उसकी कक्षा में वो गोल गोल घूम रहा। उसने कई अभियानों में जैसे मंगल के एटमॉस्फेयर को अध्ययन करना, सरफेस फीचर्स को अध्ययन करना, उसके जो टेरेन है, जियोलॉजिकल मूवमेंट अगर कुछ है तो उनको अध्ययन करना, ऐसे वैज्ञानिक लक्ष्यों को तो उसने साधा, लेकिन सबसे पहले वो कमाल की इंजीनियरिंग में भारत को महारत हासिल कराई कि हम दूसरे करीबी ग्रह तक पहुंच सके।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। मंगल के बाद अब हम चांद की बात करते हैं। चंद्रयान 3 जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो ऐतिहासिक लैंडिंग हुई उसने भारत को दुनिया का एक ऐसा पहला देश बनाया जो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। इस मिशन से अब तक चंद्रमा की सतह, खनिज और वहां मौजूद जल के स्रोतों को लेकर जो वैज्ञानिक आंकड़े मिले हैं उस पर हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दीजिए कि वे अंतरिक्ष अनुसंधान में कितने क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं और साबित हो रहे हैं।
0: बहुत महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल लग रहा है क्योंकि चंद्रयान 1 ने जब पहली बार 2008 में बताया कि दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पे पानी फ्रोजन स्टेट में है, मतलब पानी लिक्विड जो नहीं है जो आप और हम पीते हैं, फ्रोजन स्टेट में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में वो वहां पर परमानेंटली सेडोड रीजन में है। तो चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक लैंडिंग का निर्धारण भी इसलिए किया गया और पहला राष्ट्र बना भारत, ये हमारे श्रोताओं के लिए भी अच्छी बात है, हम सबके लिए, कि भारत पहला राष्ट्र बना जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरा है। अभी तक कोई भी राष्ट्र, अभी तक भी जब मैं बात कर रहा हूँ उस समय जरूर जब हमारा चंद्रयान 3 उतर रहा था उसी दौरान रशियन का लूना 25 भी पहुंच गया था लेकिन किन्हीं टेक्निकल कारणों से वो सफलतापूर्वक नहीं उतर पाया, तो वो क्रेडिट भारत को ही पास ही है। और उसमें आप जब इन बड़े बड़े विशाल गड्ढे जो कई किलोमीटर चौड़े हैं, कई सैकड़ों मीटर और लगभग कई बार किलोमीटर गहरे भी हैं, इनमें कभी सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, तो जो फ्रोजन स्टेट ऑफ आइस है वो बर्फ को हम अध्ययन करना, जियोलॉजिकल इसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि उसकी बाहरी सरफेस के कैसे बनावट है और उसका जियोलॉजिकल भूगर्भीय परिवर्तन संरचना को समझना। चंद्रयान 3 में अगर आप देखें लैंडर विक्रम नाम था, उसके दो कंपोनेंट थे, एक लैंडर यानी जो चीज उतर सकती है लेकिन चलेगी नहीं लेकिन उसके खुद के भी वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं जो अध्ययन कर रहे हैं। उसके बाद उसमें एक छोटा सा प्रज्ञान रोवर जिसको उतर के उसने 13-14 दिन चहलकदमी की थी पृथ्वी के 13-14 दिन, चांद पे नहीं होते हैं, चांद का वो एक ही दिन का दिन वाला समय था क्योंकि चांद पृथ्वी की तरफ ग्रेविटेशनल लॉक है, तो इसलिए जैसे ही दिन होने वाला था तब हमारा चंद्रयान 3 को उतारा गया और जब हमारी पृथ्वी के लगभग 14 दिन जब गुजर गए तो पूरे समय उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहा। प्लैनेटरी साइंस में लूनर मिशन अभियानों में नए आंकड़े जुटा पाए, समझ पाए और वो आने वाले अभियान के लिए भी बहुत प्रभावी रहेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसी प्रश्न को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कि चंद्रमा की मिट्टी के जो नमूने वापस लाने के हमारे आगामी चंद्रयान 4 मिशन की हम बात करेंगे, भविष्य की योजनाओं से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत की स्थिति और कितनी मजबूत होगी?
0: बहुत मजबूत होगी कि देखिए आप जब भी चैलेंजिंग एक्सपेरिमेंट आप डिजाइन करते हैं तो आप सिर्फ उस एक्सपेरिमेंट को बस नहीं करते हैं, आप पहली बार उस एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, आप कॉन्फिडेंस गेन करने की प्रयास करते हैं कि हम इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ बनाए ना बल्कि इसको सुचारू संचालन हेतु व्यापक करने के लिए आगे भी इसको इवॉल्व कर सकें। तो हम सैंपल को लाना यानी चांद पे उतरना नहीं बल्कि अगली देखी चुनौती लाना, तो नासा इसको या रशियंस इसको कर चुके हैं, चाइनीज ट्राई कर रहे हैं मान लीजिए, तो भारत भी इस दौड़ में पीछे क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मिनरोलॉजी की बात हो, मिनरल्स को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, चीज़ों को अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक बाजार में अपनी गरिमा को आगे ले जाना वैज्ञानिक लक्ष्य के साधते हुए, तो भारत आज वो शक्तिशाली राष्ट्र में शुमार है कि अंतरिक्ष विज्ञान के उस अभियान में भी बराबरी से कंधा मिलाना चाहता है वो जापानीज रिसर्चर्स टेक्नोलॉजी के साथ, जाक्सा जिसे कहते हैं, जापानीज स्पेस एजेंसी, ताकि हम इन अभियानों से सिर्फ ये ना दिखाएं कि हम सैंपल ला सकते हैं बल्कि हम उस दिशा में जो क्रांतिकारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और इकोनॉमी को एक नया बल मिलेगा कि अपनी पृथ्वी के अलावा कहीं से हम मिनरल्स मटेरियल्स को लाना है तो हम उस टेक्नोलॉजी को भी विकास करने की दिशा में अग्रसर हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अब हम भारत के जो पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जिसकी तैयारी हो रही गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर तेजी से काम चल रहा है इस वक्त, इस महत्वाकांक्षी मिशन से देश की वैज्ञानिक क्षमताओं में किस प्रकार का एक अभूतपूर्व उछाल आया है आप देखते हैं?
0: ये बिल्कुल, हमने जो अभी हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण दीर्घा बनाई है आंचलिक विज्ञान केंद्र भोपाल में हमारी काउंसिल ने जिला प्रशासन भोपाल के सहयोग से, तो उसमें भी एक सेंट्रल एग्जिबिट हमने गगनयान बनाया है वो एग्जिबिट बच्चों में पब्लिक में इसी परसेप्शन को बेहतर करीब से समझने, बल्कि स्पेस क्राफ्ट को अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो यू कैन हैव डिजिटल इंटरफेस, आप इंटरेक्ट करके चीजों को बारीकी से समझ सकते हैं। तो गगनयान क्या है, ये एक ऐसा कैप्सूल है जो एस्ट्रोनॉट्स को बिठाने का, उसमें केबिन भी है, एक्सपेरिमेंट डिजाइन भी होंगे, पीछे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम भी है उसका जो उसको

0: उनको सिर्फ जो जीवन रक्षक प्रणालियां हैं वो भी मुहैया कराएगा, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मैनेज करना, उनको जीवित रखना और पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक चक्कर लगाते हुए बाद में उतारना। तो इस दिशा में मेडिकल साइंस का इंप्रूव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एस्ट्रोनॉट्स के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो स्पेस मेडिसिन की जरूरत है, नया फील्ड है ये भारत के लिए भी, इसलिए दिस इज द इमर्जिंग एरिया। और साथ ही साथ में स्पेस फूड खाना हमारे उसको स्पेशली डिजाइन करना, तो एयरफोर्स के सहयोग से जो भी डिफेंस में डीआरडीओ है भारत सरकार का इसरो की बहुत करीब से, तो ये विधा बहुत बड़ी है। अब एक कमाल की बात और कह देते हैं यहाँ पर कि स्पेस सिर्फ रॉकेट सैटेलाइट या खास इंजीनियरिंग की विधा नहीं है या अनुसंधान की, इसमें सभी फील्ड सहयोग करती हैं। उच्च क्वालिटी के मटेरियल्स बनाना ताकि हम अच्छे स्पेस क्राफ्ट बना सकें, मेडिकल साइंस हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजिकल साइंस, एस्ट्रोनॉट आप लेके जा रहे हो, जीवित प्राणी अगर जा रहा है
1: तो
0: उसकी सुरक्षा सर्वोत्तम है, इसीलिए आपके स्पेस अभियानों में चरम लेवल पे उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को जांचा जाना है। जब तक वो सफलतापूर्वक हम टेस्टेड नहीं कर लिया जाएगा वो स्पेस क्राफ्ट, तब तक एस्ट्रोनॉट उसमें नहीं जाते हैं। तो ये अभियान हमें उस दिशा में सिर्फ सफलता ही नहीं दिलाने के प्रयास है, बल्कि हमारी अंतरिक्ष में पदार्पण विथ ह्यूमंस का एक नया युग शुरू करेगा और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले के द्वार खोलने के लिए प्रभावी होगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, कहीं ना कहीं जो हमारी खुद की आत्मनिर्भरता के बदौलत अब हम अपने खुद के स्वयं के मिशन लॉन्च कर रहे हैं, हम लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। साकेत जी, मंगलयान और चंद्रयान जैसे बड़े अभियानों की सफलता में स्वदेशी उपकरणों और घटकों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आंचलिक विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप जब आम जनमानस को इन मिशनों के मॉडल दिखाते हैं तो मेक इन इंडिया और स्वदेशी तकनीक को लेकर लोगों में कैसा उत्साह आप देखते हैं?
0: बहुत खासा इंटरेस्ट है, और आज के समय में मटेरियल साइंस की बात करें आप या फ्रूगल इनोवेशन के तहत आप बजट कंट्रोल अभियानों की, तो इसरो का तो नाम है पूरी दुनिया में कि हॉलीवुड की फिल्मों से कहीं कम बजट में अंतर्ग्रही मिशन करने का रिकॉर्ड है इसरो के पास। तो ये बात ये बताता है कि हम गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं करते हैं, लेकिन हम व्यापक स्तर पर उसका उदाहरण बन के एक मिसाल के रूप में बाहर आए हैं। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, तो देखिए भारतीय रॉकेट्स जो हैं वो भारतीय टेक्नोलॉजी हम सेल्फ डेवलप कर रहे हैं। इसरो जो है कई प्राइवेट प्लेयर्स गोदरेज या टाटा के जो एयर स्पेस आर्म्स हैं या बाकी जो तमाम कंपनियां हैं, बड़े बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर है ना, जो एरोस्पेस की फील्ड में काफी बड़ा नाम में से एक है, IITs हैं और बाकी तमाम संस्थान हैं जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो ऐसे और भी विधा से जुड़े हुए लोग, नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड NEL है। तो आप सोचिए इस इकोसिस्टम को हम इवॉल्व कर रहे हैं, तो ये मेक इन इंडिया भी है, मेड इन इंडिया तो बात सवाल ही नहीं है क्योंकि भारत ही बना रहा है, परंतु अभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट किसी दूसरे राष्ट्र के कंट्रोल में है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम अभी अधिकतम रूप से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो भारत धीरे धीरे उस पर भी सेल्फ डिपेंडेंसी लेके आ रहा है। और अभी देखिए भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर अभियान को कितने बड़े स्केल पे स्पीड अप दी है, तो ये हर क्षेत्र में चाहे आपके मोबाइल के अंदर की वो चिप हो या आपका कंप्यूटर हो या आपके MRI या आप पेट स्कैन चलाने वाली मशीन के दिमाग हो या मेडिकल इंडस्ट्री के अलावा आपका कार हो, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का बोलबाला है। तो भारत स्वदेशी रूप से इस फील्ड में भी अग्रसर है ताकि ना सिर्फ उच्च क्वालिटी के मटेरियल बनाए जो कि भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है अच्छे मटेरियल साइंस में, बल्कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में जो इवॉल्व होना है सेमीकंडक्टर बेस्ड इंडस्ट्री को, उसमें भी हम नई दिशा करके आने वाले अभियानों में और स्वायत्तता ला सकें, इसलिए ये पहल बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, भारत की ये पहल काफी महत्वपूर्ण है। और अब हम इस चर्चा के अंत में आपके एक संदेश के साथ इस चर्चा का समापन करना चाहेंगे कि गगनयान मिशन के अंतर्गत जो एस्ट्रोनॉट्स, व्योम मित्र और हमारे एस्ट्रो नेविगेटर्स प्रशिक्षित हो रहे हैं और अभी तक के जो भारतीय सफल अंतरिक्ष अभियान रहे हैं, ये पूरी यात्रा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए किस तरह की एक नई सोच और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दे रही है?
0: देखिए जैसे ही रॉकेट उठते हुआ आप टीवी पे देखते हैं, और शायद वो कहीं ना कहीं मेरे जीवन में दूरदर्शन का वो रॉकेट प्रक्षेपण का सीधा प्रसारण ही विज्ञान की रुचि करने में बहुत बड़ा उसने भूमिका निभाई है। अब उतना विशाल रॉकेट गड़गड़ाहट साउंड के साथ जब अंतरिक्ष में ऊपर जाने के लिए पृथ्वी को छोड़ता है, वो पूरा का पूरा साइंस एंड इंजीनियरिंग का नमूना है। वो जो भी हो रहा है वैज्ञानिक प्रिंसिपल्स के आधार पे ही उसमें घटित हो रहा है, जो इंजीनियरिंग है उसकी, वो ये जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स है, एवरीथिंग इज वर्किंग बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन साइंटिफिक एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग। तो ये पूरा का पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब ये कहीं से भी कोई आपके सिर्फ मानने को नहीं कहा जा रहा, होते हुए आप देख रहे हैं उनको, चरितार्थ होते हुए उन नियमों को, जो न्यूटन की बात आपने कर दी हो या आपने मटेरियल साइंस की बात कर दी हो, एरोडायनेमिक्स की बात कर दी, तो ऐसी कई विधाएं। इसलिए अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, जिस युग में इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड अंतरिक्ष का सबसे बड़ा महासंगम है, तो अंतरिक्ष विज्ञान में जिनको भी करियर बनाना है, जिसको भी आगे आना है, वो मटेरियल साइंस में, एरोस्पेस

0: इसमें आप सैटेलाइट डेवलपमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट में, या बेहतर प्रोग्रामिंग के साथ कैसे आप मिनीचराइजेशन में, यानी अंतरिक्ष में हर एक ग्राम कई यूएस डॉलर के बराबर उसके खर्चा होता है, यानी जितना छोटा और कम वजनी होगा उतना आप लागत उस पर कम आएगी, और ऐसे रॉकेट्स का निर्माण करना जो बार बार जाके वापस आके रीयूजेबल हो सके। भारतीय दृष्टिकोण में भारत को भी इस दिशा में आगे आना है, और मुझे लगता है ये हमारी यूपीडी आज इस कार्यक्रम को सुन रही है, इनमें से कोई ना कोई एक बहुत जल्दी एक ऐसी क्रांतिकारी साइंटिफिक डेवलपमेंट का हिस्सा होगा या लीडरशिप का हिस्सा होगा जो इन परिवर्तनों को और पुश करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि सेल्फ रिलायंस यानी आपको रॉकेट लॉन्च करने की कॉस्ट को कम करना, जिसको आपने एक बेहतर टर्म भी दिया कमर्शलाइजेशन, आप जितना कम कर पाएंगे प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के साथ स्पेस इकोसिस्टम में, तो आप दुनिया भर के बिजनेस को कम लागत में अच्छी सर्विसेज देके वो प्रतिस्पर्धा वाला जो बिजनेस है जो कुछ विकसित राष्ट्रों ने अपने पास है उनके
1: है,
0: वो भारत उस दिशा में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो ये हम सिर्फ एक अच्छे साइंटिस्ट इंजीनियर्स नहीं बल्कि अच्छी कंपनियां स्पेस इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। बेंगलोर में कई प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, स्पेस वेंचर्स आ रहे हैं, तो अब ये स्वर्णिम युग भी है विद्यार्थियों के लिए कि आप अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में एक अच्छा लक्ष्य तय कर सकते हैं और उसको प्रभावी होते हुए आप देख भी रहे हैं कि इसरो सिर्फ नहीं, अब स्काई रूट नाम की कंपनी जो भारत सरकार के सहयोग एंड सपोर्ट सिस्टम से कारण ही इसरो के सहयोग से अपना पहला रॉकेट इंडियन डिजाइंड इंडियन मटेरियल्स को बेसिस पे उन्हें लॉन्च करके सफलतापूर्वक सैटेलाइट को ऑर्बिट में ले जाके दिखाया, तो उस युग में ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है, तो अब वो सपना नहीं वास्तविकता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि आपने भी कभी दूरदर्शन पर उस प्रोग्राम को देखकर रॉकेट को ऊपर जाते देखकर आपके अंदर एक सेल्फ रिलायंस एक प्रेरणा आई और आप इस क्षेत्र में आए। कहीं ना कहीं हमारे इस कार्यक्रम को सुनकर भी कोई ना कोई युवा यदि अपने करियर को चुनता है और आगे बढ़ता है तो हमारे इस कार्यक्रम की सफलता ही होगी। निश्चित रूप से एक बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। ताकेश जी, जिस तरह से भारत आज अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों में नई खोज कर रहा है और साथ ही उस तकनीक का लाभ धरातल पर बैठे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, ये जय विज्ञान और जय अनुसंधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज आपने हमारे श्रोताओं को अंतरिक्ष विज्ञान की इस अभूतपूर्व विकास यात्रा और भविष्य की संभावनाओं से इतने सरल और रोचक ढंग से अवगत कराया, इसके लिए आकाशवाणी भोपाल और हमारे समस्त श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश की विशेष जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: भारत का गौरवशाली अंतरिक्ष सफर, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार एकांश का विशेष कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, ये वक्त है छोटे से अंतराल का।
3: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
4: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
5: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
6: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
4: आकाशवाणी है ना,
7: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
4: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
6: शाम सुहानी हो,
4: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
6: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
4: सफर में
6: आपके साथ
4: आकाशवाणी।

0: प्रदूषित पानी पीने से हम हो सकते हैं बीमार,
1: फैल सकती है महामारी, खतरे में पड़ सकती है जिंदगी,
0: छीन सकती है खुशियाँ हमारी। इसलिए पानी के स्रोत को रखें हम साफ,
1: फैलाएं नहीं गंदगी उसके आसपास,
0: पानी को रखें हम हमेशा ढककर
1: और उसको पिएं छानकर उबालकर,
0: पीने के पानी में हम हाथ नहीं डालें,
1: लंबी डंडी वाले बर्तन से पानी निकालें।
2: पानी रे पानी,
3: पानी पानी रे पानी,
0: आओ मिलकर करें प्रयास,
1: शुद्ध पानी हो सबके पास।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कुनो नेशनल पार्क से लाए गए दो चीतों को वन क्षेत्र में विमुक्त किया। इसके साथ ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व प्रदेश में चीतों का तीसरा आवास बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। दूरसंचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम 7 से 10 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्ष की जनसेवा पूरी कर ली है। जापान, नाइजीरिया, डोमिनिका और बेल्जियम के नेताओं ने इस अवसर पर उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत नस्ल के पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने रतलाम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को उज्जैन से वर्चुअली संबोधित करते हुए वृंदावन ग्राम में उन्नत नस्ल के पशुओं की प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए आज से 3 दिन तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्स और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय शाम के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी और अस्मा नाज अंसारी जी ने। लिखते हैं,
2: ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान उससे सबक लेकर संभल जाए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है साहू पारा सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू और दुलीचंद साहू जी का। वो लिखते हैं,
1: प्रिय उद्घोषक जी मन ला जय जोहार पहुँचे, आपके उमंग एनसीईआरटी कार्यक्रम ला ध्यान लगा के सुनथन, बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बान अब्बासी जी का।
2: और इसके साथ साथ ही संदेश मिला है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी।
1: और छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू के साथ साथ शिवम साहू लिखते हैं, सादर नमस्कार,
2: मैं उमंग कार्यक्रम का नियमित श्रोता हूँ। इस कार्यक्रम से हमें मनोरंजन तो होता ही है और हमें ज्ञान और सीख व प्रेरणा भी मिलती है। और सफल प्रस्तुति के लिए उमंग परिवार और अजीत जी और विमलेश जी को हार्दिक बधाई।
1: अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर संतोष कायंदे, डॉक्टर अशोक इंगले, डॉक्टर संतोष वावगे और श्री संजय देशमुख लिखते हैं,
2: सीआईईटी द्वारा प्रस्तुत उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है
1: जी।
2: कल उमंग कार्यक्रम में दृढ़ संकल्प की ध्वनि अरुणिमा सिन्हा के बारे में जानकारी दी गई, जो हमें बहुत अच्छी लगी। हम लोग अकोट जिला अकोला में स्थित श्री शिवाजी महाविद्यालय में अध्यापक हैं। महाविद्यालय में जाने के लिए हर दिन हमें 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। उमंग कार्यक्रम में दी जाने वाली रोचक जानकारी से हमारी हर दिन की यात्रा बहुत सुखद और आनंददायी बन जाती है।
1: आपने आगे लिखा है, इस कार्यक्रम से न केवल हमारी यात्रा सुखद बनती है बल्कि उससे हमारा अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया भी बहुत प्रभावी बन जाती है। उमंग कार्यक्रम हमारी दिनचर्या का अभिन्न अंग बन गया है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी, अजीत जी, विमलेश जी और पूरी उमंग टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
2: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिष्ठित पुरस्कारों की।
1: श्रोताओं कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार की
2: जी।
1: आज हम आपको एशिया के एक ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो विमलेश जी जरा श्रोताओं को ये तो बताइए कि आज हम किस पुरस्कार की बात करेंगे।
2: अजीत जी आज हम बात करेंगे रमन मैग्सेसे पुरस्कार की।
1: बिल्कुल सही,
2: लेकिन इस पुरस्कार के पीछे की कहानी जानने के लिए हमें चलना होगा फिलीपींस के इतिहास में। तो आइए श्रोताओं शुरू करते हैं
1: मैग्सेसे पुरस्कार की कहानी। तो विमलेश जी पहला प्रश्न तो ये है कि इस पुरस्कार का नाम मैग्सेसे पुरस्कार क्यों पड़ा।
2: अजीत जी सचमुच ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल रेमोन मैग्सेसे फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 31 अगस्त 1907 को फिलीपींस में हुआ था। वे अपने सरल जीवन, जनता से जुड़ाव और सार्वजनिक सेवा के लिए जाने जाते थे और जनता में बहुत लोकप्रिय थे
1: जी। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शासन में ईमानदारी और आम लोगों की समस्याओं पर बहुत ध्यान दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि उनके नाम पर पुरस्कार शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये तो हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है आपने। इसके पीछे एक दुखद घटना है। 17 मार्च 1957 को एक विमान दुर्घटना में राष्ट्रपति रेमोन मैग्सेसे की मृत्यु हो गई। बहुत कम उम्र में उनका जीवन समाप्त हो गया।
1: और श्रोताओं उनकी स्मृति को जीवित रखने और एशिया में ऐसे लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य से 1957 में रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना की गई। पहला पुरस्कार समारोह 1958 में हुआ, लेकिन विमलेश जी श्रोताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे जरूर कि ये पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है।
2: अजीत जी ये पुरस्कार ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं को दिया जाता है जिन्होंने एशिया में समाज और मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो, जैसे
1: सामाजिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, कला, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को भी ये सम्मान मिल सकता है
2: जी।
1: भारत के कई उल्लेखनीय व्यक्तियों और संस्थाओं को भी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार मिल चुका है।
2: मुझे लगता है इस पुरस्कार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हमें बताता है समाज में बदलाव केवल बड़े बड़े नामी लोगों से नहीं आता।
1: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा। किसी गांव में काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी गरीब बच्चे को पढ़ाने वाला शिक्षक, कोई सकारात्मक पत्रकार या सामुदायिक हित के लिए लगातार काम करने वाला व्यक्ति भी समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है।
2: यानी रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की मूल भावना है निस्वार्थ सेवा और समाज के प्रति जिम्मेदारी।
1: जी बिल्कुल, ये पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि किसी भी काम की महानता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसे कितने लोग देख रहे हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उससे कितने लोगों के जीवनों में सकारात्मक परिवर्तन आया।
2: तो अजीत जी, अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो क्या हमें किसी बड़े अवसर का इंतजार करना चाहिए?
1: बिल्कुल नहीं विमलेश जी, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अपने आसपास से ही की जा सकती है।
2: एक बच्चा पढ़ाना,
1: दूसरी बात किसी जरूरतमंद की मदद करना,
2: पर्यावरण की रक्षा करना,
1: ईमानदारी से अपना काम करना
2: और समाज में सकारात्मक सोच फैलाना,
1: ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
2: जी तो श्रोताओं, आज की कहानी हमें एक सुंदर संदेश देती है कि
1: सम्मान पाने के लिए महान काम मत कीजिए, महान काम इसलिए कीजिए क्योंकि उससे किसी का जीवन बेहतर हो सकता है।
2: और शायद यही रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी एशिया के नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार की। अब सुनिए आज का प्रश्न।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा और किन की स्मृति में दिया जाता है?
1: आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर हमारे प्रश्न का उत्तर या अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट पर उपलब्ध विकल्पों पर जाकर आप इन पुस्तकों को डाउनलोड कर सकते हैं।
1: और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।
2: जी,
1: इस चैनल पर आप उन कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं जो उमंग कार्यक्रम में प्रसारित होते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम है अपना अपना काम।
2: NCERT की तीसरी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि हम सबका अपने परिवार और समाज में एक विशेष उत्तरदायित्व और कार्य है, उसे हमें पूरे समर्पण के साथ निभाते हुए कार्य करना चाहिए।

0: सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी।
1: हल्कल चलती जाती चीटी, शम का राग सुनाती चीटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चीटी। ये हो गया मेरा स्कूल का काम। ओहो, मैं तो थक गई।
0: वो सोचने लगी,
1: इतना सारा लिखने पढ़ने का काम, स्कूल जाओ तो वहां पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता।
0: पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं।
1: मैं अभी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ।
0: भिन्न भिन्न करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली,
2: तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हमारे जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो?
1: मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ।
2: इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और
0: सिमरन ने कान बंद कर लिए।
1: सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी।
0: फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़।
1: हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता।
0: पेड़ हंसने लगा।
3: मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूं। बस सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं, और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वो भी हम तुम्हें दे देते हैं।
0: सिमरन ने आंखें झुका ली।
1: सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं। लेकिन इस चिड़ियों की मौज है।
0: सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा,
1: हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था।
4: नाना, ये क्या सोच रही हो? एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और तो और
1: बस

0: समझ गई।
1: वो सोचने लगी,
0: परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए।
1: उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई।
2: सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी।
3: तो बच्चों, सुना आपने, मधुमक्खी, चिड़िया, पेड़, चींटी सभी अपना अपना काम करते हैं। जरा सोचिए कि हमारा अपना काम पढ़ाई के अलावा और भला क्या क्या हो सकता है। अपना काम हो सकता है जैसे सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना, स्कूल से आकर बस्ता सही जगह पर रखना, और हाँ, माता पिता की जहां तक हो सके मदद करना, है ना, ये हमारा अपना काम। तो आइए, जब सब करते हैं अपना अपना काम, तो क्यों ना हम सब भी करें अपना अपना काम।
4: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं भारत के प्रथम इंजीनियर सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के जीवन और उपलब्धियों पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम।
1: भारत ने सभी क्षेत्रों में एक से एक विलक्षण प्रतिभाओं को जन्म दिया है। इन प्रतिभाओं का अमूल्य योगदान पूरी मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है।
2: ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया। उन्हें भारतीय इंजीनियरिंग का जनक कहा जाता है। वो एक अद्भुत प्रतिभा वाले विलक्षण अभियंता और युग दृष्टा थे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के चिक्काबल्लापुर कस्बे में 15 सितंबर 1860 को हुआ था।
1: बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 15 सितंबर को मनाया जाता है। उनके पिता का नाम श्रीनिवास शास्त्री तथा माता का नाम वेंकटचम्मा था। उनके पूर्वज आंध्र प्रदेश के मोक्ष गुंडम से यहाँ आकर बस गए थे, इसलिए मोक्ष गुंडम उनके पारिवारिक नाम में जोड़ा जाने लगा।
2: जब बालक विश्वेश्वरैया मात्र 12 साल के थे, तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके जन्म स्थान पर स्थित एक प्राइमरी स्कूल में हुई। पिता की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट ऐसा रहा कि उन्हें बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाना पड़ता था।
1: उन्होंने कठोर परिश्रम किया और परिस्थितियों से संघर्ष किया और आखिर आ ही गया वर्ष 1881, जब उन्होंने पूरे मैसूर राज्य में विज्ञान स्नातक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बहुत अच्छा काम।
2: साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज की सभा श्री मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में बुलाई गई है, जिन्होंने पूरे मैसूर राज्य में प्रथम श्रेणी में सबसे अधिक अंक लाकर विज्ञान में स्नातक की परीक्षा पास की है। उनसे निवेदन

0: ही वहन करेगी।
1: पूना के साइंस कॉलेज से उन्होंने सन 1883 में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और महाराष्ट्र सरकार के नासिक लोक निर्माण विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुए। भवन निर्माण, जल और नगर प्रबंधन जैसे कार्यों में उनका सानी नहीं था।
0: उन दिनों भारत आजाद नहीं हुआ था। हुआ ये कि सक्कर में पानी की भारी समस्या खड़ी हो गई। बता दें कि सक्कर सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ सिंध प्रांत का एक नगर है। इसे सुकूर भी कहते हैं। समस्या के निदान के लिए विश्वेश्वरैया जी को विशेष सलाहकार के रूप में ब्रिटिश सरकार के मुख्य अभियंता द्वारा सक्कर बुलाया गया।
2: फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि आज की खास बैठक सक्कर नगर पालिका में पानी की समस्या पर बात करने के लिए बुलाई गई है। हमें इसका समाधान खोजना है।
3: जी सर, इन दिनों अखबारों में भी इसके बारे में बहुत छप रहा है और जनता बहुत परेशान है सर।
2: ये एक सीरियस बात है। हमें खुशी है कि हमारी खास गुजारिश पर आज हमारे बीच मिस्टर मोक्ष गुंडम मौजूद हैं। आपने बहुत सी जगहों पर बहुत उम्दा काम किया है। मिस्टर मोक्ष गुंडम, हम आपके विचार जानना चाहते हैं।
4: धन्यवाद सर। हमें नदी के आसपास हर 500 मीटर की दूरी पर गहरे गड्ढे खोदने होंगे ताकि बाढ़ के समय सिंधु नदी का पानी इन गड्ढों में भर जाए और वर्षा के जल का भंडारण हो सके। हमने बहुत से स्थानों पर इस तरीके को अपनाया है सर।
3: आप कहना चाहते हैं कि ऐसा करने से बाढ़ का पानी गड्ढों में भर जाएगा? इससे बाढ़ का पानी शहर में भी नहीं जाएगा और पानी जमा भी हो जाएगा, है ना?
4: जी सर। और इसके अलावा हमें शहर की सभी ऊंची जगहों पर बड़ी बड़ी टंकियां बनानी होंगी।
3: क्यों?
4: ताकि वहां भी वर्षा का जल जमा किया जा सके।
3: हो।
4: और हाँ सर, ऊंटों द्वारा टंकियों तक जल पहुंचाया जा सकता है।
2: यू मीन वॉटर हार्वेस्टिंग। बहुत अच्छा विचार है आपका। मैं आपके डिपार्टमेंट को आज ही लेटर लिखता हूँ कि आपका तबादला कुछ समय के लिए सक्कर में कर दिया जाए।
4: थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके बहुत खुशी होगी सर।
2: ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम।
4: थैंक यू।
0: साथियों, विश्वेश्वरैया के इस सुझाव का परिणाम बहुत ही प्रभावी रहा। बाढ़ की समस्या से भी छुटकारा मिला और सक्कर जैसे शुष्क प्रदेश में जल की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई। ये परियोजना देश के बहुत से जल संकट का सामना करने वाले क्षेत्रों के लिए उदाहरण बन गई। इस समय उनकी उम्र मात्र 32 वर्ष थी। लोक निर्माण विभाग में रहकर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी ने कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बीजापुर, अहमदाबाद और पूना समेत कई शहरों में जल आपूर्ति परियोजनाओं पर खूब काम किया था।
1: अब तक उनकी ख्याति पूरे देश में फैल गई थी। उन्हें मैसूर राज्य का मुख्य अभियंता नियुक्त कर दिया गया और साथ साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक संभाग का रेलवे सचिव भी। एक बार उनके साथ बड़ी रोचक घटना हुई। वो ट्रेन से लोक निर्माण विभाग के किसी सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेने जा रहे थे। ट्रेन में कई अंग्रेज भी थे।
0: सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे और ट्रेन तेज गति से चल रही थी। अचानक मोक्ष गुंडम उठे और ट्रेन की जंजीर खींच दी। लोगों को बड़ा गुस्सा आया। उनका अचानक उठना और तेजी से जाकर ट्रेन का जंजीर खींचना किसी की समझ में नहीं आया।
5: किसने खींची चेन?
3: सर, हमने नहीं किया। हाँ, हमने नहीं किया, इन्होंने किया है। हम तो मना कर रहे थे सर।
4: जी सर, मैंने ही चेन खींची है सर। मुझे लगा कि आगे की पटरियां उखड़ी हुई हैं।
5: व्हाट? क्या मजाक है, ये आप कैसे कह सकते हैं?
4: श्रीमान, यदि विश्वास नहीं है तो चलकर स्वयं देख लीजिए।

0: आइए आइए, देखते हैं।
1: चलो चलो, आइए हम भी चलते हैं।
0: लेकिन मिस्टर, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर बात आपकी गलत निकली ना तो आपको सजा हो सकती है। आइए।
1: ठीक है सर, मुझे मंजूर है।
2: और मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया की बात सच निकली। कुछ दूरी पर उन्हें पटरियां उखड़ी हुई दिखाई दी।
1: आइए सर, आइए देख लीजिए।
0: अभी तक तो यहाँ भी ठीक ही है। आइए आगे देखते हैं। अरे एक मिनट, यहाँ पटरियां तो सच में उखड़ी हुई हैं। ये देखिए, यहाँ पटरियां उखड़ी हुई हैं। अब मिस्टर, आपको कैसे पता चला?
1: सर देखिए, जब सभी अपनी अपनी बातों में व्यस्त थे तो मुझे ऐसा लगा कि ट्रेन की गति में अचानक परिवर्तन आ गया है और पटरियों की आवाज भी बदल गई है। सामान्य स्थिति में ऐसी आवाज प्राय सुनाई नहीं देती है, तभी मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।
0: थैंक यू वेरी मच सर, आपने आज बहुत से यात्रियों की जान बचा ली।
3: वी आर सो थैंकफुल टू यू, इट्स अमेजिंग। मे आई नो योर नेम प्लीज?
1: आई एम डॉक्टर मोक्ष कुंडम विश्वेश्वरैया।
3: ओह, the engineer in chief of Mysore state.
4: और रेलवे सचिव भी।
0: नमस्कार सर।
1: जी जी सर, मैं वही हूँ।
3: नमस्कार सर, नमस्कार। We were actually going to attend your meeting only. It's actually our privilege to meet you personally. Thank you very much, sir. Thank you.
1: धन्यवाद।
2: तो ऐसे थे डॉक्टर विश्वेश्वरैया। बांध बनाने की प्रक्रिया में स्वचालित जल द्वारों का प्रयोग उनका अद्भुत नवाचार था। इस तकनीक को डॉक्टर विश्वेश्वरैया के नाम पर पेटेंट किया गया। आज भी ये प्रणाली पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है।
5: कृष्णराज सागर बांध के निर्माण के कारण मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का नाम पूरे विश्व में सबसे अधिक चर्चा में रहा। मैसूर राज्य में उनके योगदान को देखते हुए मैसूर के महाराजा ने उन्हें सन 1912 में राज्य का दीवान यानी मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया।
2: लोक निर्माण कार्य में उनके अतुल्य योगदान को देखते हुए उन्हें अनेकानेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सन 1904 में उन्हें 50 साल तक लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स की मानद सदस्यता दी गई। 1921 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से सम्मानित किए गए।
5: सन 1955 में कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। जब सर एम विश्वेश्वरैया 100 साल के हुए तब भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 101 साल की उम्र में 14 अप्रैल 1962 को विश्वेश्वरैया का निधन बेंगलोर, आज के बंगलुरु में हो गया।
2: सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की दूरदर्शिता के कारण मैसूर में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया और लड़कियों की शिक्षा के लिए पहल की गई। समाज के संपूर्ण विकास के उनके कार्यों के कारण ही उन्हें कर्नाटक का भगीरथ भी कहा जाता है। सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को उनके अतुल्य योगदान के लिए राष्ट्र और विश्व का आभार।
6: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।
7: जी मैं रमेश, पिछले 20 साल से ट्रक चला रहा। रात को सफर लंबा होता है और रास्ते अंधेरे। उस रात मैंने गाड़ी एक ढाबे के पास खड़ी की थी और रिफ्लेक्टर के ऊपर मिट्टी जमी हुई थी, तो मैंने सोचा कल सुबह साफ कर दूंगा। मुझे बात छोटी सी लगी, सिर्फ एक मिनट लगता है साफ करने में। उस रात किसी की जान भी तो जा सकती थी।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना,
0: कुसुमलता,
1: वीरेंद्र
0: और हमारी आज की विशेषज्ञ
1: सहायक आचार्य दीपमाला जी के साथ कल तक के लिए विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

मोहम्मद रफ़ीक की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं हंसते ज़ख्म फिल्म से। कैफ़े आज़मी के बोलों को संगीत से सजाया मदन मोहन ने।

अगला गीत अभिमान फिल्म से हमने लिया है, जिससे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन तैयार की एसडी बर्मन ने और आवाज लता मंगेशकर की।

मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम का अगला गीत भीगी रात फिल्म से लिया है, आवाज़ लता मंगेशकर की, शब्द रचना मजरू सुल्तानपुरी की है, संगीत रोशन का।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ है। धुन तैयार की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आनंद बख्शी की शब्द रचना है। फिल्म है आप आए बाहर आई।

मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे आप आए बाहर आए फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लेते हैं छोटा सा अंतराल।

कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

0: अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल पर, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। इस समय शाम के 7 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन के बोर्ड सदस्यों के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले वार्ता की। ये संगठन मोबाइल संचालकों तथा इससे जुड़े उद्योगों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि प्रौद्योगिकी को समावेशी और सतत विकास का साधन बनना चाहिए। श्री मोदी ने विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनके लिए सबसे बड़ी ताकत है। नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने आज सवेरे श्री विनायक मंदिर में देश और 140 करोड़ नागरिकों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 25 वर्ष में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है।
2: 7 अक्टूबर 2001 को जब मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब सोचा नहीं था कि कभी ये पड़ाव भी आएगा। आज मुझे हेड ऑफ द गवर्नमेंट के तौर पर निरंतर सेवा करते हुए 25 वर्ष पूरे हो गए। ये जनता जनार्दन के निरंतर आशीर्वाद का परिणाम है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में विकसित भारत संकल्प सभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत को विकसित देश बनाना है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पैदा न होने पर अर्थव्यवस्था के आकार के हिसाब से भारत दुनिया के शीर्ष 3 देश में शामिल हो जाता। श्री सिंह ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ रही है। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्ष बाद रेपो दर को 25 आधार अंक बढ़ाकर 5.5% कर दिया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने यह जानकारी दी। इससे पहले फरवरी 2023 में रेपो दर को 6.25% से बढ़ाकर 6.5% किया गया था। वर्ष 2023-24 में रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया गया, हालांकि 2025 से इसमें कटौती शुरू की गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान 7.1% व्यक्त किया है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में इस बैठक में जीएसटी विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जीएसटी व्यवस्था में अगले चरण के सुधारों के लिए 5 सूत्री योजना का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली पुलिस ने कल के विरोध मार्च के दौरान नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में बिना अनुमति प्रवेश करने के आरोप में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब के मुख्यमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये मामला अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों में कथित हेराफेरी और रिश्वतखोरी से जुड़ा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि हिंदी को बढ़ावा देने का आधार भाषा के इस्तेमाल को थोपने के बजाय इसमें अधिक अवसर और भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना है। हिंदी सलाहकार समिति की 3री बैठक में उन्होंने कहा कि जब हिंदी रोजगार और पेशेवर अवसर सृजित करेगा तो इसके इस्तेमाल स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। इस अवसर पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की कौशल पत्रिका का भी लोकार्पण किया गया। रूस ने कल रात यूक्रेन के कई क्षेत्रों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। इन हमलों में 4 बच्चों सहित 19 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के अनुसार उत्तरी चेर्निहिव क्षेत्र का प्रिलुकी सबसे अधिक प्रभावित हुआ। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को दिया गया है। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने यह सम्मान उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण, नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटालिसिस की खोज के लिए दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नजर इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। आकाशवाणी भोपाल से आज शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं सरसों की उन्नत तकनीक। इस विषय पर डॉक्टर राजेंद्र पटेल से ली गई भेंटवार्ता। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रमों में विशेष कार्यक्रम होगा 8:00 जनसेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत 8:35 पर। चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम 9:30 हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। बंटवारा, मुरलीधर बलवानी का लिखा ये नाटक हम आपको सुनवाएंगे आज 10:00। प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज 10:30 सुनिएगा सौरभ व्रत चक्रवर्ती का सुरबहार वादन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते एक नजर कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम बता दें, कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम होगा जिसमें सुनिएगा समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां गीत संगीत और समय के साथ। वतन का राग ये प्रायोजित कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। 9:02 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। सुगम संगीत में 9:15 पर प्रकाश पाठक की गई कुछ गजलें हम आपको सुनवाएंगे। 9:30 सुनिएगा निकोलाई गोगोल का लिखा नाटक इंस्पेक्टर जनरल। प्रस्तुत करता होंगे राकेश ढोंडियाल। 10:00 जिले की चिट्ठी। 10:05 पर सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा। फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं सुबह 10:40 पर। शाम 7:25 पर सुनिएगा बुंदेली समाचार। किसानवाणी कार्यक्रम होगा शाम 7:30 जिसमें कल आप सुनेंगे आधुनिक तकनीक से कपास उत्पादन। इस विषय पर डॉक्टर सतीश कुमार परसाई से भेंटवार्ता। साथ ही साथ आप सुन सकते हैं डॉक्टर रतनदीप सोनी की लघु वार्ता रबी फसलों की तैयारी। ये थे आकाशवाणी भोपाल के कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसका प्रसारण समय होगा सुबह 11:00। 12:00 आनंद लीजिएगा आपकी फरमाइश का। संग्रहालय से इस कार्यक्रम में दिन में 12:30 सुनिए मुंशी प्रेमचंद की जब्तशुदा कहानियों की रेडियो प्रस्तुति का भाग 7। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति में 1:30 सुनिएगा लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत। 2:00 होंगे फिल्म संगीत। 2:30 आपकी फरमाइश। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। कल का प्रसारण आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति रहेगा। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं शाम 5:33, शाम 6:30 और 8:35 पर। कुछ और फिल्मी नगमे हम आपको सुनवाएंगे 9:30 और 10:00 आपकी फरमाइश के अंतर्गत। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम रोज ही की तरह शाम 6:00। जनसेवा से देश सेवा ये विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल 8:00। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में 10:30 सुनिएगा पंडित कुमार गंधर्व का ख्याल गायन। ये थे आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: मीडियम वेव 180.93 पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू है। अब अपने घर से ही कचरे को अलग अलग करके शहर को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें।
2: घर से ही गीला, सूखा, सैनिटरी और स्पेशल केयर कचरा अलग अलग करके दें।
1: गीला कचरा हरे डस्टबिन में डालें, जैसे फल, सब्जियों के छिलके, बचा भोजन, चाय पत्ती वगैरह।
2: सूखा कचरा नीले डस्टबिन में रखें। कागज, प्लास्टिक, कांच, धातु, कपड़ा और गत्ता।
1: सैनिटरी और स्वास्थ्य संबंधी कचरा लाल डस्टबिन में डालें। सैनिटरी पैड, डायपर, बैंडेज, मास्क, ग्लव्स और पीपीई किट।
2: स्पेशल केयर काले डस्टबिन में डालें। पुराने मोबाइल, चार्जर, बैटरी, बल्ब, रिमोट, तार, इलेक्ट्रॉनिक सामान और घरेलू खतरनाक कचरा।
1: याद रखिए, सही पृथक्करण से रिसाइकलिंग आसान होगी और शहर स्वच्छ रहेगा।
2: नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति एवं दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। स्वच्छता अपनाएं, शहर को स्वच्छ बनाएं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में दो चीतों को मुक्त किया। मुख्यमंत्री कल मुंबई में उद्योगपतियों से निवेश पर संवाद करेंगे और प्रदेश में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए तीन दिन विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जनता का विश्वास और करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्पण उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने से लेकर सरकार के प्रमुख के रूप में निरंतर सेवा के 25 साल पूरा होना जनता के आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने कहा कि इन 25 वर्षो में जनता से मिला विश्वास और अनुभव उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सभी नागरिकों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है और भारत अब अपनी बढ़ती ताकत तथा चुनौतियों से निपटने की क्षमता के लिए दुनिया में चर्चा का विषय है। उन्होंने अनुच्छेद 370 और नक्सलवाद जैसी चुनौतियों के समाधान का भी उल्लेख किया।
1: जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की समस्या, ऐसा लगता था कि यह अंतहीन है, लेकिन आज आर्टिकल 370 की दीवार पूरी तरह टूट चुकी है। इसी तरह नक्सलवाद की समस्या को देश का दुर्भाग्य मान लिया गया, लेकिन आज इसकी कमर तोड़ी जा चुकी है। जो आतंकवाद भारत के भाग्य को ही चुनौती दे रहा था, लेकिन यह भारत की अदम्य इच्छा शक्ति है, हमने घर में घुसकर मारा और दुश्मनों को बता दिया कि भारत की ताकत क्या है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करेंगे। दूर संचार विभाग और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम 7 से 10 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष की थीम सीमाओं से परे विस्तार है। आयोजन के 4 प्रमुख स्तंभ सृष्टि, संवर्धन, सशक्त और सुरक्षा है। आईएमसी में 5G, 6G, AI नेटवर्क, सेमीकंडक्टर, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कम्युनिकेशन समेत 9 प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज सागर जिले के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में कुनू नेशनल पार्क से लाए गए 2 चीतों को वन क्षेत्र में विमुक्त किया। इसके साथ ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व प्रदेश में चीतों का तीसरा आवास बन गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभयारण्यों में होने वाली पर्यटन आय में स्थानीय ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है और बफर जोन के गाँव में होम स्टे विकसित करने के लिए सरकार अनुदान दे रही है।
2: जहाँ जहाँ अभयारण्य है, जहां पर्यटक आते हैं और अंदर घूम करके गाड़ी से जो दिखाते हैं, उनसे जो पैसे का कलेक्शन होता है, जैसे इस साल अभी जो कलेक्शन मुझे बता रहे थे 80 करोड़ का कलेक्शन हुआ, तो 20 करोड़ की राशि अपने ग्रामीण वासियों को बांट करके दी। ये उनका हक है जो उसी अभयारण्य के आसपास अपने गांव, अपने घर आबाद करके रहते हैं। वो मकान में 1 कमरा 2 कमरा 3 कमरा बनाते हैं तो होम स्टे में वो किराए पे भी दे सकते।
0: मुख्यमंत्री ने रहली में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के समापन समारोह में गिद्ध संख्या आकलन 2026 रिपोर्ट और अन्य सामग्री का विमोचन किया तथा वन्य जीव संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वन कर्मियों को भी सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा में 25 साल पूरे हुए। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारे विशेष श्रृंखला में ऑपरेशन सिंदूर से आतंकवाद पे प्रहार की जानकारी दी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयानों में इस नए रुख को प्रमुखता से रेखांकित किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने स्पष्ट किया है कि सीमा पार से होने वाले आतंकवादी हमलों का जवाब अपनी शर्तों पर दिया जाएगा और आतंकवाद के बुनियादी ढांचे को सीधे निशाना बनाया जाएगा। भारत ने आतंकवाद को संरक्षण देने वालों और आतंकवादी संगठनों के बीच अंतर करने से भी इनकार किया है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में परमाणु धमकी या दबाव को स्वीकार नहीं करने का संदेश दिया गया है। भारत का स्पष्ट मत है कि आतंकवाद और बातचीत तथा आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। भविष्य में पाकिस्तान के साथ किसी भी बातचीत का केंद्र आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर होगा। ये भारत की आतंकवाद के खिलाफ दृढ़, स्पष्ट और नए रणनीतिक रुख को दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार ताजापुर से मैं अजीत पाराशर।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कल मुंबई में फार्मा मेडिकल डिवाइसेस समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ संवाद करेंगे। जनवरी 2027 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले होने वाले संवाद में मध्यप्रदेश के क्षेत्र विशेष औद्योगिक क्षेत्रों और निवेश अवसरों को उद्योगों की जरूरतों से जोड़ने पर जोर रहेगा। प्रदेश में मतदाता सूची में पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने के लिए आज से 3 दिन तक सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित बूथ लेवल अधिकारी पात्र मतदाताओं से आवेदन लेकर नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने बताया कि फॉर्म 6 के अलावा किसी मतदाता से घोषणा पत्र नहीं।

लिया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मंडला के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में सेवा संकल्प अभियान और प्रोजेक्ट संकल्प के तहत वृहद करियर कार्यशाला आयोजित की गई। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड आने वाले समय में पर्यटन की संभावना को देखते हुए शहडोल जिले के जनपद पंचायत जयसिंह नगर के

किया गया। मंदसौर में सेवा संकल्प अभियान के तहत जिले में सेवा ज्योति यात्राएं निकाली गई। विभिन्न मार्गों से यात्राएं जिला मुख्यालय पहुंची, जहां सेवा संकल्प सभा में प्रधानमंत्री श्री मोदी का उद्बोधन लाइव देखा और सुना गया। राजगढ़ में राज्य मंत्री गौतम टिटवाल ने कल सारंगपुर सिविल चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सतना बीटीआई मैदान में आज विकसित भारत संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा ज्योति यात्रा के जिले के कार्यक्रम में जिला विकास पुस्तिका का वितरण भी किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनबे वारे सभी जनों को रीता बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम। भैया बिन्नाहरो, आपने कभी सोचो है कि हम जो कपड़ा पहनत हैं वे कितनी मेहनत के बाद तैयार करे जाते हैं और ये बनाए से बनाए के लाने कितने लोगन को योगदान होते हैं। और जे कपड़ा बनत है कपास से, आज है विश्व कपास दिवस। हर साल ई दिवस को 7 अक्टूबर को मनाओ जाते हैं। कपास जिये हम सफ़ेद सोना भी कहते हैं, जे केवल एक फसल नहीं होते बल्कि लाखों किसानों की आजीविका और देश के कपड़ा उद्योगों की महत्वपूर्ण आधारशिला होते। कपास प्रमुख नकदी फसलों में शामिल है। कपास से धागा, कपड़ा और अन्य वस्तु तैयार करी जाते हैं। इके बीज से प्राप्त भय बिनोला से तेल और खली में भी उपयोग करो जाते हैं। विश्व कपास दिवस मनाए को उद्देश्य कपास के महत्व, इकी खेती और कपड़ा उद्योग में इके योगदान को सम्मानित करवे के लाने समर्पित होते। कपास किसानों, बुनकर और इससे जुड़ी आजीविका के प्रति जागरूकता फैलावो भी ई दिना को मुख्य उद्देश्य होते। भारत में कपास की खेती बड़ी संख्या में करी जाते हैं। कपास की अच्छी पैदावार के लाने गुणवत्तापूर्ण बीज, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोगों की निगरानी बेहद जरूरी होते हैं। विशेष रूप से गुलाबी सुंडी जैसे कीटन से बचाव के लाने खेत की नियमित निगरानी और वैज्ञानिक सलाह के हिसाब से समेकित कीट प्रबंधन अपनाने चाहिए। भैया बिन्नाहरो, किसान की मेहनत से खेत में पैदा हुए वारो कपास खेत से लेके कपड़े तक की एक लंबी यात्रा तय करत है। इसे कपास उत्पादक किसानों की मेहनत, तकनीकी ज्ञान और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देवो हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। भैया बिन्नाहरो, आप सुन लेते हैं लोकगीत। ये गणेश वंदना है, जे गाँव है अनुराग त्रिपाठी ने।

कैसे हैं आप? हम उम्मीद कर रहे थे कि आप सब अच्छे होंगे। भाइयों बहनों, अपन तो देख ही रहे हैं कि मौसम ऐसा चल रहा है कि दिन में तेज धूप हो जाता है, कभी शाम को ठंडक सी हो जाता है। तो भैया, ठंडो फ्रिज को ठंडो पानी बिल्कुल भी नहीं पीने हैं। कैसे जिस समय में वायरल बुखार, सर्दी जुखाम ये सब बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, तो भैया सास को विशेष ध्यान रखने हैं। कैसे हमारे किसान भाइयों को तो पशुओं को भी ध्यान रखना होता है, तो भैया पशुओं को भी ध्यान रखें। धूप पशुओं को तेज धूप में ना बांधें, छायादार स्थान पर ही उन्हें बांधें ताकि वो बीमार ना पड़ें। और उनको भी दिन में 4 बार ताज़ा स्वच्छ पानी पीने को देव चाहिए। और भैया मक्खी मच्छरन से भी बचाव करना चाहिए। और ई के लाने अपन गोबर की कंडी हैं या नीम की पत्ती जलाकर धुनी कर सकते हैं। तो भैया पशुओं को विशेष ध्यान रखें, नहीं तो वे बीमार पड़ सकते हैं। और भैया आज है विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस हर साल आज ही के दिन 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इको उद्देश्य यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ग्रामीण आजीविका में जो हमारी जो कपास है उसके महत्व को बताया जा सके। और ई की शुरुआत भई थी वर्ष 2019 में, और ई की शुरुआत करी थी विश्व व्यापार संगठन ने। भाइयों बहनों, जो कपास है, कपास का अच्छा उपयोग हो सके, व्यापार परिवर्तन और साझेदारी के माध्यम से समृद्धि को निर्माण हो सके, यही वजह से ये दिवस मनाया जाता है। और यही 2026 में इको मुख्य उद्देश्य भी है। भाइयों बहनों, हम आपको बता दें कि भारत दुनिया को एक प्रमुख कपास उत्पादक देश है। और ये देश के लाखों किसानों, कारीगरों और महिलाओं श्रमिकों को रोजगार प्रदान करत है। और आप तो सभी जानते हो कि जी अपनी सफ़ेदी की वजह से, अपनी आर्थिक उपयोगिता की वजह से ही इको सफ़ेद सोना भी कहते हैं। और इसके माध्यम से कपास के आर्थिक और सामाजिक फ़ायदा के बारे में सभी लोगों के बीच जागरूकता बढ़ावो ही ये दिवस मनावे को मुख्य उद्देश्य है। और इससे विकासशील देशों के कपास उत्पादकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार सेवा में बढ़ोतरी मिलत है और गरीबी कम कर वो ही जे योजना को, मतलब जे दिवस मनावे को उद्देश्य है। और ये कपड़ा उद्योग को मुख्य आधार भी है और भारत में लाखों किसानों, श्रमिकों सभी की आजीविका को साधन भी है। तो भाइयों बहनों, जी बात तो भाई विश्व कपास दिवस के बारे में। और अब हम आपको सुनवा भी जा रहे हैं जी लोकगीत आभा खरी की आवाज़ में, लेकिन उससे पहले अपन सुना थे जे संदेश।

0: भाइयों बहनों, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी और कृषि सामयिक सलाह। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर हरवेंद्र सिंह।
1: ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से डॉक्टर हरवेंद्र सिंह का सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको मौसम के बारे में जानकारी दूंगा, साथ ही संभावित मौसम में कौन कौन से कृषि कार्य करने चाहिए उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आप पिछले सप्ताह के मौसम के बारे में जानिए। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना स्थित मौसम वेधशाला की गणना के आधार पर पिछले सप्ताह में मुख्यतः छुटपुट से साफ बादल रहे तथा हवा लगभग 5.2 से 5.8 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर और पश्चिम दक्षिण दिशा से बही तथा अधिकतम तापमान 37 से 38 और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया एवं अपेक्षित आर्द्रता सुबह 62 से 64 और शाम को 48 से 54% के बीच दर्ज की गई। किसान भाई, आगामी 5 दिन का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार से है। आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना को मध्यमकालिक मौसम पूर्वानुमान केंद्र भोपाल से प्राप्त जानकारी के आधार पर आगामी 5 दिनों में साफ बादल रहने तथा वर्षा नहीं होने का अनुमान है एवं हवा लगभग 5 से 13 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से मुख्यतः पश्चिम उत्तर दिशा से बहने की संभावना है तथा अधिकतम तापमान 36.5 से 37 और न्यूनतम तापमान 23.3 से 23.5 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहने की संभावना है। अपेक्षित आर्द्रता सुबह 52 से 54 और शाम को 40 से 43% के बीच रहने का अनुमान है। किसान भाई, जैसा कि संभावित मौसम में दिखाया गया है कि आगामी 5 दिनों में बिल्कुल साफ मौसम रहेगा तथा तापमान में वृद्धि की संभावना को देखते हुए जो आपको कृषि कार्य करने की सलाह दी जाती है इस प्रकार से है। किसान भाई, संभावित मौसम को देखते हुए इस समय सब्जियों एवं

फसलों में आवश्यक जो नत्रियन की मात्रा है उसको दें एवं कीट व्याधि रोग नियंत्रण आप कर सकते हैं। साथ ही संभावित मौसम में वर्षा नहीं होने और तापमान वृद्धि को देखते हुए इस समय सब्जियों विशेषकर सब्जियां ही हैं और कुछ खरीफ फसलें भी हो सकती है जैसे आपका धान है तो उसमें आवश्यकता अनुसार इस समय सिंचाई करें। साथ ही साथ फसलों के हिसाब से बात करें तो इस अरहर की बात करें तो अरहर इस समय फूल और फलियां बनने की अवस्था में है तो इस समय अरहर की फसल में फली छेदक यानी पॉड बोरर कीट की संभावना हो सकती है। अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु ट्राइओफास 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी गुल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई उड़द और मूंग की बात करें तो इस समय लगभग मूंग तो 90% तक पक चुकी है तो मूंग की इस समय कटाई कर सकते हैं क्योंकि मौसम बिल्कुल साफ है और उसको सुखाकर इसकी समय गाई कर सकते हैं और उर्द में शायद अभी 10-5 दिन लग सकते हैं तो उर्द की अगर पकी हुई फसल है तो उसकी भी कटाई गाई करें। साथ ही बात करें किसान भाई जैसे हमारे चंबल संभाग में सबसे ज्यादा बाजरा होता है तो बाजरा की फसल इस समय पकने की बिल्कुल अवस्था में है तो आप इस समय बाजरा की कटाई करें और साथ ही उसकी गाई कर उसका गाई करें। साथ ही किसान भाई तिल की बात करें तो जो देरी से बोई गई तिल की फसल है उसमें तिल की फसल है उस कीट की संभावना हो सकती है अतः इसके दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु क्विनोल फॉस दवा का छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई चना मटर की बात करें तो संभावित मौसम में चुके खेत खाली हो चुके हैं और चना मटर की बुवाई का समय आ रहा है तो इस समय इनके अच्छी उन्नत किस्मों का चयन कर क्रय करके रखें तथा अभी चना मटर की बुवाई हेतु अधिक तापमान है तो तापमान अनुकूल होने तक बुवाई स्थगित रखें और अगर आवश्यकता हो नमी कम हो तो इसमें पलेवा भी उसके लिए कर सकते हैं। साथ ही किसान धान की बात करें तो संभावित मौसम में वर्षा नहीं होने के अनुमान को देखते हुए तापमान वृद्धि को देखते हुए क्योंकि धान की फसल में इस समय दूधिया अवस्था में है तो उसमें पानी की आवश्यकता हो सकती है तो आवश्यकता अनुसार उसमें सिंचाई करें क्योंकि इस समय पानी की धान को बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है। साथ ही किसान भाई तोरिया की बात करें तो संभावित मौसम को देखते हुए इस समय तोरिया की बुवाई हम कर सकते हैं क्योंकि तापमान भी लगभग तोरिया के लिए अनुकूल है और लेकिन तोरिया की बुवाई करने से पूर्व नमी का ध्यान रखें नमी पर्याप्त मात्रा में आपके खेत में होनी चाहिए। साथ ही किसान सरसों की बात करें सरसों की बुवाई हेतु खेतों को इस समय तैयार कर रहे हैं और उन्नत किस्मों का चयन करके क्रय कर रखें तथा उर्वरकों की व्यवस्था करें तथा अभी तापमान सरसों की बुवाई हेतु अनुकूल नहीं है तापमान इस समय अधिक है जब तक तापमान अनुकूल नहीं होता तब तक हम सरसों की बुवाई नहीं करें। साथ ही किसान बरसियों की बात करें संभावित मौसम में बरसियों की बुवाई के लिए इस समय उचित तापमान भी है उचित समय भी है और समय से आपकी बरसियों की जो हरे चारे की उपलब्धता हो जाएगी तो उसके लिए इस समय बरसियों की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही किसान सब्जियों की बात करें तो मिर्च बैंगन टमाटर आदि में जो आपकी पौध लेट देरी से रोपी गई है उसमें आप निराई करें साथ ही आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें और नत्रजन की मात्रा को भी दें। साथ ही साथ भिंडी की बात करें तो इस समय भिंडी में अवस्था में है तो इसमें फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है सतत निगरानी रखें और अगर आपको फल छेदक कीट दिखाई देता है तो इसके नियंत्रण हेतु डाई मेथोड 750 ml दवा प्रति हेक्टर 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-10 दिन के अंतराल से 2 या 3 बार इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान मिर्च की बात करें जो इस समय फलन अवस्था में है तो संभावित मौसम में मिर्च में चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमेथोक्सिजाम 25 WG 100 ग्राम दबा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका प्रति हेक्टर छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई बैंगन की बात करें तो इसमें बैंगन टमाटर में तना छेदक और फल छेदक कीट की संभावना हो सकती है सतत निगरानी रखें और दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु नीवाक्रोन 1 लीटर दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करें। साथ ही किसान भाई इस समय जो हमने फल वृक्ष भी लगाए थे आम अमरूद नींबू के जो वृक्ष हम वर्षा काल में लगाए थे तो उसमें आवश्यकता अनुसार इस समय सिंचाई करें क्योंकि इस समय वर्षा होने की संभावना नहीं है तो उनको बचाने के लिए आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। साथ ही किसान पशुपालन की बात करें तो इस समय अधिकतर पशुओं जैसे गाय भैंस ब्याने का समय है अतः पशु के ब्याने के बाद 1 घंटे के भीतर पैदा होने वाले शिशु को पर्याप्त मात्रा में घी पिलाएं यानी नवजात शिशु के भार का 1/10 भाग जो है खींच पिलाएं। साथ ही किसान संभावित मौसम में मौसम साफ रहने तापमान वृद्धि के देखते हुए इस समय पशुओं को दिन के समय छायादार और हवादार स्थान पर रखें
और साथ में ध्यान रखें कि सुबह के टाइम रात्रि में तापमान कम होता है तो उसका भी ध्यान रखें। तो अगर हम दिन में

0: धूप में बांधेंगे पशुओं को तो बीमारी की संभावना हो सकती है, अतः अधिक धूप से पशुओं को बचाएं। इसी के साथ आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र से मैं डॉक्टर हरविंद सिंह।
1: भाइयों बहनों, अभी अपन सुन रहे थे आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना से फोन पर मौसम की जानकारी और कृषि सामयिक सलाह। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर हरवेंद्र सिंह। और भाइयों बहनों, अब हम आपसे बात कर रहे हैं एक कृषक प्रेरक प्रेमलाल प्रजापति के बारे में। प्रेमलाल प्रजापति मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करेरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सहरिया के एक प्रगतिशील किसान हैं। उन्होंने कृषि विभाग के मार्गदर्शन में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर पारंपरिक खेती के ढर्रे को बदल कर रख दिया है। पहले वो पारंपरिक तरीके से खेती करते थे जिससे लागत अधिक और आमदनी कम होती थी। फिर कृषि विभाग की सलाह और उन्नत किस्म के बीजों और वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया और अपनी खेती के तौर तरीके को बदलत भाई मूंगफली, उड़द, मूंग, गेहूं के संग संग सब्जियों की व्यावसायिक खेती भी उन्होंने शुरू कर दी। उन्होंने अपने खेत पर ही बीजामृत, जीवामृत और गोबर से जैविक खाद तैयार करना शुरू किया और इसके अलावा रासायनिक कीटनाशकों को उपयोग कम करके प्राकृतिक कीट प्रबंधन को भी अपनाया और आधुनिक कृषि प्रबंधन की बदौलत वो आज अच्छा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं, जिससे प्रभावित होकर क्षेत्र के सभी अन्य किसान भी रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक और आधुनिक खेती की ओर प्रेरित हो रहे हैं। तो ये थे हमारे आज के कृषक प्रेरक प्रेमलाल प्रजापति। और भाइयों बहनों, अब हम आपको सुनवाते हैं जी लोकगीत अनिल दंडौतिया की आवाज़ में।

0: हमारे किसान भाई फसल बोते हैं, सरसों की फसल बोते हैं, तो सरसों की फसल कैसे बोएं, कैसे सल्फर युक्त उर्वरकों का उसमें प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें, तो आज जय से संबंधित भेंट वार्ता हम आपको सुनवावे जा रहे हैं। इको विषय है सरसों की फसल में सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह और इनसे बातचीत कर रहे हैं अपय भैया सोहन सिंह। तो भाइयों बहनों सुनते हैं जय भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, नवरात्रि शुरू होते ही रबी की फसलों की बुवाई करना आरंभ कर देते हैं और रबी की फसलों में सबसे पहले अपने ग्वालियर और चंबल अंचल में सरसों की बुवाई करते हैं। सरसों की बुवाई के लिए, सरसों की फसल की बढ़वार के लिए, अच्छी पैदावार के लिए जो हमें पैदावार मिलती है उसमें तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए सल्फर तत्व की विशेष आवश्यकता होती है। मिट्टी से प्राप्त नमूनों में भी अपने अंचल में सल्फर तत्व की विशेष कमी पाई गई है। सल्फर तत्व का किस तरह हमारे किसान भाई उपयोग करके फसलों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे एक कार्यक्रम में आमंत्रित हैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र लाहौर से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, जहाँ पर हमारे किसान भाई सरसों की फसल की बुवाई करना चाह रहे हैं और उसमें विशेष तत्व सल्फर होता है जिससे बढ़वार अच्छी होती है, तो हमारे किसान भाई ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व प्रयोग करते हैं, उनके साथ सल्फर का भी उपयोग करके फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं?
2: किसान भाइयों नमस्कार। सरसों रबी मौसम की तिलहनी फसल है और भारत में इसका क्षेत्रफल जो 6 से 7 मिलियन हेक्टेयर है। देश भर के विभिन्न राज्यों में कम उत्पादन के चिन्हित करने के मुख्य कारकों में से 3 प्रमुख कारक होते हैं। किस्मों का चयन नहीं करना, असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग, पादप रोगों एवं कीट खरपतवार का सही प्रबंधन न करना। हम यहाँ सरसों में संतुलित एवं सल्फर युक्त उर्वरक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि किसान भाई उर्वरक आदान पर खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे रासायनिक खाद NPK का उपयोग जो है संतुलित मात्रा में देना चाहिए। जैसे धान्य फसलें हैं 4:2:1 है और दलहनी फसल में 1:2:1 के रेशियो में देना चाहिए किसान भाइयों को। परंतु इसके ठीक विपरीत इसका अनुपात नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश का 7.7, 3.1 और 1 है। बहुत ज़्यादा इसमें यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं किसान भाई। और ये सरसों की

0: जो बात हो रही है इसमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटास के साथ सल्फर युक्त गंधक उर्वरक बेहद जरूरी एवं फायदेमंद है, क्योंकि जो सल्फर है सीधे तौर पर आपके दानों में जो है तेल का प्रतिशत बढ़ाता है, और अगर सल्फर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें फलियां आपकी ज़्यादा आएंगी, दाने भी मोटे होंगे, चमकदार होंगे और वजनदार भी होंगे, जिससे आपकी ऑटोमेटिक पैदावार में वृद्धि होती है। अगर आप सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं तो इससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता और जो फसल आप बोए हैं उसमें पाले ठंड से बचाव होती है, और जो फंगस युक्त रोग है उससे लड़ने की शक्ति देता है। इसलिए किसान भाई सल्फर तेल वाली फसलों में बहुत आवश्यक है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अपने क्षेत्र में ज़्यादातर यूरिया प्रयोग करते हैं या DAP प्रयोग करते हैं, जो गंधक आप बता रहे हैं उसको बहुत कम प्रयोग करते हैं, तो डॉक्टर साहब इनके जो लक्षण हैं वो किस तरह के फसलों में प्रतीत होते हैं, जिससे हमारे किसान भाई पहचान सकें कि हमने गंधक या सल्फर का प्रयोग नहीं किया है इसलिए इस तरह की हमारे फसल में लक्षण दिखाई दे रहे हैं।
0: आप यूरिया DAP दे रहे हैं, ये सल्फर अगर हम अपने खेतों में नहीं दिए हैं तो इसकी कमी से सबसे पहले नई पत्तियां प्रभावित होती हैं, और नई पत्तियां जो है पीली होने लगती हैं, ये अक्सर नाइट्रोजन की कमी जैसा लगता है, और किसान भाई करते हैं यूरिया और डाल देते हैं तो फसलों का नुकसान होता है, पैदावार का नुकसान होता है। जबकि किसान भाई समझना ये चाहिए सल्फर की कमी के कारण जो सबसे नई पत्तियां वो प्रभावित होती हैं, और जो नाइट्रोजन यूरिया के कारण है सबसे नीचे से पत्तियां पीली पड़ती हैं वो प्रभावित होती है, ये बहुत बड़ा अंतर है। और इसमें एक ये भी होता है कि आपका जो विकास है वृद्धि दर धीमा हो जाता है, तना जो पतले और कड़क रह जाते हैं, और पौधे में फूल कम आते हैं, फलियों में जो है दाने ठीक से नहीं भरते, और दानों की जो चमक होती है सरसों में वह तो एकदम फीकी पड़ जाती हैं, तो आपका बाजार भाव मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कम मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को जो सल्फर है वो किस तरह उपयोग करनी चाहिए, कौन कौन सी खादें हैं जिनमें सल्फर तत्व तो पाया जाता है, जिन्हें हमारे किसान भाई फसलों में प्रयोग करके सल्फर तत्व की पूर्ति कर सकते हैं?
0: एक हेक्टेयर खेत है तो आप 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर दे सकते हैं। उसके लिए जो तत्व है जिप्सम है, इसमें 18.6% सल्फर होता है। अगर आप इसको 160 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से देते हैं तो आपकी सल्फर की पूर्ति हो जाती है फसलों में। सिंगल सुपर फास्फेट, यहाँ के भाषा में जैसे आप रेखड़ा भी कहते हैं, चंबल मुरैना भिंड के भाषा में, तो इसमें भी आपकी 11% सल्फर होता है और 16% फास्फोरस मिल जाता है। एक कट्टा 50 किलो का सिंगल सुपर फास्फेट दे तो उनके लिए पर्याप्त है। अमोनियम सल्फेट एक खाद है, इसमें भी आपका 24% सल्फर 100 किलो में 24 किलो पाया जाता है, और 21% नाइट्रोजन एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इससे अगर पूर्ति करें तो इसकी सल्फर की पूर्ति हो जाती है। और किसान भाइयों, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो है यूरिया DAP के अलावा पोटास बिल्कुल नहीं देते हैं, तो एक खाद है उसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, 18% सल्फर भी पहुँच जाता है और 50% पोटास। पोटास और सल्फर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये चंबल क्षेत्र के लिए है। एक खाद और है जिसका नाम है बेंटोनाइज सल्फर, 90% सल्फर होता है। इसको भी किसान भाई अगर 6.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से दें तो उनकी सल्फर की पूर्ति हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ पर हमारे किसान भाई सरसों की फसल ले रहे हैं तो वो किस मात्रा में किस अनुपात में खादों का प्रयोग करें जिससे पौधों को सल्फर की पूर्ति हो सके और हमारी फसल की पैदावार भी अच्छी हो?
0: किसान भाइयों, सल्फर सरसों के लिए और जितनी भी तेल वाली फसलें हैं तोरिया तिल सबके लिए बहुत आवश्यक है। इसके साथ आप संतुलित उर्वरक भी देंगे, जो आपकी नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास है, संतुलित उर्वरक के साथ सल्फर की पूर्ति करें तो आपका जो उत्पादन बहुत अच्छा होगा। सरसों के लिए जैसे एक हेक्टेयर के लिए 175 किलो यूरिया और 250 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जिसको रेखड़ा कहते हैं और 33 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास, अगर मिट्टी परीक्षण नहीं कराए हैं तो राज्य के अनुसार ये संस्तुत है, और मिट्टी परीक्षण अगर किसान भाई करा लेते हैं जो उसमें उपलब्ध नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर है उसके आधार पर देंगे। और किसान भाइयों, ये सबसे अच्छा उर्वरक है और सबसे अच्छा कम्बिनेशन है, आप रेखड़ा से दें और यूरिया दें पोटास की। और जिन किसान भाइयों के पास जैसे रेखड़ा नहीं उपलब्ध हो पाता, जिनके पास DAP है, तो DAP के लिए दूसरा विकल्प है, आप 140 किलोग्राम यूरिया और 87 किलो

0: किलोग्राम डीएपी और 33 किलोग्राम म्यूरेट पोटाश देते हैं। जिनके पास डीएपी खाद उपलब्ध है वो इससे दें। जैसे आपके पास 50 किलोग्राम का एक बैग इकट्ठा होता है यूरिया डीएपी पोटाश के लिए, आप 3 बैग यूरिया, 2 बैग डीएपी और 1 बैग जो पोटाश दे सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने हमारे किसान भाइयों को सल्फर सरसों की फसल में प्रदाय करके किस तरह अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंत में चलते चलते हमारे किसान भाइयों को और क्या जानकारी देना चाहिए?
0: किसान भाइयों सरसों का उत्पादन अधिक करते हैं और एक फैलो मस्टर्ड करते हैं, खेत खाली छोड़ देते हैं और सरसों करते हैं, और सरसों करने से बार बार जो है सल्फर जो है भूमि से या मिट्टी से अवशोषित हो जाता है और सल्फर की पूर्ति करते नहीं, इसलिए उत्पादन की संभावना कम रहती है। इसलिए किसान भाइयों संतुलित मात्रा में उर्वरक दें, साथ में सल्फर दें, जिससे पोषक तत्व की पूर्ति हो, और अगर संतुलित मात्रा में उर्वरक देंगे तो आपका उत्पादन और आय दोनों बेहतर होगा।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों को सरसों की फसल में सल्फर तत्व की क्या भूमिका है और इसे प्रयोग करके किस तरह फसलों से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, इसके बारे में जानकारी दी, और इस जानकारी से हमारे किसान भाई निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाइयों बहनों, अभी अपन सुन रहे थे जी भेंट वार्ता, इको विषय हो सरसों की फसल में सल्फर युक्त उर्वरकों का उपयोग। जानकारी दे रहे थे डॉक्टर भानु प्रताप सिंह और इनसे बातचीत कर रहे थे सोहन सिंह। और भाइयों बहनों, अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को अपनाएं जा विषय पर। भाइयों बहनों, अपन तो देख ही रहे हैं कि आज की आधुनिक दुनिया पूरी तरह से ऊर्जा पर निर्भर है, लेकिन जो ऊर्जा के जो पारंपरिक साधन हैं जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, जिनको उपयोग हम सदियों से कर रहे हैं, वो क्या है, सीमित हैं और तेज़ी से ख़त्म भी हो रहे हैं। और इसके संग संग इनके अत्यधिक उपयोग से कितना प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसलिए आज आवश्यकता जब आती है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को अपनाएं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और इनको उपयोग कर वो बहुत ही आसान है। सौर ऊर्जा सूर्य की किरणों से सोलर पैनल के जरिए असीमित बिजली इससे बनाई जा सकत है, और ये अपने भारत जैसे देश के लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है। पवन ऊर्जा को उपयोग करवो चाहिए, जैसे जो तटीय और पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें पवन चक्कियों के माध्यम से हवा की शक्ति को बिजली में बदलो जाते हैं और हम बड़ी आसानी से पवन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और एक ये संग संग जैसे जल विद्युत में क्या होता है कि जो बहते पानी के वेग से टरबाइन चलाकर प्रदूषण मुक्त बिजली को उत्पादन करो जाते है। और इसके संग संग जैसे बायोगैस है, इको उपयोग तो बहुत ही आसान है, जैसे कृषि के कचरे गोबर को उपयोग करके गांव में ईंधन और बिजली तैयार करी जा सकत है। और इसमें ये साधन जो है वो पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त हैं और इससे अपना पर्यावरण भी साफ सुथरा रहते हैं और भैया हमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता और ये कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, इनको अपन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि शुरुआती जो लागत है वो ज़रूर आ सकता है, जैसे सोलर पैनल अपन लगवाते हैं, लेकिन जो इनसे अपन को ऊर्जा मिलत है उससे अपन को बहुत ही फ़ायदा होता है। जो ऊर्जा मिलत है बहुत ही सस्ती और लगभग हमको आगे चल के मुफ्त पड़त है। और इको सबसे बड़ो फ़ायदा ये ही है कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले साधन हैं और हमारे लाने और हमारी आवे वाली पीढ़ियों के लाने भी हमेशा उपलब्ध रहेंगे। तो हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि हमें ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों को अपनावो चाहिए। अब जी केवल एक विकल्प नहीं है बल्कि हम जी कह सकते हैं हमारी मजबूरी है और अपनी जिम्मेदारी भी है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को उपयोग करें। और यदि हम अपने घरों में सोलर पैनल लगाएं, बिजली की बर्बादी को रोकें, तो हम देश की उन्नति के संग संग पृथ्वी को भी बचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो भैया, हम तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को हमें उपयोग करवो चाहिए और जितने हो सके अगर हम जहाँ तक पैदल चल सकत हैं, साइकिल को उपयोग कर सकत हैं, तो पेट्रोल के उपयोग से अपन को बचवो चाहिए। वैसे तो अपन दूरी के स्थान पर तो अपन मोटरसाइकिल को उपयोग करत ही करत हैं, कार को उपयोग करत हैं, लेकिन अगर हम आसपास जा रहे हैं कहीं या हम जा सकते हैं तो हमको साइकिल को उपयोग करवो चाहिए। जैसे कहा होते भैया, हमारी सेहत भी अच्छी रहते है और पर्यावरण भी अच्छा रहता है। तो हम तो आपसे यही कहें कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को अधिक से अधिक उपयोग करें। और भाइयों बहनों, अब अपन देख ही रहे हैं कि घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि अब एक कार्यक्रम को समय समाप्त हो रहा है। तो आपकी वर्षा बहन आपसे विदा लेते हैं। राम राम।

0: 80.32 मीटर्स पर। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारा विशेष कार्यक्रम।
1: ये आकाशवाणी है। विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा, राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथेनियल। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पब्लिक सर्विस के 25 वर्ष पूरे हो गए हैं। 13 वर्ष उन्होंने गुजरात सरकार का नेतृत्व किया मुख्यमंत्री के रूप में और फिर 12 वर्ष से अब वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और इस अवसर पर हम एक नई श्रृंखला आप तक ला रहे हैं, जन सेवा से देश सेवा। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय सामर्थ्य और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और इस बहुत ही अहम विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास अतिथि आज आमंत्रित हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल, जो CRPF के पूर्व IG हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला जी और डिफेंस एनालिस्ट MP नथानियल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी स्टूडियोज में।
3: थैंक यू। थैंक यू
2: राज शुक्ला जी, पहले आपके पास आते हैं। पिछले 12 वर्षों में आप कैसे देखते हैं जो वर्तमान सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया है, क्या आपको लगता है उसके प्रमुख पहलू हैं?
3: तो देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा में जिस सुधार की आप बात कर रही हैं, इसकी एक पृष्ठभूमि है और उससे मैं आपको परिचय करा दूं। इसके मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? सर्वप्रथम, वैश्विक भू राजनीति के रूप स्वरूप में गहरी तब्दीली नजर आ रही है। इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ दोज वंस इन 2-3 सेंचुरी मोमेंट्स, ये है वो। और इस बदलाव के केंद्र में है राष्ट्रीय सुरक्षा की क्षमताएं। आप देखिए किस प्रकार से डिफेंस एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स $1.5 trillion, युद्ध का दायरा किस तरह से बढ़ रहा है। टुडे देयर आर 3 मैरिटाइम चोक पॉइंट्स जो बंद हैं, बाबल मंडप, हॉर्मुज, ब्लैक सी। और दूसरा जो बिंदु है वो है तकनीकीकरण का, उसकी जो विशेष उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय सुरक्षा। सो टेक्नोलॉजी इज ड्राइविंग नेशनल सिक्योरिटी लाइक नेवर बिफोर। तो इसको मद्देनजर रखते हुए 2014 से लगभग उस समय से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के मूल ढांचे में संपूर्ण बदलाव की ओर कई कदम उठाए हैं। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन। और अगर आप जाएं, अभी भी PMO की वेबसाइट पे अवेलेबल है, 2014 में एक संबोधन है प्रधानमंत्री जी का कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये जो बदलाव है, संपूर्ण बदलाव, उसकी रूपरेखा उन्होंने पेश की है। इट्स पब्लिकली अवेलेबल और एक बहुत ही मेरे समझ में विचारशील दस्तावेज है। इट्स अ वेरी थॉटफुल डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस एवरीथिंग। और जो आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव हुआ है, इट फ्लोज फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट। उसमें आप देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपने सुना होगा, द गवर्नमेंट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ द CDS DMA, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। इसकी मांग जो है सशस्त्र सेनाएं 1980-1970 से कर रही थी, और इसका कार्यान्वयन हुआ 2020 में। इसके पीछे देखिए सोच क्या थी। सोच ये थी कि जो सरकार है या जो नेतृत्व है, उसने सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि आपकी कुशलता में हमें पूर्ण विश्वास है, आप ही में से हम एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करेंगे और उनको स्वतंत्रता देंगे कि आप सोच विचार करें। और राष्ट्रीय सुरक्षा में जो बदलाव

0: उसकी दिशा, उसकी गति, उसके क्या प्रमुख स्तंभ होने चाहिए, ये आप तय करें। आप सुन रही होंगी थिएटराइजेशन, इंटीग्रेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
1: थिएटराइजेशन का मतलब थोड़ा सरल शब्दों में बताएं।
0: थिएटराइजेशन का मतलब ये है कि अभी देखिए द सर्विसेज एग्जिस्ट इन साइलोस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सो देर आर आर्मी कमांडर्स फॉर ईच एरिया, देर आर नेवल कमांडर्स फॉर ईच एरिया, दे आर एयरफोर्स कमांडर्स फॉर ईच एरिया। थिएटराइजेशन का मतलब है कि आप दो या तीन थिएटर्स बनाएं, एक थिएटर विच लुक्स एट द वेस्टर्न होराइजंस, सो पश्चिमी तट की ओर, एक एट द ईस्टर्न होराइजंस या चाइना, वेस्टर्न होराइजंस पाकिस्तान एंड बियॉन्ड, और एक मैरिटाइम थिएटर। और दो तीन, जैसे स्पेस इज अ थिएटर, साइबर इज अ थिएटर, बट वंस यू से वेस्टर्न होराइजंस, अब उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, दे विल बी इंटीग्रेटेड इन टू दिस वन थिएटर कमांड। अब देखिए CDS इज द सिंगल पॉइंट एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द गवर्नमेंट, टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। सो इट्स नॉट आर्मी टेकिंग इट्स प्लान, नेवी टेकिंग इट्स प्लान, इट इज इंटीग्रेटेड प्लान विच द CDS टेक्स। सिंदूर में देखिए क्या हुआ। So the CDS, the service chief briefed him and the CDS took the integrated plan to the prime minister. और इसके पीछे भी एक लंबा इतिहास है, पृष्ठभूमि है। So that is optimizing all available resources for best combat outcomes.
1: आपको लगता है कि जो वर्तमान सरकार है उनका जो एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, वो हमेशा कहते हैं कि सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, तो उसी का एक ये एक प्रारूप है जो हम डिफेंस फोर्सेज में देख रहे हैं?
0: आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए क्यों, इवन आफ्टर अपॉइंटिंग द CDS, यू हैव अपॉइंटेड अ CDS, बट अगर आप इसकी तुलना करें, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड अ परमानेंट चेयरमैन इन 1949, उसके बाद दे इंटीग्रेटेड द थिएटर्स। तो आपने गल्फ वॉर वन में सुना होगा, वी हैड नेटवर्क सेंट्रिसिटी। गल्फ वॉर टू में वी मूव टू इंटीग्रेशन, वेयर अ टैंक कमांडर कुड कॉल फॉर द फायर ऑफ एन F-16। आप देखें उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में दे शुड बी सिविल सर्वेंट्स, सोल्जर्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड्स, इनोवेशनिस्ट, क्रॉस पॉलिनेशन। और फिर जिसका आपने बात की, होल ऑफ गवर्नमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, नॉट एन आर्मी मैन फॉर एन आर्मी जॉब। सो दोज आर द steps. Today we are in what we call coordinated jointness. Yes. Then you have to go to integration, then cross-pollination, then civil-military fusion, which is whole of government. मैं आपके इसको दो उदाहरण देता हूँ। एक महीने पहले चाइना की जो सिंगवा यूनिवर्सिटी है, it has picked up an American called Omar Yagi, Nobel laureate in chemistry. किस लिए? सिंगवा यूनिवर्सिटी में एक AI department है for advanced materials, जिसमें PLA का 30% representation. तो academia, PLA and Nobel laureate kind of talent. That is civil military fusion. Yes. तो ये अभी एक लंबा सफर है। CDS पहला पड़ाव था, integration, theatrization दूसरा पड़ाव होगा, and that is the way we will grow if we have to become a power of consequence. But जो CDS और DMA है, जैसे मैंने कहा, this is the beginning of that journey. और देखिए इसका एक और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, जो सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का ढांचा था
1: जी,
0: उसमें एक ये महत्वपूर्ण फेरबदल है। देखिए पहले क्या होता था कि अ सर्विस चीफ वुड गो टू द रक्षा मंत्री थ्रू द डिफेंस सेक्रेटरी, सो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, बट द सर्व सोल्जर कुड गेट टू हिम ओनली थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक एयर,
1: द हायरार्की हैड टू बी,
0: नाउ इट इज इक्वल्स, डिफेंस सेक्रेटरी, CDS, बोथ, सो दैट द रक्षा मंत्री गेट्स द बेस्ट एडवाइस। इसका दैट इज द लॉजिक। और जैसे मैंने कहा, इसके जो अब हम सिविल मिलिट्री फ्यूजन की ओर अग्रसर है
1: जी,
0: और इसके मील पत्थर क्या होंगे, प्रतिभा, टैलेंट, मैंने उसका एक उदाहरण दिया आपका, इनोवेशन, नवाचार। टुडे यू कांट हैव आउटडेटेड प्रोसेसेस। देखिए क्या हो रहा है यूक्रेन में, ड्रोन्स, AI, ये सब हकीकतें हैं, एंड अलॉन्ग विद इनोवेशन, डीरेगुलेशन। जब मैं आर्मी कमांडर था, प्रधानमंत्री जी आए थे, मेरे को अभी तक याद है, ही सेड private sector or startups ke silsile mein he was telling us that release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure, niyamo ka jaal. So CDS DMA is a symbol, but iske piche gehra soch hai.
1: Sorry to interrupt, but aapko lagta hai ki shayad unki doordarshi soch thi, aap keh rahe hain ki 2014 mein hi is tarah ka jo soch hai wo samne aa gayi thi, to in time it was taken jo decision,
0: it is a revolutionary step in the civil military relationship. It is building of trust between the civilian political leadership and the military. So there are complex factors here. Dusra jo kendra bindu hai bahut mahatvapurna, aatmanirbharta and defense. Dekhiye

0: हमेशा आत्मनिर्भरता की बात करते थे, बट पहला जो आत्मनिर्भरता था इट डिपेंडेड ऑन दी PSUs, DRDOs.
1: Right.
0: अब हुआ क्या है, जो युद्ध का चरित्र है, the character of war, उसमें आमूल परिवर्तन हुआ है. So today if you see Ukraine वगैरह में polymaths जो है उस युद्ध के जो दायरा है उसको बढ़ा रहे हैं. आप देखिए United States के साथ क्या हुआ. It is such a powerful military. There is no military which can project power two oceans away. But अभी एक रिपोर्ट निकली है Washington से कि why the US has not delivered an epic fury. Epic fury में उसका काम इतना अच्छा नहीं रहा, बिकॉज इट वॉज स्लो टू लर्न द लेसन्स ऑफ यूक्रेन. यूक्रेन से जो सीख थी ड्रोन्स, AI, वो नहीं कर पाए. तो देयर यूएस नेवी, उसने ईरानियन नेवी के 160 शिप्स को ध्वस्त कर दिया, बट इट वॉज नॉट स्मॉल इनफ, एजाइल इनफ, ऑटोनमस इनफ टू ऑपरेट इन द स्ट्रेट.
1: तो आप जो चरित्र की बात कर रहे थे कि चरित्र चेंज हो गया है
0: इस तरह से, तो अब इस चरित्र चेंज हो रहा है. यू नीड द इनोवेशन, एजिलिटी ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप्स. अब आप देखिए हमारे यहाँ क्या है, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन, प्रोसेस, प्रोसीजर, HAL इज प्रॉमिसिंग यू AMCA ओनली बाय 2030. अंग्रेजी में एक कहावत है दैट टुडे क्या हो रहा है, दैट मल्टी बिलियन डॉलर कैपेसिटीज विच आर डिलीवर्ड इन 10 ईयर्स दे आर बींग ओवरटर्न्ड बाय इनोवेशन इन 6 to 8 weeks. यूक्रेन में ये हो रहा है. सो दिस इज द रीजन वाई वी हैव टू मूव टूवर्ड्स प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप. मैं आपको बता दूं, जब मैं कर्नल था, अगर मैं कोई देख भी लेता प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो मेरी वो जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल करियर, व्यावसायिक जो जिंदगी है, उसका अंत हो जाता. वी आर नॉट सपोज टू इंटरेक्ट. आज आप देखिए जो हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल स्वामीनाथन, वो सार्वजनिक मंच से ही वॉज टेलिंग द CEO स्टार्टअप्स यंगस्टर कि आप आए मुझसे कल मिलें और हमें मिलकर स्पेस का इस्तेमाल करना है फॉर मैरिटाइम प्रोग्रेस. इतने मैं आपको गिना दूं, देखिए सर्वम, AI, गैलेक्साई, मल्टी स्पेक्ट्रल स्पेस इमेजरी, पनियन टर्बोफैन इंजन, थर्ड आई टेक, न्यू स्पेस, दीज आर यंग बॉयज एंड गर्ल्स.
1: रिलायंस को जो बढ़ावा मिला है,
0: हवा मिला है
1: जी
0: स्टार्टअप्स, ये भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं इट इज अ वेरी बोल्ड स्टेप. रक्षा मंत्री जी कल परसों बात कर रहे थे कि नॉट ओनली द 5th generation फाइटर बट द 6th generation फाइटर. तो ये आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है.
1: फ्यूचर रेडी जिसे हम काफी ये शब्द सुनते आज हैं. Really.
0: जो हमारे भारतीय कारखाने हैं इंडियन नेवल शिपयार्ड्स, उसमें 42 शिप्स का निर्माण हो रहा है, वॉर शिप्स. But we have a long way to go because China has got 500 ships. But ये दो तीन चीजें जो हैं, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, जिसमें निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ है, स्टार्टअप्स का प्रवेश हुआ. और एक आखिरी चीज मैं बोल दूं,
1: जी बिल्कुल,
0: हमारी जो सामरिक सोच है, जो नीति है, उसमें भी देखिए नए स्तंभ. आप देखें ये जो आतंक पर प्रहार हुआ है, और देखिए इसमें जो हमने किया है उसमें दो चीजें हैं. एक तो पाकिस्तान को स्पष्ट संदेश गया है कि देखिए आपकी जो सामरिक नीति है, अगर उसमें आप आतंक उसका केंद्र बिंदु होगा तो हम आपको घर में घुस के मारेंगे. एंड इट इज जस्ट नॉट अ फ्रेज, वी हैव डन इट. हमने कैसे किया, चेतावनी और प्रभावी जवाब के द्वारा. आपको याद होगा कि ये जो शैली है पलटवार की, देखिए किस प्रकार से हमने इसको किया. जब उड़ी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक्स, 6 से 8 किलोमीटर हमने पहली चेतावनी दी कि साहब मत करिए. फिर आपने किया पुलवामा, इस बार हमने कहा POK नहीं, POK बाहर बालाकोट में आपको जाके मारा. और फिर भी जब आप नहीं माने और आपने पहलगाम किया तो हमने सिंदूर किया. आप 10 मई 2025 का स्मरण करें, पाकिस्तान डिफेंसेस ले बैटर्ड, इट्स सॉवरेनिटी ले शैटर्ड. हमने तो ये जो टारगेट्स है ना 40-50 टारगेट, हमने तो सिर्फ मैप्स पे मारे थे. पहली बार हमने हकीकतन मारा रावलपिंडी, रायविंड, नूर खान 1.5 किलोमीटर था GHQ से. Pakistan knows it that they were battered and shattered. Now look at the message that we have given.
1: So, Mr. Nathaniel, coming to you, आप क्या कहेंगे? ये जो पिछले 12 वर्षों में बहुत उपलब्धियां रही हैं, जैसे अभी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने भी बताया डिफेंस सेक्टर में, अगर हम नक्सलिज्म की बात करें, नक्सलवाद जिस तरह से खत्म हुआ है और इसी वर्ष डिक्लेरेशन हुई 31 मार्च को कि अब नक्सल मुक्त है भारत, इसको आप कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लिए, और क्या लगता है आपको किस तरह ये संभव हो पाया?
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नक्सलिज्म पहले तो 67 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद CRPF ने काफ़ी ज़ोरों से वहाँ काम किया बंगाल में, क्योंकि दार्जिलिंग वगैरह के आसपास था ज़्यादातर. वहाँ पे जब तकरीबन ख़त्म हो चुका था तो ये जो नक्सलाइट थे इन्होंने मूव किया नांद्रा की तरफ, दूसरे इलाकों में. तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना जड़ जमाया.

0: है वहां पे, खासकर अबुजमांड एरिया में। वहां पे दिक्कत ये थी फोर्सेस को कि कहीं पे भी अगर ऑपरेशन करना हो तो उन्हें 20-30 किलोमीटर लगातार जाना पड़ता था, और वापसी में जब आते थे तो काफी एग्जॉस्ट हो चुके होते थे, और वापसी में ही ये लोग नक्सल जो थे वो अटैक करते बड़े तादाद में, 200-300 के तादाद में 70-80 आदमी पे अटैक करें। उससे क्या था कि काफी हमें नुकसान पहुंचा शुरू में, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने भी देखा कि इसको किसी तरह खत्म करना है, तो ये एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया गया कि 31 मार्च 2026 तक हमें ये खत्म करना ही है। और ये जो डायरेक्टर जनरल थे उन स्टेट्स के और सीएपीएफ मतलब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जिसमें बीएसएफ, टीआरपीएफ, टीएएसएफ, आईटीबीपी ये सब उसमें आते हैं, एसएसबी भी है, तो इन लोगों को बता दिया गया कि ये हमारा डेडलाइन है, इससे पहले आपने ख़त्म करना। उसके हिसाब से जो दिक्कतें आती हैं ऑपरेशन में, ये गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया गया। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कम्युनिकेशन, जो रोड कम्युनिकेशन है वो नहीं, जंगलों में आप कितने देर जाएंगे, 20 किलोमीटर गए वापसी में ये अटैक कर देते थे, और गांव वाले जो है नॉर्मल गांव में रहते हैं, आपको पता नहीं लगेगा ये नक्सल है कौन है। तो सबसे बढ़िया कदम ये लिया गया सबसे पहले कि इन्होंने सड़क बनानी शुरू की। शुरू में जब इन्होंने कोशिश की सड़क बनाने की, तब इनके ऊपर अटैक होता था, कॉन्ट्रैक्टर जो थे वो भाग जाते थे, काम छोड़ के निकल जाते थे, तो इस वजह से सड़क बन नहीं पाई। गवर्नमेंट ने फिर क्या सोचा कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को इसमें इन्वॉल्व करो, क्योंकि इट इज़ मोर और लेस लाइक अ पैरामिलिट्री है। तो उसमें उनको बुला के जब रोड बिछाना शुरू किया तो कुछ हद तक उन्होंने कुछ स्ट्रेच बना दिए, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर आने शुरू हो गए और उनको सीआरपीएफ का प्रोटेक्शन दिया गया। इस हिसाब से फिर काफी दूर तक अबुजमांड एरिया के अंदर भी सब जगह ले जाने रोड्स बिछाने लग गए। इन रोड्स के बिछाने की वजह से ट्रूप्स भी अंदर जाने लगे, सीआरपीएफ के कई जगह फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस बनाने शुरू गए, जिसको हम एफओबी बोलते हैं। उन एफओबी में जब कंपनियां आके बैठ गई, कंपनी में करीब 100-150 आदमी होते हैं, और उनके पास कोई 15-20 गाँव उनकी जिम्मेवारी का इलाका बनता था, और जब वो वहाँ जम गए सीआरपीएफ और बाकी फोर्सेस भी, तो इंटेलिजेंस आना बहुत आसान हो गया। उससे पहले इंटेलिजेंस हमें आसानी से मिलती नहीं थी, हम ज़्यादातर टेक्निकल इंटेलिजेंस पे निर्भर कर रहे थे, लेकिन जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है नक्सलाइट्स को ही पता है।
1: जब सड़कें बनी तो आपका वहाँ पर पहुँच बनी
0: बिल्कुल जी। तो फोर्सेस जब वहाँ जम गए तो लोगों के अंदर जो पहले भय था नक्सलाइट से, तो उस भय को दूर कर दिया गया, और वो खुद आके बताने लग गए कि फलाने फलाने जगह यहाँ पे नक्सलाइट का मूवमेंट हो रहा है
1: जी।
0: और इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे आने लग गए, ऑपरेशन काफी जोरों से किया गया, और उस वजह से उन लोगों के काफी कैजुअल्टीज होने लग गए, और इससे ये भी हुआ कि कैजुअल्टीज जो फोर्सेस के थे वो तकरीबन समाप्त हो गए। और सबसे बड़ा एक ऑपरेशन किया गया कारेगुटा हिल्स, जो कि काफी 15-20 किलोमीटर तक चल रहा था, और उसमें सीआरपीएफ के महानिदेशक महोदय खुद भी थे, और ऑपरेशन लगातार 15-20 दिन चलाए गए जंगलों के अंदर, काफी कठिन इलाका था, और कोबरा बटालियंस भी वहां पे पहुंचा दिए गए, हेलीकॉप्टर और बाकी सब तैयार रखे गए ताकि अगर कुछ कैजुअल्टी होता तो उनको इवैक्यूएट किया जाए, और हेलीकॉप्टर से ही उनको खाना पानी वगैरह ही पहुंचाया जा रहा था। उस कारेगुटा ऑपरेशंस ने इतना बड़ा कमाल किया कि ये जितने भी नक्सलाइट थे उन्होंने कारेगुटा हिल्स को खाली कर दिया, और कई तो आंध्रा की तरफ भाग गए। आंध्रा में भी जो पुलिस थी उनको पहले ही इसकी खबर थी कि यहाँ ऑपरेशन चल रही है, तो हो सकता है वो उनके तरफ बढ़े, तो वहाँ पे उन लोगों ने भी ऑपरेशन जोरों से शुरू किया, और उसके वजह से कई पकड़े गए। सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि डीआरजी जो है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की अपनी फोर्स है
1: जी,
0: उन्होंने इतना बढ़िया काम किया कि एक जगह उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि उनका जनरल सेक्रेटरी बसवराजू वो किसी जगह जंगल में छुपा हुआ, और उसके साथ 20-25 और उनके बॉडीगार्ड वगैरह थे। उस ऑपरेशन में सभी को मार दिया गया बसवराजू के साथ, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। जब उनका जनरल सेक्रेटरी जो टॉप लीडर है वही मारा गया, तो उनका जो फ्रेमवर्क है वो खत्म हो गया था। उसको देखते हुए उनमें पहले से ही कई लीडर थे जो चाह रहे थे कि हम सरेंडर कर दें, सरेंडर पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, और ये इतने एल्यूरिंग पॉलिसीज थे कि अगर आप सरेंडर कर दो आपको इमीडिएटली 50,000 दिया जाएगा, सरेंडर करो आपको मकान बना के दिया जाएगा, आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा,
1: तो रिहैबिलिटेशन के लिए पूरे प्रयास किए गए।
0: तो उसके वजह से कईयों ने सोचा क्यों ना हम निकल जाएं यहाँ से, और

0: खिदमत है, डीआरजी भी है, जो अच्छे ट्रेन थे और जिनकी लॉयल्टी क्वेश्चनेबल नहीं थी, उन लोगों को फिर ऐसे फोर्सेस में भी लिया गया।
1: जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला में आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है राष्ट्रीय समर्थ और आत्मनिर्भर सुरक्षा। और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और डिफेंस एनालिस्ट एमपी नथानियल, जो सीआरपीएफ के पूर्व आईजी हैं। सो मिस्टर नथानियल, अगर हम वहाँ जो रहते हैं लोग ट्राइबल्स, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अब वो लोग भी मुख्य धारा में आएंगे?
0: अब बसेस भी जाने लग गए, लोगों को आसान हो गया, राशन पहुँच रहे हैं वहाँ पे, और सीआरपीएफ एक ऐसा कम्युनिकेशन सेंटर बन गया है, इधर कोई तकलीफ है सीआरपीएफ में पहुँच जाएंगे, वहाँ से खबर पहुँच जाएगी डीएम तक, कहीं पर भी पहुँचाना खबर। तो अब वो इंट्रैक्शन, क्योंकि सीआरपीएफ पहुँच गए हैं, पब्लिक का इंट्रैक्शन सीआरपीएफ से हो रहा है और सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है।
1: जी,
0: पहले जब किसी कैजुअल्टी को पहुंचाना होता तो बड़ा मुश्किल पड़ता था। जब मैं आईजी झारखंड था तो मेरे पास दो हेलीकॉप्टर रखे गए थे कि कभी भी कहीं कैजुअल्टी होता है इमीडिएटली, और कई ऑपरेशन, एक सरेंडा फॉरेस्ट हमने ऑपरेशन करवाया था झारखंड में, वो लगातार हफ्ते भर का चला, सब जवान जंगल में, तो वहाँ पे राशन वगैरह भी हम हेलीकॉप्टर से पहुँचा रहे थे, ताकि और उस सरेंडा फॉरेस्ट को हमने उस वक्त पूरा खाली करवा दिया। नहीं तो उससे पहले जब भी कोई फोर्स वहां जाती कैजुअल्टी होता और वापस आ जाती, लेकिन इस तरीके के फैसिलिटीज के वजह से वहां पर हम अंदर जा सके, एक दो कैजुअल्टीज हुए लेकिन उन लोगों का हमने पूरा खात्मा कर दिया वहां पे, उस जगह से उनको उखाड़ फेंका। तो ये क्योंकि फैसिलिटीज मिल रहे हैं, वेपन भी मॉडर्न वेपन सारे मिल गए, दैट वन एंड नाइट विजन डिवाइसेस वगैरह दिए गए, ताकि रात को एम्बुश में बैठे हैं अगर कोई आता है तो मालूम पड़ता है नाइट विजन डिवाइसेस, तो इन चीजों से हम काफी फायदा, हालांकि ये पंजाब में भी हमने यूज किया हुआ था
1: जी
0: नाइट विजन डिवाइसेस, लेकिन यह काफी तादाद में जब वहाँ यूज किए। अब नाइट एंड डे ऑपरेशन में आपको रात के समय भी पूरे अलर्ट रहना पड़ता है, तो जंगलों में आप रह रहे हो, वहीं पे खाना खा रहे हो, वहीं पे कुकिंग चल रहा, सब कुछ चल रहा है, तो वैसे हालात में जरूरी है कि उनके पास ऐसे सारे मॉडर्न इक्विपमेंट वगैरह हो।
1: सो पूरे देश को आपको धन्यवाद करना चाहिए, डिफेंस फोर्सेस जो आप लोग वहाँ तैनात होते हैं, इसीलिए हम लोग आराम से सोते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जो आप कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर का या एमएसएमईज या स्टार्टअप्स का आना डिफेंस प्रोडक्शन में बहुत एक उत्साहजनक डेवलपमेंट है, तो इसमें जो डिफेंस एक्विजिशन रिफॉर्म्स हैं, डिफेंस प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म्स हैं, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बता सकते हैं कि अभी क्या स्थिति है?
2: देखिए, डिफेंस एक्विजिशन में भी, और ये मैं कहना चाहूंगा, जो मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी साहब है, ही हैज डन सम आउटस्टैंडिंग वर्क। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उनमें एक मूलभूत रूप से सुधार लाए, जैसे मैंने आपको बताया एचएएल की प्रतिस्पर्धा में टाटा एयरबस को खड़ा किया गया, सो दैट एचएएल स्मार्टन्स अप, सो दैट आर पीएसयूज आर चैलेंज। देखिए आज चीन में क्या हो रहा है, जो प्रतिस्पर्धा है, जब चीन में आज एक एंटरप्रेन्योर सुबह उठता है, ही डज नॉट बॉदर अबाउट द अमेरिकन कंपेटिटर, ही इज मोर बॉदर अबाउट द चाइनीज कंपेटिटर। प्रतिस्पर्धा इतनी ज्यादा है कि जो 100 कंपनीज हैं, 5 बचती हैं, और ये 5 कंपनीज वैश्विक स्तर पे कंपीट करने की काबिलियत रखती हैं। सो वी नीड डोमेस्टिक कंपटीशन सो दैट द क्वालिटी ग्रोज। तो ये इस क्षेत्र में बहुत सुधार हुआ। और देखिए दूसरी बात जो मैंने कही, आज आप यूक्रेन देख लें, सॉफ्टवेयर इनोवेशन, पहली बात रक्षा क्षेत्र में हमेशा हम बात करते थे प्लेटफॉर्म्स की, Su-30s, Jaguars, एयरक्राफ्ट के लिए, आज बात हो रही है सॉफ्टवेयर्स की, मेवन क्लॉड का इस्तेमाल हुआ है वेनेजुएला में, मशीन इनेबल्ड टारगेटिंग, डेल्टा जो यूक्रेन में, इट इज एआई इनेबल्ड डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, लैटिस जिससे ड्रोन स्वॉर्मिंग हो रही है, आप देखते हैं आजकल 2000 ड्रोन ये ऐसे ही थोड़ी ना स्वॉर्म करते हैं, देयर इज सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर में निवेश हो रहा है, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये 2 हफ्तों में तब्दील हो रहा है, हार्डवेयर 4 हफ्तों में तब्दील हो। अब जब ये तब्दीलियां हैं 2-4 हफ्ते की, दे कैनॉट बी ड्रिवन बाय अ प्रोसीजर विच यू परफेक्ट इन ईयर्स। अब ये हमारे सामने एक चुनौती है, प्रोक्योरमेंट में काफी रिफॉर्म्स हुए हैं और रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखिए पहले क्या करती थी फौज, यूज टू ले आउट अ GSQR, जनरल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट, कि साहब हमको इस प्रकार का जहाज चाहिए, उसके ये फीचर्स होंगे, आप बनाएं। आजकल जो बाहर प्रोड्यूसर्स हैं, पामर लकी कहते हैं, यू आर नोबडी टू टेल मी द प्रोडक्ट यू वांट, आई विल गिव यू अ प्रोडक्ट दैट यू कांट रिफ्यूज। ये हकीकत हो रही है। अब GSQR बाहर लोग बोलते हैं GSQR इज डेड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म बहुत हुआ है, बट कंसिडर

0: Considering what is happening in the future, we need more reform. देखिए हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है डिफेंस एक्सपोर्ट्स, which is linked to procurement reform and all. मैं आपको बताऊं कैसे. हम जब बाहर जाते थे 2005-6 में, तो लोग थर्ड लार्जेस्ट आर्मी कहते थे बहुत बढ़िया है आप, ये हमको ये बताएं कि आप किस प्रकार के असले निर्यात करते हैं. हम कहते थे साहब ये हमारी नीति नहीं, देयर वाज नॉट अ पॉलिसी, वी डिडंट एक्सपोर्ट. टुडे इफ द लास्ट फिगर्स वर आर राइट, इन फैक्ट आई वाज हियरिंग द ऑनरेबल रक्षा मंत्री, 38,000 crores. अगर आप इसकी तुलना करें 2014 से, दिस इज अ 5,500% की उछाल है.
1: और 80 देशों में जा रहा है.
0: 80 देशों में, जैसे आपने कहा, आर्मेनिया, थाईलैंड, इजिप्ट, बेल्जियम, कुछ यूएसए में भी कुछ हमारे प्रोडक्ट्स जा रहे हैं. 145 फर्म्स हैं, एमएसएमईज वगैरह सब मिला के, विच आर डीलिंग विद दिस. आप हथियार देख लें, ब्रह्मोस, आकाश, 155 तोपखाना, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, पैराशूट्स, प्रोटेक्टिव क्लोदिंग. और ये आप देखें, दिस इज ऑल्सो अ जियो पोलिटिकल लीवर, जिसे कहते हैं भू राजनीतिक अस्त्र है. इट इज फॉर इन्फ्लुएंस, प्रभाव, फॉर लेवरेज. It is for strategic encirclement. हमने किस तरह से वियतनाम, फिलीपींस को ब्रह्मोस दे के चीन को भेजा है. So exports are a geopolitical lever. They are a source of revenue. They make so much sense. And I think this is one area where we have, in fact, we are moving from being importers from the world to exporters to the world.
1: In fact, जो पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट आई हैं 10 अभी तक, जिसमें लगभग 5,500 से अधिक आइटम्स हैं, आपको लगता है ये भी एक बहुत अच्छी पहल है? जब आप आत्मनिर्भर भारत बनने की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, उस दिशा में जब आप इस तरह से एक ईयर मार्क करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यही बनेंगे, तो एक विश्वास भी आप जता रहे हैं अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में, और वो अब दिखाई भी दे रहा है एक्सपोर्ट.
0: विश्वास ही नहीं, अनिवार्य था. देखिए हो क्या रहा था, मैं आपको बताऊँ हकीकतन हो क्या रहा था. मान ली एक टैंक है, भाई हम तो अगर नवाचार नहीं, जुगाड़ में तो हम बहुत बढ़िया थे. हम कहते थे वी कैन यू नो क्रिएट एनीथिंग. बट हो क्या रहा था कि एक टैंक का पाइप, वॉशर, ट्रैक, हर चीज हम इम्पोर्ट कर रहे थे. एंड वी वर पेइंग एट डॉलर्स, वी वर पेइंग एट रूबल प्राइसेस, फॉरेन एक्सचेंज का नुकसान हो रहा था. तो भाई एक नट क्यों नहीं बन सकता है भारत में? तो हमने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन का तात्पर्य ये था कि भाई ऑल दीज थिंग्स यू विल नॉट इम्पोर्ट, आप यहीं बनाएंगे. और एमएसएमईज बना सकते हैं आजकल, तो भाई वी आर मेकिंग एडवांस्ड एयरक्राफ्ट के हम विंग्स, छोटे छोटे उसके पुर्जे बना रहे हैं. तो जब आपने ऐसे पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाए कि ये आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, आप करेंगे. पहले लोग डराते थे कि सर अगर ये नहीं आए तो जहाज में क्या होगा. बट हम जो राजनीतिक नेतृत्व थे, उन्होंने कहा ये आएंगे नहीं. जब नहीं आए तो हमने बना लिए. सी इंडियंस आर वेरी गुड, हमने डीपीआई नहीं किया है, बट थोड़े आलसी हो जाते हैं कभी कभी. तो सो वी सेट पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन, ये आप सब इम्पोर्ट करेंगे नहीं, नोइंग फुल्ली वेल दैट वी कुड मेक इट. तो इसका बड़ा फर्क पड़ा है, जो हमारी इम्पोर्ट के खर्च था वो कम हुआ है. नाउ दैट वी आर मेकिंग इट हियर, वी विल परफेक्ट इट इन एक्सपोर्ट.
2: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी कितने बढ़े.
0: एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, देखिए बुनियादी सवाल क्या था, आई जी साहब ऑल्सो विल, पुरानी चर्चा क्या थी, डिफेंस वर्सेज डेवलपमेंट, सिक्योरिटी वर्सेज डेवलपमेंट. रॉन्ग, इट इज सिक्योरिटी एंड डिफेंस एंड डेवलपमेंट, सिविल मिलिट्री फ्यूजन, साथ चलना है. So, deep, जो मूल्यभूत जो चर्चा थी वही गलत थी. वी हैव टर्न्ड इट अराउंड. वी ग्रो अप इन साइलोस, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, पीएसयूज प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिया अपनी दुनिया में. अरे भाई एकेडमिया में आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आरएनडी नहीं होगी, प्योर साइंसेज नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय सुरक्षा में तकनीकीकरण में तेजी आ ही नहीं सकती. एवरीबडी हैज टू इंटीग्रेट. सो देयर इज अ लार्जर कंसेप्चुअल चेंज ऑल्सो विच इज ड्राइविंग ऑल दीज, I would say mega reforms.
1: So, ये जो conceptual change की बात आप कर रहे हैं, इसका एक और reflection FTI, जो defence में FTI को liberalize किया गया है 74% तक via automatic route and 100% via government. तो इसका थोड़ा सा बताएं सरल शब्दों में कि इसका क्या अर्थ है और ये कितना एक important reform है.
0: बिल्कुल. तो आप एक छोटी सी कहानी सुने. I was growing up 1980s, आपको भी याद होगा, we said space is an exquisite thing, few countries to it. Countries, I'm emphasizing. So, USSR, USA, India was also. But हम whispers में बात करें. हमारे सिलसिले में क्या हो रहा था? That national security, only government can do it. Only DRDO because it is exalted, lofty. और उस दायरे के अंदर क्या हुआ कि in this PSU complex, a lot of, shall I say, slots slipped in, inefficiencies. और उसको protect करने के लिए हमने कहा नहीं, प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। धीरे धीरे क्या हुआ, भारत

0: में ही नहीं वैश्विक स्तर पे प्राइवेट सेक्टर प्रूव दैट इट हैड एफिशिएंसीज ऑफ इट्स ओन. तो एफडीआई में भी यही था पहले, और इसको हमने पहले कैसे कहा इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा ही नहीं हो सकता. हमने क्यों नहीं हो सकता, प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट, क्षमता महत्वपूर्ण है, चाहे वो सरकार से आए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से आए, चाहे वो स्टार्टअप से आए. सो उस तरह से ये जो एफडीआई धीरे धीरे रिलैक्स किया गया है कंपनी स्ट्रक्चर्स में, पीएसयू स्ट्रक्चर में, टू गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड. देखिए हमको पीएसयू या से कोई गिला नहीं है, ऑल दैट वी आर सेइंग आप पीएसयू हो, आप प्राइवेट सेक्टर हो, आप स्टार्टअप्स हो, आपके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड. एंड इफ यू लुक एट द फ्यूचर, पूरे विश्व में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इंटरसेप्टर्स की कमी, यू नीड रोबोट्स टू प्रोड्यूस एमिनेशन. सो आई एम सेइंग कि इंडिया में भी HAL, BEL, दे आर वेरी गुड कंपनीज, बट इनका आकार, इनका स्वरूप बदली करना पड़ेगा. दे हैव टू बिकम AI कंपनीज
1: बिकॉज़ द डिलीवरी इज डिजिटल. स्टार्टअप रेवोल्यूशन जो आया है भारत में, और वी आर द थर्ड बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, वो एक बहुत बड़ा बल है डिफेंस सेक्टर के लिए भी, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए और इनोवेशन होनी चाहिए उस दिशा में.
0: बिल्कुल, मेरा तो ये विश्वास है दैट द नेक्स्ट डिलीवरीज इन डिफेंस विल कम ओनली फ्रॉम स्टार्टअप्स बिकॉज़ दे आर एजाइल, दे आर नॉट ब्यूरोक्रेटिक. यू नो ये जो चीजें आजकल, जैसे मैंने बताया, मेरे को तो ये लगता है, ये सब पता नहीं क्या कहें, कि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हुआ है AI और साइबर क्वांटम, ये राष्ट्रीय सुरक्षा में हुआ है. एंड मोस्ट ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज लाइक द कस्प ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा में है, सिविल स्पेस में भी है. आप देखिए 10 साल में कितना कमाल कर दिया. मैंने आपको इनाम गिनाए थे, दीज आर जस्ट IT इंजीनियर्स, किसी ने गैराज में शुरू किया, किसी ने कुछ किया, बट दे हैव डिलीवर्ड. एंड आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द डिफेंस स्पेस, इन द सिविल स्पेस तो और भी हुआ है. सो I'll go back toward the Prime Minister. I think it was very important. Release the forces of innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. हमने जो इतने rules, नियम, शियम बना के रखे थे, that was throttling national security. उसको आजादी मिली है अभी.
1: सी चेंज है पूरे एटीट्यूड में, अगर हम देखें पिछले 12 सालों में. मिस्टर थेटेल, हालांकि हम इस पे बात कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कितना इवॉल्व हुआ है और इसमें मजबूती कितना एक इम्पॉर्टेंट उपलब्धि है हमारे जैसे देश के लिए.
2: एक काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करें तो इट कवर्स द एंटायर कंट्री, राइट फ्रॉम J&K टू साउथ एंड इवन ईस्ट टू वेस्ट. और ज्यादा जो अफेक्टेड अभी है ये J&K है और नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट में भी तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, सिवाय मणिपुर के, जहाँ पे अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन अभी कोबरा बटालियन वहाँ पहुँच गए हैं. उसी तरह कोबरा बटालियन अब J&K में ही पहुँच गए हैं, सो दैट आर्मी इज रिलीव्ड ऑफ दिस इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी एंड कोबरा बटालियन अलॉन्ग विद अदर CRPF बटालियन आर ऑपरेटिंग इन दोथ एरिया. अब वहाँ पे भी स्थिति मुझे लगता है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट में तो ऑलरेडी तकरीबन ठीक समाप्त हो गया है. हालांकि कुछ हैं, एक तो उल्फा है आसाम में, जो कि अभी भी थोड़ा सा कुछ शरारत करता रहता है, लेकिन हमारे काबू में है, वो ज़्यादा कुछ बड़ा ऐसे हंगामा नहीं कर सकता. लेकिन J&K में जो है वहाँ पर आर्मी राष्ट्रीय राइफल तो रहेगी, और उनके साथ मिलके सिविल पुलिस के साथ मिलके आई एम श्योर कि आने वाले दिनों में वहाँ पे भी उसी तरह का पीस होगा जैसे कि 1989 से पहले था, और लोग और भी जाना शुरू कर देंगे.
1: सो इस ऑप्टिमिस्टिक नोट पर इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं. लेफ्टिनेंट जनरल शुक्ला, मिस्टर नथानियल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, और भारत का जो रक्षा क्षेत्र है किस तरह से इवॉल्व हुआ है पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उस पर आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत धन्यवाद.
3: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 21वें संस्करण में अभी आप सुन रहे थे परिचर्चा राष्ट्रीय सामर्थ्य और सुरक्षा में आत्मनिर्भरता. इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के पूर्व महानिरीक्षक MP नथानियल. कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद. ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया. इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और YouTube चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं. इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044.
4: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा. ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है.

0: कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत लिया था हमने आंधी फिल्म से। आइए अब आपको सुनवाए कार्यक्रम का अगला गीत, लता मंगेशकर का ही गाया हुआ, फिल्म का नाम मौसम।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए मौसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, वक्त है छोटे से अंतराल का।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने कालासागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की है। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। रिजर्व बैंक ने लगभग 4 वर्षों में रेपो दर में 25 आधार अंक की वृद्धि करके इसे 5.5% कर दिया। चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.1% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की और पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
1: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य। हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
0: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है।
1: भारत के रिजिलियंस की चर्चा होती, पॉलिसी पैरालिसिस की चर्चा होती थी और आज रिफॉर्म्स एक्सप्रेस की चर्चा होती। तब इंपोर्ट बढ़ाने के रास्ते खोजे जाते थे और आज एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। तब हम अपनी जरूरत के मोबाइल फोन भी इम्पोर्ट करते थे और आज मेड इन इंडिया मोबाइल फोन का जलवा है। तब पूरे भारत में ब्लैकआउट ये ग्लोबल हेडलाइन बनती थी और आज भारत की सोलर पावर कैपेसिटी के चर्चे होते हैं।
0: जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी।
2: जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकाइची ने भारत के विकास और वैश्विक स्तर पर बढ़ती पहचान में श्री मोदी के योगदान की सराहना की। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे ने श्री मोदी को हमारे समय का अवतार बताया और कहा कि उन्होंने भारतीयों में अधिक आत्मविश्वास और गर्व की भावना जगाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने श्री मोदी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार डी वेवर ने भी श्री मोदी को बधाई दी है और भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू ने इस उपलब्धि को ऐतिहासिक बताया और लोकतंत्र में लगातार 25 वर्ष के नेतृत्व को एक दुर्लभ उपलब्धि करार दिया। बोत्सवाना के राष्ट्रपति डुमा बोको ने भी श्री मोदी को बधाई देते हुए भारत के लोगों के प्रति उनके समर्पण और सेवा की सराहना की और दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता की उम्मीद की। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन इस माह 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। आईएमसी 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 से पहले नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में वैश्विक मोबाइल संचार प्रणाली संगठन जीएसएमए के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने विकासशील देशों के लिए प्रौद्योगिकी और डिजिटल सेवाओं को सस्ता और सुलभ बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी के लिए शांति और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए मुक्त, खुले और नियम आधारित वैश्विक समुद्री व्यवस्था का आह्वान किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित सागर मंथन द ग्रेट ओशंस डायलॉग के लिए अपने संदेश में ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पिछले एक दो दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा हैं और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं।
2: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि चार जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई, जिसमें तीन भारतीय नागरिक थे। उसमें से एक भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि अब अंतहीन युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है। प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों के साथ भारत की बातचीत की रूस और यूक्रेन दोनों ने सराहना की है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान देने की भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस इस संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सुझाव देने की भारत की तत्परता की सराहना करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यात्रा निरंतर समर्पण और प्रतिबद्धता से जुड़ी रही है। सेवा और सुशासन के सिर दृष्टिकोण के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये प्रयास लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से इस दृष्टिकोण को हकीकत में बदला गया है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में पेरिस में आयोजित COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की थी। यह एक वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर ऊर्जा की पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को बढ़ाना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के शुभारंभ के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस गठबंधन का उद्देश्य सौर ऊर्जा को सस्ता, भरोसेमंद और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध कराना है।
4: This alliance is so important. We want

0: To bring solar energy into our lives and homes by making it cheaper, more reliable, and easier to connect to grid. We will collaborate on research and innovation. We will share knowledge and exchange best practices. We will cooperate on training. We will partner with other international initiatives on renewable energy.
1: अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक आशीष खन्ना ने आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए कहा कि आईएसए प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और भारत की वैश्विक स्तर पर नेतृत्व करने की क्षमता को दर्शाता है।
2: माननीय प्रधानमंत्री ने 2018 में स्थापना दिवस पर 1000 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था, अगर हम 2026 में देखें जब दुनिया 3000 गीगावाट कर चुकी है, तो उनकी दूरदर्शिता सही मायने में दिखलाता है।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बन चुका है। वर्तमान में 129 देश इसके सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं। भारत के नेतृत्व में आईएसए का उद्देश्य लोगों तक ऊर्जा की पहुंच को बेहतर बनाने के साथ साथ दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को काफी कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गई है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी।
4: After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial conditions,
5: बदलते आर्थिक तथा वित्तीय हालात, हाल के घटनाक्रमों और भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा के बाद मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से प्रमुख नीतिगत रेपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी दर 5.25%, जबकि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर और बैंक दर 5.75% कर दिए गए हैं।
4: एंड द बैंक रेट टू 5.75%।
3: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है और इसे अनुसूचित बैंकों की सूची से हटा दिया है। आरबीआई ने कहा है कि इस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ईएफटीए समृद्धि शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भारतीय और ईएफटीए के अधिकारियों, उद्योगपतियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन और जापान के केन्सो सुआई को देने की घोषणा की गई है। एक रिपोर्ट।
6: स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने उन्हें असममित कार्बनिक संश्लेषण में नॉन लीनियर प्रभावों और ऑटो कैटेलिसिस की खोज के लिए ये सम्मान देने की घोषणा की है। उन्होंने रसायन विज्ञान में दर्पण प्रतिबिंब चुनने की प्रक्रिया पर काम किया। दोनों वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान की करीब 100 वर्ष पुरानी गुत्थी सुलझाई है। उन्होंने बताया कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में एक दूसरे का प्रतिबंध दर्पण प्रतिबिंब जैसे दो अणुओं में से सिर्फ एक ही के रूप कैसे बनाया जा सकता है। ये खोज दवाओं सहित कई तरह से रसायन बनाने में अहम भूमिका निभा सकती है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित किए जाएंगे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का अपना सपना अवश्य पूरा करेगा। उन्होंने सरकार प्रमुख के रूप में लगातार 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। भारत ने काला सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा की। कहा, भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए दोनों देशों से बातचीत कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में योगदान के लिए भारत की तत्परता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे। स्वीडिश रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने वर्ष 2026 का रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार फ्रांस के हेनरी कागन

0: growth rate at 7.1% for current financial year. Prime Minister to inaugurate India Mobile Congress in New Delhi tomorrow. French-Japanese scientist duo win 2026 Nobel Prize in Chemistry. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नजरिया साज पॉलिसियों और सख्त मेहनत के जरिए साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब जरूर पूरा करेगा। उन्होंने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। भारत ने बहरे अस्वद खित्ते में कमर्शियल जहाजरानी पर होने वाले हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि वो कयाम अमन के लिए रूस और यूक्रेन के साथ रابطे में हैं। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने में तआवुन के लिए भारत की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। आरबीआई ने मौजूदा माली बरस के लिए जीडीपी की शरह तरक्की 7.1% रहने का भी तखमीना लगाया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे। फ्रांस और जापान के साइंसदानों की जोड़ी हेनरी बी कैगन और केंसो साय ने मोलिक्यूलर अदम तवाजुन के राज को हल करने पर 2026 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम जीता है। और पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल इस माह के आखिर में जापान में शुरू होने वाले एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय दस्ते के परचम बरदार होंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब नजरिया साज पॉलिसियों और मेहनत के जरिए जरूर पूरा करेगा। आज नई दिल्ली में विकसित भारत संकल्प सभा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी तमाम शहरियों के मसाइल के हल पर मरकूज है।
2: सबका साथ सबका विकास, यही मेरे लिए सुशासन का आधार रहा है। समस्या सबकी है तो समाधान भी सबके लिए होना चाहिए, और इसलिए हमने सुशासन को सैचुरेशन से जोड़ा। सैचुरेशन यानी हर लाभार्थी जुड़े, कोई पात्र छूटे नहीं, कोई हकदार पीछे रहे नहीं, और किसी के हक पर कोई डाका न डाल सके।
1: वजीर आजम ने कहा कि एक वक्त था जब भारत का तज़किरा कमजोर पॉलिसी के लिए किया जाता था, लेकिन अब दुनिया भारत की बढ़ती हुई ताकत और मुश्किलात का मुकाबला करने की उसकी सलाहियत के बारे में बात कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 12 बरस के दौरान हालात में यकसर तब्दीली आई है। जनाब मोदी ने कहा कि पहले भारत की दरामदात बढ़ाने की कोशिशें की जाती थी, जबकि आज भारत बरामदात के नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि इस तरह की तब्दीली उसी वक्त मुमकिन होती है जब नीयत दुरुस्त और वाजे हो, नीज पॉलिसियां बेहतर तौर पर वजा की गई हों।
2: देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए देश के लिए मेरा दायित्व भी सबसे अधिक है, और मैं हृदय से ये मानता हूं कि देश के हर नागरिक का मुझ पर सबसे बड़ा हक है। ये 25 वर्ष का जनविश्वास बहुत बड़ी पूंजी है, और ये पूंजी देश की है। मां भारती की हर संतान इस पूंजी की अधिकारी है।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है, और इस अंथक अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम तज़किरा कर रहे हैं कि कैसे बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA जैसी पहलों के जरिए इस विजन पर अमल दरामद किया जा रहा है।
3: भारत और फ्रांस ने नवंबर 2015 में COP21 माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के दौरान बैनुल अक़वामी शमसी इत्तेहाद ISA का मुश्तरका तौर से आगाज किया था। यह आलमी बैन हुकूमती तंजीम तवानाई तक रसाई, तवानाई की सलामती और पायदार तरक्की के लिए शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फरोग देने के लिए वक्फ है। ISA शमसी तवानाई से मुतालिक बैनुल अक़वामी इश्तराक के लिए एक आलमी प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आज 129 रुकन ममालिक शामिल हैं।

0: आज़म नरेंद्र मोदी के विजन की अक्कासी करता है और माहौलियात के लिए साजगार तवानाई, रोजगार और तवानाई की सलामती के लिए मुल्कों को यकजा करने की भारत की सलाहियत का मजहर है। भारत की क़यादत में ISA का मकसद सिर्फ तवानाई तक रसाई को बढ़ाना नहीं बल्कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में नुमाया कमी लाना भी है। आकाशवाणी न्यूज़ दिल्ली से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल होने को एक सुनहरा और तारीखी दिन करार दिया। आज गुड़गांव में विकसित भारत संकल्प सभा सेवा ज्योति यात्रा से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में मुल्क में कई अहम काम अंजाम दिए गए हैं जिनमें दफ़ा 370 की मनसूखी, नक्सलिज्म का खात्मा और मुल्क के बुनियादी ढांचे को आला तरीन सतह तक पहुंचाना शामिल हैं।
2: आज गरीब से गरीब घर में जन्मे हुए एक व्यक्ति ने अपने गुणों के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर और करोड़ों करोड़ों लोगों को साथ में लेकर लगातार 25 साल मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाया है और वो व्यक्ति है हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हुकूमत के सरबराह के तौर पर 25 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करने वाले आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। नाइजीरिया, डोमिनिका, बेल्जियम, फिलीपींस, भूटान और बोत्सवाना के रहनुमाओं की जानिब से मौसूल होने वाले पैगामात का जवाब देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने इन मुल्कों के साथ भारत की शराकत दारी और ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने पिछले एक दो दिन के दौरान बहरे अस्वद के इलाके में होने वाले सिलसिलावार हमलों की मजम्मत की है। नई दिल्ली में सहाफियों को जानकारी फराहम करते हुए वजारत खारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमलों से कमर्शल जहाजरानी को खतरा लाहिक होता है और समंदरी शोबे से वाबस्ता अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ती हैं।
3: कल से लेकर आज तक हमने देखा है कि 4 जहाजों पर अटैक हुई है। इस हमले की हम घोर निंदा करते हैं। इससे हमारे जो वाणिज्य की नौ परिवहन है, साथ में जो हमारे नाविक समुदाय के लोग हैं, उनको खतरे के दायरे में लाया जा रहा है। पहला जहाज MV रायोद मामादोव, ये भी ब्लैक सी में इस पर अटैक हुई जिसमें 3 भारतीय नागरिक थे। उसमें से 1 भारतीय नागरिक को चोट पहुंची और उनको वहां पर अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है।
1: कैप्टन स्मिथ मच्छर की सेहत के बारे में वजारत खारिजा के तर्जुमान ने बताया कि वो इस वक्त अबू जहबी में हैं और तेजी से सेहतयाब हो रही हैं। उनकी सेहत में मुसलसल बेहतरी आ रही है। रूस की फौज में मौजूद भारतीय शहरियों के बारे में तर्जुमान ने बताया कि दस्तियाब मालूमात के मुताबिक 259 भारतीय शहरियों को रूस की मुसल्ला अफवाज में भर्ती किया गया है। भारत की कोशिशों के नतीजे में इनमें से 139 भारतीय शहरियों को कबल अज वक्त फौज से फारिग कराया जा चुका है। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने के लिए भारत की आमादगी के लिए उसके तई तशक्कुर का इजहार किया है। क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि मॉस्को इस बहरान के पुरमन हल के लिए भारत की तजावीज पेश करने की आमादगी की सताइश करता है। उन्होंने ये बात मॉस्को में भारत की जानिब से यूक्रेन तनाजे के पुरमन हल के लिए 3 हिस्सों पर मुश्तमिल तजवीज पेश करने से मुतालिक मीडिया के सवालों के जवाब में कही। उनका ये बयान यूक्रेन के वजीर खारिजा एंद्री सिबिहा की जानिब से भारत की तजवीज को 4 पेशकशों में वसी तर बताने के बाद सामने आया है। भारत के अलावा तुर्की, मिस्र और अमरीका ने तजावीज पेश की हैं। रूस यूक्रेन जंग अब अपने 5वें साल में है और इसकी वजह से हजारों शहरी हलाक जबकि लाखों बेघर हुए हैं। भारत ने मुसलसल तनाजे के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया है। तकरीबन 3.5 साल के वक्फे के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने आज महंगाई में इजाफे को रोकने के लिए अपनी अहम पॉलिसी शरह में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। यह फैसला आलमी और जुग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल के दरमियान किया गया है। दो माही मालियाती पॉलिसी का ऐलान करते हुए RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने मुत्तफिका तौर पर रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स के इजाफे का फैसला किया है। RBI ने पिछली मरतबा फरवरी 2023 में रेपो रेट में इजाफा किया था जब इसमें 0.25% का इजाफा करके इसे 6.5% किया गया था। وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے یشو بھومی میں انڈیا موبائل کانگریس IMC کے 10th edition کا افتتاح کریں گے۔ یہ کانگریس ٹیلی مواصلات ڈیجیٹل

डिजिटल कनेक्टिविटी और तकनीकी इख्तिरा के शोबों में भारत की नुमाया पेशरफ्त को उजागर करेगी। इसके अलावा ये आलमी सतह पर तआवुन, सरमायाकारी और मालूमात के इश्तराक के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम करेगी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का मौजू है लामहदूद तौसी, जो भारत की डिजिटल जिद्दत तराजी, अगले सिलसिले की कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी पर मबनी इकतसादी तरक्की की बढ़ती सलाहियतों की अक्कासी करता है। चार रोजा ये प्रोग्राम आज से शुरू हुआ है और इसे टेलीमुवासलात का महकमा और सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुश्तरका तौर पर मुनक्किद कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC 2026 से कबल आज नई दिल्ली के सेवा तीर्थ के मकाम पर मोबाइल के मुवासलाती निज़ाम से मुतालिक एसोसिएशन GSMA के बोर्ड मेंबरान से बातचीत की। GSMA एक आलमी तंजीम है जो मोबाइल के इको निज़ाम को यकजा करती है। मोबाइल ऑपरेटर्स और मोबाइल इको निज़ाम और इससे मुंसलिक सनतों की तमाम तंजीमों की नुमाइंदगी करती है। बातचीत के दौरान वज़ीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि तकनीक को सबकी शमूलियत और पायदार तरक्की का एक आला बनना होगा। डिजिटल और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते हुए चैलेंज का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस मसले के लिए टेक्नोलॉजी पर मबनी हल तलाश करने की जरूरत है। साल 2026 का केमिस्ट्री का नोबेल इनाम फ्रांस के केमिस्ट हेनरी बी कैगन और जापानी केमिस्ट केंसो साई को नामियाती केमिस्ट्री में गैर खत्ती असरात और ऑटोकैटालिसिस से मुतालिक उनकी अहम दरियाफ्तों के लिए दिया गया है। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने आज कहा कि कैगन और साई ने एक सदी पुराने इस मामले को हल किया है कि मॉलिक्यूलर अदम तवाजुन, जिसे होमो काइरैलिटी कहा जाता है, फितरत में खुद ब खुद किस तरह पैदा हो सकता है। नोबेल कमेटी के मुताबिक केमिस्ट रिवायती तौर पर तजर्बागाह में मॉलिक्यूल्स की तैयारी के दौरान एक दूसरे के आईने में नजर आने वाली शक्लों यानी अक्स नुमा मॉलिक्यूल्स की बराबर मकदार हासिल करते हैं। दोनों नोबेल इनाम याफ्ता अफराद 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर की इनामी रकम मुश्तरका तौर पर हासिल करेंगे। भारत के बराह रास्त नशर होने वाली तकारीब के शोबे में गुज़श्ता साल 44% से ज़ायद की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुज़श्ता साल मुल्क भर में ऐसी 34,000 तकारीब मुनक़िद की गईं। इत्तला'आत और नशरियात के वजारत में सेक्रेटरी चंचल कुमार ने आज नई दिल्ली में मुनक़िदा बराह रास्त नशर होने वाली तकारीब की तरक्की से मुतालिक सेल की 5वीं मीटिंग में अपने खिताब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये शोबा 1 करोड़ से ज़ायद अफराद के रोज़गार का जरिया है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में कल शदीद बारिश की पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और पंजाब में अगले 2 से 3 दिन तक गरज चमक और तेज हवाओं के चलने का इम्कान है। पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल एशियन पैरा गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में परचम बरदार की हैसियत से भारतीय खिलाड़ियों की कयादत करेंगे। एशियन पैरा गेम्स जापान के आईची नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक मुनक़िद होंगे। इसमें एशिया भर से खिलाड़ी खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत ने साल 2014 से 2023 के दरमियान सोने के 2 और कांसे के 4 तमगों समेत कुल 6 एशियन पैरा गेम्स तमगे जीते हैं। और पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल ने 2018 से 2023 के दरमियान चांदी का 1 और कांसे का 1 तमगा समेत कुल 2 एशियन पैरा गेम्स तमगे हासिल किए हैं। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नजरिया साज पॉलिसियों और सख्त मेहनत के जरिए साल 2047 तक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का अपना ख्वाब जरूर पूरा करेगा। उन्होंने हुकूमत के सरबराह के तौर पर अवामी खिदमत के 25 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। भारत ने बहरे अस्वद खित्ते में कमर्शियल जहाजरानी पर होने वाले हमलों की मजम्मत की है। भारत ने कहा है कि वो कायम अमन के लिए रूस और यूक्रेन के साथ राबते में है। रूस ने यूक्रेन तनाजे को हल करने में तआवुन के लिए भारत की पेशकश पर शुक्रिया अदा किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा करते हुए इसे 5.5% कर दिया है। RBI ने मौजूदा माली बरस के लिए GDP की शरह तरक्की 7.1% रहने का तखमीना लगाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगे और पैरालंपिक चैंपियंस प्रमोद भगत और भाविना पटेल इस माह के आखिर में जापान में शुरू होने वाले एशियाई पैरा गेम्स में भारतीय दस्ते के परचम बरदार होंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Çakçaka Müşehri. ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: नमस्कार श्रोताओं, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे हम VBG राम जी भी कहते हैं, वो ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आजीविका की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और इसके तहत ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक काम करने की इच्छा होने पर एक वित्तीय वर्ष में 125 दिन तक रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है और ये व्यवस्था पहले की मनरेगा की 100 दिन की रोजगार गारंटी का स्थान लेती है और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू है। इस संबंध में बातचीत करने के लिए, इस योजना के बारे में समझने के लिए, इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसका उद्देश्य क्या, तमाम बातें हम करेंगे। हमारे साथ में हैं आज ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल जी।
1: सबसे पहले तो हम ये आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे VBG राम जी भी कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर आप बताएं तो बेहतर होगा।
2: 1 जुलाई 2026 से विकसित भारत
3: ऐतिहासिक एक्ट जो बना हुआ है वह पूरे देश में लागू हो चुका है। एक ही दिन में भारत देश के सारे ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत जी राम जी के सारे प्रावधान जो है वो लागू हो चुके हैं। उसके तहत अब तक पिछले 3 महीनों में लगभग 36 करोड़ से भी ज्यादा मानव दिवस सृजित हुए हैं, जिसे कि हम परसेंटेज कहते हैं। लगभग 20 लाख से ज्यादा वर्कसाइट्स पर जो है विकसित भारत जी राम जी के काम चल रहे हैं और 2,34,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में ये जो काम है वो किए जा रहे हैं। 2.99 ऑलमोस्ट 3 करोड़ लोगों ने, जिन्होंने रोजगार मांगा, उनको 15 दिन के अंदर अंदर यह रोजगार उपलब्ध किया गया है और लोगों की रोजगार की और आजीविका की कई सारी ये जो डिमांड्स है उनको तभी के तभी फुलफिल किया गया है। तो एक तरीके से 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी का राष्ट्रव्यापी जो शुभारंभ हुआ है उसमें किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आई और बहुत ही स्मूथली विकसित भारत जी राम जी लागू हो चुका है और सारे ग्रामीण उसका बहुत सही तरीके से 125 दिन की जो बढ़ी हुई रोजगार की गारंटी है उसका यूज कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा, अब उसमें आगे जाते जाते कई सारे पहलू जो है हम लगा रहे हैं, जैसे कि नए कामों की जो सूची अभी अभी भारत सरकार ने नोटिफाई की।
1: रोहिणी जी, इस मिशन का उद्देश्य रखा गया था कि केवल रोजगार ही उपलब्ध न कराया जाए बल्कि कई अन्य काम भी हो, जैसे कि गांवों में जल संरक्षण हो, जल सुरक्षा हो, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिले, आजीविका से जुड़े कार्यों को भी बढ़ावा मिले और साथ ही जलवायु या फिर अत्यधिक मौसम से बचाव जैसी परिसंपत्तियों का निर्माण भी किया जाए। इस दिशा में कैसे प्रयास किए जा रहे हैं और अब तक जो सफलता प्राप्त हुई उसके बारे में बताएं।
3: विकसित भारत जी राम जी का अगर आप नाम ही देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। मतलब यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम जो है वो केवल रोजगार की बात नहीं करता है, वो रोजगार के ऊपर जाकर आजीविका की बात करता है, जिससे कि लोगों को केवल मजदूरी, केवल रोजगार ना मिले परंतु स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध हो। और इसी को रिफ्लेक्ट करता है हमारी जो अनुमेय कामों की सूची है। अनुमेय कामों की सूची में जैसे आपने कहा, टोटल 375 काम जो है वो अनुमेय माने गए हैं विकसित भारत जी राम जी में, जिसकी सूची जारी हुई। इन 375 कामों में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को प्राथमिकता दी गई है तो वह है जल संरक्षण, वाटर सिक्योरिटी। जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, जल है तो कल है, कैच द रेन, ऐसे कई सारे कैंपेन्स जो है भारत सरकार चलाता है जिससे कि हमारे किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण विभाग के लिए, हमारे शहरी विभागों के लिए पानी की कमी ना रहे, वाटर सिक्योरिटी बनी रहे। इंडियाज वाटर विजन 2047 भी यही कहता है कि विकसित भारत बनाने के लिए हमें पहले वाटर सिक्योर भी होना पड़ेगा। इसीलिए जल संधारण के जो कार्य है उसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। आप देख सकते हैं कि 128 ऐसे काम है 375 में जो कि जल संधारण के कार्य है, वाटर सिक्योरिटी के कार्य है, और उसके बाद जो है ग्रामीण अवसंरचना के कार्य है, और जो 111 ऐसे काम है जो ग्रामीण अवसंरचना के है, जिसमें कि सारी बुनियादी ढांचे में जो भी जरूरतें हैं ग्रामीण विभागों की, रोड हो गए, पुल पुलिया हो गया, खेत सड़क हो गए, किसी स्कूल की लैबोरेटरी की बिल्डिंग हो या क्लासरूम बिल्डिंग हो या टॉयलेट्स हो या फिर आंगनवाड़ी की बिल्डिंग हो, जो भी बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ग्रामीण विभागों में है वह सारा 111 कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों में आता है। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैटेगरी ऐड की गई है जिसे कि हम आजीविका मूलक गतिविधियां कहेंगे, जिसमें कि 98 काम उसमें शामिल किए गए हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई बार एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना जब करना पड़ता है तो उससे निपटने के लिए भी 38 ऐसे काम है जो कि इसमें ऐड किए गए हैं।
4: रोहिणी जी, अभी आपने 128 कार्यों का

0: जिक्र किया जल सुरक्षा के अंतर्गत, तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट की जो स्थिति है थोड़ी सी ऐसी नजर आती है कि वहां पर काम करने की गुंजाइश बहुत ज्यादा, साथ ही कृषि की जरूरतें भी हमारे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रहती हैं कि हम ऐसी व्यवस्था करें कि कृषि को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल जाए। तो इनका जो निर्धारण किया गया है 128 कार्यों का, इनके पीछे क्या यही सोच रही है सरकार, कुछ और भी प्लान कर रही है जिससे लोगों को और भी लाभ मिलेगा?
1: बिल्कुल सही कहा आपने, जब हम पानी की बात करते हैं तो उसके सेंट्रल स्थान पे हमारे फार्मर्स हैं, हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो उनको अपने एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा पानी पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, और इसलिए किसान ही और जलवायु और जल सुरक्षा ये दो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई बातें हैं। इसीलिए इसमें किसानों को केंद्र स्थान में रखकर ये बात की गई है कि जल सुरक्षा के कार्य जो है उनको प्राथमिकता दी गई है। और किसानी के साथ साथ हमने यह भी देखना होगा कि हम जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस जिसे लचीलापन कहते हैं वो करने के लिए, या फिर ड्रॉट प्रूफिंग की बात, इस वर्ष एल नीनो के प्रभाव की वजह से कुछ एरियाज हमारे देश में एडवर्सली अफेक्ट होने की संभावना है, कुछ एडवर्सली अफेक्ट हो भी गए हैं, तो ड्रॉट प्रूफिंग की जो बात है, क्लाइमेट रेजिलियंस की जो बात है, यह भी हमारे पानी के संबंधित कार्य ऐड करते समय यह भी हमारे केंद्र स्थान में रहा है, सोच में रहा है, और इसीलिए पानी के कामों को जो है प्राथमिकता दी गई है।
0: आपने ये जिक्र किया था कि मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए 111 कार्यों का प्रावधान किया गया है, तो इसमें सौर स्ट्रीट लाइट की बात है, स्वास्थ्य केंद्रों की बात है, पुस्तकालय, स्कूलों के अतिरिक्त कक्षाओं या फिर अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं को भी इन कार्यक्रमों से जोड़ा जाने की बात कही जा रही है। तो ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में ये जो बदलाव लाने की अपेक्षा है, आपको लगता है कि हम इस दिशा में जो प्रयास कर रहे हैं वो इनके माध्यम से और तेजी से बढ़ेंगे?
1: भारत का ग्रामीण क्षेत्र जो है वो बहुत एस्पिरेशनल है, बहुत ज्यादा उनको और भी अपने अवसंरचना को मॉडर्नाइज करने का एक एस्पिरेशन जो है हमारे गाँव के लोगों में है, और इसीलिए हमने उनकी जरूरतों को पहचानना होगा। पहले की तरह हम ये नहीं कह सकते कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वो काम तो केवल शहरी विभाग में ही होने चाहिए, ग्रामीण विभागों में भी जब वेस्ट कलेक्शन होता है तो उसका सेग्रीगेशन करके उस सॉलिड वेस्ट को सही तरीके से जो है मैनेजमेंट करना, यह एक जरूरत बन चुकी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण विभागों में भी अब बहुत ही ज्यादा अलग अलग टाइप की गतिविधियां होती है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हमारी बदलती हुई आवश्यकताओं को समझें, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें ग्रामीण अवसंरचना में कई ऐसे काम ऐड किए गए हैं जो कि हमारे बदलती हुई ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी केटर करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्कुलर इकोनॉमी, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसका जब प्रसंस्करण होता है, उसका जब प्रोसेसिंग होता है, तो वह उसके लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इसलिए ग्रामीण विभागों की बदलती हुई इन जरूरतों को केटर करने के लिए हमने कई सारे ऐसे मॉडर्न कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है वो इसमें ऐड किए हैं, और जो ग्रामीण विभाग को न केवल मूलभूत कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा परंतु ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत ज्यादा बूस्ट करने की जो है ताकत रखता है।
0: ग्रामीण क्षेत्रों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर विकसित ग्राम पंचायत का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है। आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत का एक कॉन्टेक्स्ट लेकर के हम चलते हैं या चल रहे हैं, ये कैसे हमारे लिए लाभप्रद होगा इन योजनाओं को लेकर के?
1: विकसित भारत जी राम जी जब हम कहते हैं तो उसकी शुरुआत में ही विकसित भारत आता है
0: जी।
1: ऑलमोस्ट 60-65% हमारी आबादी निखिल जी आज भी ग्रामीण विभागों में रहती है। विकसित भारत की कल्पना विकसित गांव की कल्पना किए बिना की ही नहीं जा सकती, इसीलिए विकसित ग्राम पंचायतें जो है वो हमारे विकसित भारत जी राम जी के ऑब्जेक्टिव्स में कोर ऑब्जेक्टिव रहा है। और इसीलिए जब हम 375 अनुमेय कामों की बात करते हैं विकसित भारत जी राम जी में, तो यह बहुत जरूरी है कि इन कामों को विकसित ग्राम पंचायत प्लान के माध्यम से नियोजन किया जाए इन कामों का, और इसीलिए विकसित ग्राम की कल्पना जब तक हम नहीं करते तब तक हम विकसित ग्राम पंचायत प्लान नहीं बना पाएंगे। इसीलिए विकसित भारत जी राम जी में पहले तो विकसित गांव की कल्पना की गई है, और विकसित ग्राम पंचायत बनाने के लिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने की बात की गई है, जिन प्लान्स में ये 375 टाइप के काम भी आएंगे।
0: रोहिणी जी, आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे के लिए 98 काम निर्धारित किए गए हैं, और इसका जो हिस्सा है पिछले ढांचे में लगभग वो 1.1% था, अभी बढ़कर वो 26% हो गया। तो इस बड़े बदलाव से ग्रामीण रोजगार को स्थायी आय और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में बदलने की किस तरह की संभावना आपको नजर आती है?
1: जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, यह एक्ट या फिर यह प्रोग्राम विकसित भारत जी राम जी का जो प्रोग्राम है वह केवल रोजगार देने वाला प्रोग्राम नहीं है, यह रोजगार के आगे जाके आजीविका की बात करता है, और इसीलिए पहले के प्रोग्राम में एमजी नरेगा में लाइवलीहुड के बारे में बात ही नहीं की गई थी, अगर थी तो भी केवल एक या दो बहुत ही कम 1% काम जो थे वो लाइवलीहुड एक्टिविटीज में आते थे। विकसित भारत जी राम जी वही परसेंटेज जो है अब वो 26% हो गया है। इससे पता चलता है कि बहुत बड़े पैमाने पर आजीविका

0: मूलक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो है विकसित भारत जी राम जी में इन अनुमेय कामों को शामिल किया गया है। मैं यह जरूर बताना चाहूंगी कि ये काम केवल नंबर्स नहीं है। जैसा मैंने कहा कि हमारे किसान जो है वो मोस्टली रूरल एरियाज में रहते हैं, ग्रामीण विभागों में रहते हैं, और किसान कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होते हैं, धान्य होता है या फिर फल होते हैं, सब्जियां होती है, ये सारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाना एक बात है, अच्छा भाव दिलाना एक बात है, परंतु कई बार इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को अगर सही तरीके से उसका भंडारण किया जाए, स्टोरेज किया जाए, सही तरीके से उसका प्रसंस्करण किया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए, या उसमें मूल्य संवर्धन किया जाए, उसमें वैल्यू एडिशन की जाए, तो हमारे किसानों की आय कई गुना बढ़ सकती है। और इसीलिए हमने लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में खाद्य प्रसंस्करण हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज हो, या फिर उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का प्रोसेसिंग हो, ऐसे कई सारी चीजें हमने इसमें ऐड की है। अन्नदाताओं से अगर हम महिलाओं तक जाए, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, गांव में ये दीदियां रहती है, लखपति दीदियां बन चुकी है, करोड़पति बनने की ओर अग्रेसर है, तो ये हमारी जो दीदियां हैं वह भी बहुत एंटरप्राइजिंग है, परंतु उनके लाइवलीहुड एक्टिविटीज को अगर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत पड़ती है तो ऐसे काम भी अब हमने जो है विकसित भारत जी राम जी में अलाउ किए हैं। जैसे कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप अगर कोई एक एंटरप्राइज करना चाहता है जिसके लिए कि उन्हें वर्कशेड की जरूरत है, तो अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से वह वो वर्कशेड बना सकती है। कोई एसएचजी चाहता है कि हम एक नर्सरी रन करें जिससे कि प्लांटेशन को भी बढ़ावा मिले, वह भी कर सकता है। तो हमारी दीदियां, हमारे युवा और हमारे अन्नदाता, इन सभी के आजीविका के जरूरतों को केटर करने का जो सामर्थ्य इन 98 कामों में है जो कि हमारे लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि नारी शक्ति और युवा शक्ति से संबंधित 36 कार्यों को इनमें शामिल किया गया है। तो रोहिणी जी, ये जो प्रावधान किए जा रहे हैं, तो जैसा कि आपने भी कहा, तो क्या इनका उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना है या फिर इनके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को कौशल, उद्यमिता और दीर्घकालीन आजीविका से भी जोड़ने की व्यापक रणनीति बनाई गई है?
0: बिल्कुल सही कहा, 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो मिनिमम गारंटी दी गई है कि 125 दिन रोजगार मिलेगा, परंतु विकसित भारत जीराम जी यह कहता है कि हमारे दीदियों को या फिर हमारी महिलाओं को या फिर अन्नदाताओं को केवल 125 दिन का अकुशल रोजगार लेना ही उनका एस्पिरेशन नहीं है। वह चाहते हैं कि उनको दीर्घकालिक एक आजीविका के अवसर मिले, और वो करने की क्षमता जो है विकसित भारत जीराम जी के कार्यों में है। जैसे कि मैंने अभी कहा, हमारे ग्रामीण विभागों की बदलती हुई जरूरतें अगर आप देखें, तो अगर एक पैकेजिंग और ग्रेडिंग यूनिट भी अगर हम गांव में बनाएं जो कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन के लिए काम आ सकता है, मिनी फ्लोर मिल्स बनाए जाए, मार्केट यार्ड्स बनाए जाए, डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, कई विभागों में भारत दुनिया का बहुत बड़ा मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और अगर हमारे पास मिल्क चिलिंग प्लांट्स अगर बन जाए, क्लस्टर लेवल पे भी बन जाए, तो भी हमारे युवाओं को, महिलाओं को और अन्नदाताओं को यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है फॉर टू गेन सस्टेनेबल काइंड ऑफ लाइवलीहुड। इसीलिए मुझे लगता है कि रोजगार से आगे बढ़ करके दीर्घकालिक आजीविका के लिए ये लाइवलीहुड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर महिला, युवा और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे।
1: रोहिणी जी, इसमें एक चीज और जोड़ना चाहेंगे कि नई अनुसूची में दिव्यांगजनों की सुगम्यता, नवीकरणीय ऊर्जा, अपशिष्ट से संपदा और ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जैसे विषय भी शामिल किए गए, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, और सरकार इन विषयों पर लगातार ध्यान देती रही है। तो क्या ये संकेत इस बात का भी है कि बुनियादी ढांचे की योजना अब केवल पारंपरिक निर्माण कार्यों तक सीमित न रह करके अधिक समावेशी बनने जा रही है और साथ ही पर्यावरण अनुकूल बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है, खासतौर पर ऐसे समय में जब हम एक टारगेट सेट करके बैठे कि हमें बहुत ही जल्दी अपने यहाँ से कार्बन उत्सर्जन को कम करना है?
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी रहता है प्रोजेक्ट लाइफ के बारे में, आपने सभी ने, हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा। तो हमारे लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिसमें कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करें, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि रिन्यूएबल एनर्जी को, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे, इसीलिए ये सोलर स्ट्रीट लाइट्स हो गए या फिर और भी कई रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य जो है वो विकसित भारत जी राम जी में हमने शामिल किए हैं। तो यह एक अलग डायमेंशन जो है वो विकसित भारत जी राम जी में ऐड हुआ है। समावेशी होने के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अंत्योदय का जो कॉन्सेप्ट है, कोई भी पीछे ना छूटे, इसीलिए विकसित भारत जीराम जी में भी यह कहा गया है कि जो भी इंडिविजुअल एसेट्स होते हैं, जैसे कि कैटल शेल्टर हो गया या कोई खेत तालाब हो गया, जो भी इंडिविजुअल एसेट्स इस योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे, उनमें हमारे समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस है, जो अंत्योदय वाले सेक्शंस है, उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की बात की गई है। और जो भी एसेट्स बनेंगे वो सारे डिफरेंटली एबल फ्रेंडली होने के बारे में भी हमने जो है प्रावधान रखे हैं।
1: रोहिणी जी, जैसा कि आपने भी बताया, तो मैं आपसे यहाँ पर यह जरूर पूछना चाहूंगा, जो वास्तव में सबसे कमजोर परिवार तबके के लोग हैं या अंतिम छोर तक के वाले जो लोग हैं, वो इन परिसंपत्तियों या रोजगार के अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए, अपना चयन सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकते हैं?
0: जो बहुत ही वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उनको विकसित भारत जीराम जी के प्लानिंग में केंद्र स्थान पर रखने की बात की गई है। अगर आप विकसित ग्राम पंचायत प्लान का जो एक अभी बहुत ही हाल ही में विकसित ग्राम पंचायत प्लान का एक फ्रेमवर्क जो है वो इशू किया गया और राज्यों के साथ ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग की, उसमें आप देख सकते हैं कि विकसित ग्राम पंचायत प्लान जब बनेगा तब जब यह एक बॉटम अप प्लानिंग अप्रोच होगा, ग्राम पंचायत के लोग ग्राम सभा के माध्यम से एक साथ बैठेंगे और चर्चा के माध्यम से पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल के माध्यम से वह यह तय करेंगे कि हमारे गांव में कौन कौन से कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। उसी के साथ जब बात आएगी इंडिविजुअल बेनिफिट्स की तब जो है ग्राम सभा ही यह सूची बनाएगा कि ऐसे कौन कौन से पिछड़े हुए तबके के लोग हैं जिनको की यह इंडिविजुअल एसेट्स देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनकी सूची जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से सभी के संज्ञान के लिए वहां पर पब्लिक प्लेस में उसे डिस्प्ले किया जाएगा और जिनको भी यह बेनिफिट्स चाहिए वो उस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं या फिर उनको अगर किसी को कुछ आपत्ति भी है तो भी वो उसमें दर्ज कर सकते हैं। पूरी तरीके से एक पारदर्शी और लोगों को केंद्र स्थान पर रखने वाली विकसित ग्राम पंचायत प्लान योजना बनाने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी कर दिया जा चुका है और आपने सुना होगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर पूरे देश में जो ग्राम सभाएं हुई उसमें पहला डिस्कशन विकसित ग्राम पंचायत प्लान को लेके वह भी हो चुका है।
1: रोहिणी जी, ये जो विकसित भारत जी राम जी योजना है इसमें प्रत्येक कार्य को विकसित ग्राम पंचायत योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर शुरू करने और ग्राम सभा से अनुमोदित करने की व्यवस्था की गई है। अगर व्यवहारिकता को हम समझें तो स्थानीय जरूरतों और तकनीकी रूप से व्यवहार परियोजनाओं के बीच में संतुलन बनाने के लिए क्या किया जा रहा है और खासकर ऐसी जगह पर जहां पर तकनीकी क्षमताओं का ये कहें कि अभाव है या फिर वहां पर सीमित है वो व्यवस्थाएं।
0: मंत्रालय या भारत सरकार जब भी कोई तकनीक या टेक्नोलॉजी लेकर आता है तो उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव ये होता है कि यह टेक्नोलॉजी लोगों के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए, प्रोसेसेस को फास्ट करने के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी एक्सक्लूजन या ना कि किसी प्रॉब्लम का वो द्योतक बननी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी इज नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज टू मेक द पीपल्स लाइव्स इजियर। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईज ऑफ लिविंग जो है लोगों की उसको बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वो मंत्रालय करता आ रहा है बहुत सारे एस्पेक्ट्स में। इसमें विकसित ग्राम पंचायत प्लान बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है वह 2 प्रकार से किया जा रहा है। मैं यह कहूंगी कि युक्त धरा नाम का जो पोर्टल हमने इसरो के एसोसिएशन में उनके साथ मिलकर जो बनाया है वह युक्त धरा पोर्टल हमारे पंचायत सेक्रेटरीज या फिर जो भी टेक्निकल असिस्टेंट्स ग्राम पंचायत प्लान बना रहे हैं जो कि ग्राम सभा से ही अनुमोदित होगा, वहां पर इस पोर्टल के माध्यम से उन्हें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिलेंगे कि अगर आपके गांव में एक चेक डैम कंस्ट्रक्ट करना है आपको एक, तो वह चेक डैम कहां पर कंस्ट्रक्ट करने से वहां सबसे ज्यादा पानी रुकेगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को उसका फायदा होगा, इसका सजेशन दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको सजेशन जरूर मिलेगा जिससे कि आपको बहुत प्रोडक्टिव एसेट होगा, परंतु अल्टीमेटली उसको अप्रूव करने का जो अथॉरिटी है वह ग्राम सभा के पास ही रहेगा। तो ग्राम सभा केंद्र स्थान में है परंतु एक पोर्टल है जो आपको बिल्कुल सही तरीके से मदद करेगा। वह एसेट्स के दोहराव को भी रोकेगा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पारदर्शिता इंश्योर करना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से चीजों को फास्टर करना, मोर एफिशिएंट करना, और यह करते हुए ये भी हमने ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी इसकी वजह से छूटे ना, देयर शुड नॉट बी एनी एक्सक्लूजन। तो जब भी कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म जरूर होता है कि अगर कोई टेक्निक फेल हो जाती है कोई टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से तो वहां पर हमारा अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या रहेगी।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढांचा स्टैक के माध्यम से डिजिटल निगरानी और विभिन्न योजनाओं के निवेश के अभिसरण की बात कही गई है और ये प्रणाली जमीन पर कामों के दोहराव को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और धन के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी साबित हो, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। रोहिणी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहली बार इस तरह से आपदा तैयारी और चरम मौसम की घटनाओं के लिए भी 38 कार्यों की अलग श्रेणी बनाई गई है जिसमें कि बाढ़, चक्रवात, सूखा, भूस्खलन और जंगल की आग जैसी बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है। तो इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे को भविष्य की जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करने के लिए कितने काम किए जा रहे हैं, कैसे इसमें आगे बढ़ेंगे?
0: 38 काम ऐसे है जो पहली बार यह कैटेगरी ऐड की गई है, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी। यह एक सेपरेट कैटेगरी कभी नहीं थी जिसमें कि आपदा प्रबंधन, क्लाइमेट रेजिलियंस या फिर जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उन्हें टैकल करने के लिए ये पहली बार यह एक सेपरेट कैटेगरी ऐड की गई है जिसमें कि 38 काम है। हमारा देश जैसे कि निखिल जी आप जानते हैं बहुत बड़ा है और हर एरिया की एक अलग वल्नरेबिलिटी होती है। कोस्टल एरियाज है जहां पे साइक्लोन प्रोन कुछ एरियाज है, है, भूस्खलन के लिए वल्नरेबल कुछ एरियाज है, जहाँ पे बाढ़, सूखा, ऐसे अलग अलग टाइप के वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए हमने यह 38 काम जो है इसमें ऐड किया गया है। कुछ काम इसमें ऐसे है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर्स, आप देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के चलते, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसके चलते फॉरेस्ट फायर्स की भी घटनाएं कई बार सामने आती है, तो उसके लिए फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट के मेजर्स जैसे कि फायर लाइंस हो गए, फ्यूल बफर जोन्स हो गए, वो भी अब ऐड किए गए हैं। जैसे कि फ्लड रिलीफ के शेल्टर्स, कई बार फ्लड आता है तो स्कूलों में या कहीं और लोगों को रखना पड़ता है, वो ना हो इसीलिए फ्लड रिलीफ शेल्टर्स, रिटेनिंग वॉल्स, एम्बैंकमेंट्स का स्ट्रेंथनिंग, ऐसे भी कई सारे काम जो।
1: रोहिणी जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि 375 स्वीकार्य कार्यों का इतना व्यापक दायरा है, निश्चित रूप से कई सारे विकल्प हमारे सामने रखता है, लेकिन इससे योजना के क्रियान्वयन की जटिलता भी बढ़ेगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो सरकार इस विस्तार के साथ गुणवत्ता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किस तरह के प्रयास कर रही है या करेगी?
0: सरकार ने विकसित भारत जीराम जी के एक्ट कई सारे गुणवत्ता मूलक गतिविधियां जो है वो एक्ट का ही पार्ट है, ऐसा मैं कहूंगी। जैसे कि हमने देखा है कि एक्ट में ये कहा गया है कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उनको इसके लिए जवाबदेही माना गया है। पंचायत केंद्र स्थान पर है, कार्य योजना वही बनाएगी, विकसित ग्राम पंचायत योजना, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर जो कि जनरली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, वह इस कार्य योजना के जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर रहेंगे। तो एक तरीके से मॉनिटरिंग की हर एक स्थान पर व्यवस्था बहुत ही बढ़िया तरीके से की गई है, जो कि एक्ट का ही एक पार्ट है। और सोशल ऑडिट की जो व्यवस्था है जिसमें कि गांव के लोग ग्राम सभा के माध्यम से जो काम हो रहे हैं विकसित भारत जी राम जी में उनकी निगरानी करेंगे, तो उससे भी गुणवत्ता में जो है एक बहुत बढ़िया तरीके से गुणवत्ता का मॉनिटरिंग होगा। ऑल्सो इसमें और भी कई सारी चीजें हैं जैसे कि जियो टैगिंग ऑफ एसेट्स, जैसे कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसका त्रिस्तरीय जियो टैगिंग करना पड़ता है, जैसे कि काम होने से पहले एक बार, जब काम हो रहा है तब एक बार, और काम होने के बाद भी एक बार जियो टैग करके फोटो अपलोड करना पड़ता है। जो नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक की आपने बात की
1: जी, जी।
0: तो एक डिजिटल निगरानी के लिए वह एक बहुत अच्छा साधन बनेगा, जिससे कि यह पता चलेगा कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कौन से पंचायतों में कौन से कैटेगरी के कितने कार्य जो है वो चल रहे हैं, कितने अभी पाइपलाइन में है। तो आगे जाकर ये निगरानी की व्यवस्था और भी बेहतर होगी, और राज्यों को इसके लिए पूरी तरीके से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार बहुत बड़े पैमाने पर कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि हम ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग कहते हैं, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये प्रशिक्षण के कार्यक्रम जो है कर रही है। अभी हमारा नेशनल लेवल पे 17 सितंबर को एक बहुत बड़ी कार्यशाला हुई, और फिर राज्यों में भी हुआ राज्य लेवल पे, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो हमारा NIRDPR का संस्थान है उसके माध्यम से भी बिल्कुल गांव लेवल तक की कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्य चल रहे हैं। जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे जो सरपंचस है, हमारे पूरे देश में जितने प्रधान और सरपंचस हैं, उनके लिए भी हमने पंच सम्मेलन का एक इनिशिएटिव लिया गया है, जिससे कि आज तक लाखों जो है एरियाज में पंच सम्मेलन जो है किए गए हैं, जिससे कि हमारे सरपंच और प्रधान भी जाने कि उनका विकसित भारत जी राम जी के इम्प्लीमेंटेशन में क्या रोल है। तो बड़े पैमाने पर जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं उससे यह जो जटिलता आपको अभी लग रही है वह जरूर सिंप्लीफाई होगी।
1: जी बिल्कुल। और रोहिणी जी, वैसे आपदा के बाद ग्रामीण सड़कों और सामुदायिक परिसंपत्तियों के पुनर्स्थापन को स्वीकार्य कार्यों में शामिल किया गया, जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, तो ऐसे कार्यों में त्वरित प्रतिक्रिया होना जरूरी होती है जब भी कोई आपदा आती है, और समय पर उसमें रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात होती है, तो संतुलन कैसे बनेगा? ये
0: सेक्शन 7 जो है विकसित भारत जी राम जी का, वह ऐसे आपदा के समय पर किस टाइप के रिलैक्सेशन आपको एक्ट देता है उसके बारे में सेक्शन 7 बात करता है। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली इस एक्ट ने जो है वो आपदा को टैकल किया है, ऐसे मुझे लगता है। अगर एक जगह से विस्थापित होना पड़ता है लोगों को बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलेमिटी, तो यह कहा गया है कि उनको टेम्पररी जॉब कार्ड्स भी देकर तभी के तभी जो है उनको लाइवलीहुड की, उनके रोजगार की व्यवस्था वहीं पर की जाए। कई काम जो अदरवाइज अलाउड नहीं है, ऐसे काम भी लिए जाने की पॉसिबिलिटी जो है नेचुरल कैलेमिटीज में हो जाती है। जो गारंटीड वर्क डेज है 125, वह बढ़ाकर देने की भी व्यवस्था जो है वो की जा सकती है अगर कोई आपदा आती है तो। इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हर एक चीज इतनी पारदर्शिता के साथ हमारे सामने है, हमारे विकसित भारत जी राम जी पोर्टल के माध्यम से। अगर आज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी तो आज भी दिखा सकती हूँ कि कौन से पंचायत में कितने लोगों का आज हाजिरी लगा है, कहाँ कहाँ पर काम चल रहे हैं। तो पोर्टल के माध्यम से हमें बहुत ही पारदर्शी तरीके से यह पता चलता है कि आज कौन कौन काम पर आया और कहाँ कहाँ काम चल रहा है। तो फिर एक साइड में आपदा के लिए हम रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं, बहुत ही स्विफ्टली रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, परंतु एट द सेम टाइम पारदर्शिता में कोई कमी नहीं आएगी। वह भी हमें पता चलेगा कि अगर आपदा आई है तो कहाँ पर आई है, कहाँ पर लोगों ने काम किया है, कहाँ पर कौन कौन से रिलैक्सेशन अवेल किया है, तो यह बैलेंस इसी तरीके से बनाया जाएगा।
1: रोहिणी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का एक लक्ष्य हमें दिया है और हम भी वीवी जी राम जी को 2047 के विकसित भारत के व्यापक विजन के साथ जोड़ करके चलने की बात

0: रहे हैं। तो अगले वर्षों में या अगले दशक की हम बात करें तो किस रूप में विकसित होते हुए आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि इसका फ्यूचर कैसा है आने वाले एक दशक में? क्या ये सिर्फ ग्रामीण रोजगार का एक कार्यक्रम रहेगा या फिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा, स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देगा, रोजगार को बढ़ावा देगा और साथ ही साथ देश का जो एक टिकाऊ विकास होना है जिस पर हम काम कर रहे हैं, लगातार प्रयासरत हैं, उस पे भी काफी हद तक मदद मिलेगी और हम सफल होंगे?
1: विकसित भारत जी राम जी के नाम में फिर से जाने का मेरा यहाँ पर सुझाव रहेगा, क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के नाम में ही उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि विकसित भारत बनाना है और इसीलिए विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स बन रहे हैं जिसके माध्यम से विकसित भारत जी राम जी के सारे ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे। तो ओवरआर्चिंग ऑब्जेक्टिव तो विकसित भारत बनाने का ही है और वो विकसित ग्राम पंचायत के माध्यम से ही विकसित भारत जो है बनेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान जो एक पर्सपेक्टिव प्लान बनेगा 5 साल का 7 साल का, तो 5 ईयर्स डाउन द लाइन जैसे आपने कहा अगले दशक में अगर हम देखेंगे तो वीबीजी राम जी के माध्यम से पंचायतें पूरी तरीके से सैचुरेट होती हुई हमें दिखेगी, पंचायत पूरी तरीके से विकसित होती हुई दिखेंगी। हमारे भारत के जो ग्रामीण लोग हैं वह रोजगार से आगे जाकर के आजीविका और हाई इनकम की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे थ्रू विकसित भारत जी राम जी।
0: रोहिणी जी, इन सारी योजनाओं का, इन सारे कार्यों का हमारे देश के ग्रामीण युवा, महिलाएं, दिव्यांगजन या ऐसे लोग जिन्हें इनकी जरूरत है, कैसे इनका फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से उन्हें अप्रोच करनी चाहिए?
1: 125 दिन की रोजगार गारंटी, यह तो इसमें एक मिनिमम चीज है ऐसा मैं कहूंगी। विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों को केवल ना देखें, विकसित भारत जी राम जी में जो पॉसिबिलिटीज है उसको देखें, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी हमारे अन्नदाताओं को, हमारे किसानों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को और भी पिछड़े तबके वाले जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, उन्होंने भी विकसित भारत जी राम जी के प्रावधानों के साथ साथ उसमें जो पॉसिबिलिटीज है उनको अगर देखें तो गांव के विकास को संपूर्ण बनाने की क्षमता विकसित भारत जी राम जी रखता है। पूरी तरीके से अगर उसका यूज किया जाता है तो वह विकसित भारत की ओर जाने में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देगा।
0: रोहिणी जी, चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को और ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे जो इस योजना के साथ साथ हमारी जो अन्य तरह की विकास की योजनाएं होती है जिनका हम लाभ उठा सकते हैं, खासतौर पे ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो योजनाएं हैं?
1: निखिल जी, विकसित भारत जी राम जी में कन्वर्जेंस की बात करी है इसीलिए आपने जो पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभिसरण के माध्यम से, कन्वर्जेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के घर अगर किसी को मिलते हैं तो उनको वीबीजी राम जी में 90 से 95 दिन का रोजगार भी उसके साथ मिल जाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से रोड्स बन रहे हैं, हमारी दीदियां जैसे मैंने कहा लखपति दीदियां बन रही है और वो हायर एंटरप्राइजेस की ओर अब जा रही है। तो दीदियों से भी ये अनुरोध है जब आप क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से कोई लोन लेकर के कोई अच्छा उद्यमिता का विकास कर रही हैं तो वीबीजी राम जी के माध्यम से आप उसको और भी आगे ले जा सकती है। हमारे जो युवा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के माध्यम से इमर्जिंग फील्ड्स में जो है वो कौशल विकास पा सकते हैं, कौशल पा सकते हैं और उसको कई सारे उद्यमिता के साथ जोड़ सकते हैं। मुद्रा लोन अवेल करके वह कई सारे अपने खुद के एंटरप्राइजेस भी कर सकते हैं। तो ये कई सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है युवाओं ने, महिलाओं ने, किसानों ने उठाना चाहिए।
0: श्रोताओं, अभी हम बात कर रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे से, जिन्होंने विकसित भारत जी राम जी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के बारे में तमाम विषयों पर हमें विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद निखिल जी,
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विकसित भारत जी राम जी योजना में कार्य दिवसों में हुए वृद्धि पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: चर्चा का विषय है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: प्रस्तुत है नाटक बंटवारा, लेखक मुरलीधर बलवानी, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल।

0: हाँ भाई राम प्रसाद, अब तबीयत कैसी है?
1: अब जिंदगी की इस आखिरी घड़ी में तबीयत कैसी डॉक्टर साहब?
0: ऐसा मत कहो भाई, वो भी एक डॉक्टर के सामने। जब तक सांस है तब तक आस है। जब तक जियो आशा के साथ जियो। विद्याराम
2: जी,
0: आज मैं एक दवाई बढ़ा रहा हूँ, इसे रात को सोने से पहले देना।
2: जी डॉक्टर साहब।
0: अच्छा मैं चलता हूँ।
2: जी
1: बेटा। विद्या।
2: जी पिताजी।
1: मुझे लगता है बेटा कि अब बिस्तर से मैं शायद ही उठ पाऊंगा।
2: ऐसा मत कहिए पिताजी, आप जरूर ये बिस्तर छोड़ देंगे और दुकान पर भी बैठेंगे।
1: तेरा प्यार और उम्मीद अपनी जगह सही है बेटा, पर मेरी सेहत को मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था कि
2: कहने सुनने को बहुत वक्त पड़ा है, अब पहले आप थोड़ा आराम करिए।
3: चरण स्पर्श पिताजी।
1: सदा खुश रहो बच्चों, मैं भी कितना बदनसीब हूँ, उठकर अपने हाथों से तुम्हें आशीर्वाद भी नहीं दे सकता।
3: अरे इसमें क्या समस्या है पिताजी, लीजिए हम अपना सर आपके हाथों से छुआ देते हैं।
4: चलिए पिताजी आप सूप पी लीजिए। और सुनिए, आप जरा पिताजी को दो तकिए और लगा दीजिए, ये पलंग को थोड़ा और ऊपर उठा दीजिए।
3: ऐसे बैठिए, बैठिए बैठिए,
4: आप पीजिए।
1: जीते रहो बहू, ईश्वर तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। बेटी भगवान करे विद्या के आने वाली बहू भी तुम जैसी ही हो। बेटा ज्ञान प्रकाश, उसकी शादी के मुहूर्त का क्या हुआ बेटा?
3: पिताजी पहले आप ठीक हो जाइए, फिर सोचेंगे उसकी शादी का।
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बेटा, मैंने पहले भी कहा है कि मेरे कारण इस शुभ काम में देरी मत करो, मैं जीते जी अपनी इस आखिरी जिम्मेदारी से मुक्ति पाना चाहता हूँ बेटा। और फिर ऊपर जाकर तुम्हारी माँ को भी तो जवाब देना है बच्चों, मुझे ठीक होना होगा तो हो जाऊंगा, पर इस शादी को समय पर हो जाने दो बेटा, अकेली महिमा कब तक मेरा और घर का बोझ उठाएगी?
3: पिताजी आते सोमवार का मुहूर्त निकला है।
1: अच्छा अच्छा है, बस तो तुम अब तैयारी शुरू कर दो बेटा। अरे भाई हमें कौन सा राजाओं या सेठों जैसा तामझाम करना है?
3: ठीक है पिताजी, जैसा आपका आदेश।

0: पिताजी अपने बेटे और नई बहू को आशीर्वाद दीजिए।
1: प्रणाम पिताजी।
2: ईश्वर तुम्हारा विवाहित जीवन सदा खुशियों से भरा रखे बेटा। मैं तो बस कुछ दिनों का मेहमान हूँ इस घर में। अपने भैया भाभी को ही माँ बाप की तरह प्यार करना बेटा, और सेवा करना उनकी जैसे इन दोनों ने मेरी सेवा की है।
1: पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मुझे तो भाभी ने ही पाला पोसा है।
2: अब तुम जाओ बेटा और सब बड़े बुजुर्गों और रिश्तेदारों का आशीर्वाद ले लो। मुझे ज्ञान प्रकाश से कुछ बात करनी है बेटा। बेटा ज्ञान प्रकाश
0: जी कहिए पिताजी।
2: मुझे नहीं लगता कि अब मैं अधिक समय इस बिस्तर पर पड़ा रहूंगा। सच पूछो तो मैं खुद इस लाचारी के जीवन से अब मुक्त होना चाहता हूँ।
0: भगवान के लिए आप ऐसी बात ना करें पिताजी।
2: बेटा मैं मानता हूँ कि माँ बाप की सेवा एक पुण्य का काम है, पर यह भी उतना ही सच है कि किसी की सेवा लेना भी एक कर्ज के समान है जिसे इंसान को अगले जन्म में चुकाना होता है।
0: ये कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पिताजी।
2: नहीं बेटा नहीं नहीं। बहरहाल मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ बेटा कि हमारी संस्कृति में घर को एक मंदिर कहा गया है, जहाँ परिवार वाले यदि सुख शांति और एकता के साथ मिलजुल कर जीवन बिताएं तो लक्ष्मी जी वहाँ विराजमान रहती हैं।
0: आप सही कह रहे हैं पिताजी।
2: मेरे बाद तुम ही विद्या के पिता रहोगे और महिमा उसकी माँ।
0: आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, विद्या मेरे अपने बेटे रघु समान है।
2: मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा।
3: पिताजी आप मुझे हरास करके नहीं जा सकते। बोलिए बोलिए पिताजी बोलिए।
4: रघु बेटा बहुत खेल लिया, अंदर चलो और होमवर्क करो अब अपना। तुम्हारे पापा भी आने वाले होंगे, और हाँ अब मैं कोई बहाना नहीं मानूंगी तुम्हारा, सीधे अंदर आओ।
5: दीदी दाल सब्जी बना दूं, चावल चढ़ा दूं अभी?
6: अरे नहीं नहीं रानी, तू रहने दे। और ये बता विद्या कहाँ है?
5: वो तो दुकान चले गए दीदी, मैं खाना बनाती हूँ ना।
6: अरे नहीं, तेरे हाथों की तो अभी मेहंदी भी नहीं सूखी, और वो कहाँ छोड़ के चला गया तुझे? वापस आए तो मजा चखाती हूँ उसे। और हाँ रानी, पिताजी के देहांत की वजह से तुम लोग कहीं घूमने भी नहीं जा सके, कम से कम कुछ वक्त तो उसको घर में गुजारना था तुम्हारे साथ।
5: वो कह रहे थे दीदी कि घर पर पिताजी की याद आती रहती है।
6: अब उन्हें याद करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मुझे तो तेरा दुख हो रहा है। तेरे हाथ पीले होते ही सर पर दुख की घड़ी आन पड़ी।
5: ये मेरी ही किस्मत का दोष है दीदी, अभी चांद ठीक से देखा भी नहीं था कि ग्रहण लग गया।
6: दिल छोटा ना कर, और मेरी मान अब तू दो चार दिन के लिए अपने मायके चली जा, और हाँ विद्या को भी साथ ले जा, दोनों का मन बहल जाएगा।
5: आप ही मनाइएगा दीदी अपने देवर को।
6: ठीक है, मैं ही तैयार करती हूँ उसे, ठीक है।
0: अरे भाई क्या गपशप हो रही है देवरानी जेठानी में।
6: जी मैं कह रही थी कि घर में गमी की वजह से विद्या नई बहू को कहीं घुमाने तो ले नहीं जा पाया, तो अब कम से कम दो चार दिन उसे उसके मायके ही ले जाए।
0: कभी कभी भाई तुम भी अकल की बात कर लेती हो।
6: हाँ मैं कम से कम कभी कभी तो कर लेती हूँ।
0: बहरहाल तुम्हारी सलाह 16 आने सही है। विद्या
7: जी भैया
0: तुम कल ही ससुराल निकल जाओ। अरे भाई थोड़ी सेवा तो करवाओ ससुराल वालों से।
8: नहीं भैया अभी मेरा मन नहीं है।
0: अरे भाई हर चीज मन के हिसाब से नहीं की जाती है, हैं? जरा नई दुल्हन का भी तो सोचो।
8: ठीक है भैया आप इतना जोर दे रहे हैं तो चला जाता हूँ।

0: माँ कैसी हो तुम?
1: अरे अरे रानी मेरे बच्चे, तू यहाँ, तूने तो आज दिल खुश कर दिया मेरे बच्चों।
2: अरे बेटी, अरे वाह वाह, दामाद जी कहाँ है?
0: वो आ रहे हैं पिताजी, मैं तो दौड़ कर चली आई।
3: चरण स्पर्श,
2: जीते रहो।
1: तुम्हारा बहुत आभार है।
0: माँ ये तो बताओ, भैया और लता कहाँ है?
2: दोनों कॉलेज गए हैं। अरे भाई दुलारी
1: जी,
2: जरा दामाद जी के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करो।
1: जी जी।
2: वो कमरा तैयार करो।
1: जी जी।
2: बेटा तुम्हारे भैया भाभी तो कुशल पूर्वक है ना, और उनका बेटा?
3: सब आनंद में है।
2: चाय नाश्ता करके मुंह हाथ धो लो, तो तुम्हें भी मैं दुकान ले चलता हूँ।
1: अरे अब छोड़ो भी, आज तो जमाई जी को पूरा आराम करने दो।
2: ये भी ठीक है, शाम को अर्जुन से कह देना शहर घुमाने ले जाएगा।
4: बेटी तेरी ससुराल में सब ठीक तो है ना?
0: हाँ माँ, बस ठीक ही है।
4: अरे मुझे तो तेरी बड़ी फिक्र होती है।
0: क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो तुम?
4: बेटी तेरे ससुर की मृत्यु के बाद उनकी सारी संपत्ति तो बड़े बेटे के हाथ आ गई। पता नहीं तेरे पति को पूरी जायदाद की जानकारी है भी कि नहीं, हे तू जरा पूछती रहा कर, क्योंकि जमीन जायदाद में आधा हिस्सा तेरे पति का भी है।
0: वो तो मैं पूछ लूंगी माँ, पर अभी से क्यों?
4: अरे इससे पहले कि तेरे जेठ का वो छुटकू बेटा है ना, वो हिस्सेदार बने, तू अपना हिस्सा लेकर अलग हो जा, बाद में बड़े झंझट होते हैं।
0: ये बात तो तुमने बड़े ही पते की है।
4: अरे वही तो। और देखना, तू तो अभी बच्ची है, मगर मैंने दुनिया देखी है। मैंने सुना है तेरे ससुर का लगाव भी बड़े बेटे से ज्यादा था। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी जमीन जायदाद बड़े बेटे के नाम ही कर गए हो वो।

0: माता जी, अब मुझे और रानी को वापस घर जाने की इजाजत दें।
1: जल्दी क्या है?
0: भैया दुकान पे अकेले हैं, मेरे ना होने से उनकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, जरा भी आराम नहीं कर पाते। ऊपर से भाभी भी घर का काम अकेले कर करके थक जाती होंगी।
1: देखा रानी, मैं ना कह रही थी कि दामाद जी को तुझसे ज्यादा भैया भाभी की चिंता है।
0: ये बात नहीं है, अब बड़ों का मान तो रखना ही चाहिए ना।
1: बेटा, हम भी तो तुम्हारे माँ बाप समान हैं। अरे, 2-4 दिन और रुक जाते तो हमें भी अच्छा लगता।
0: देखिए माता जी, अब ये उस घर की बेटी ज्यादा है, ज्यादा वक्त तो उसे वहीं गुजारना है ना।
1: ठीक है बेटा।

0: क्या बात है, आज तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? मायके वालों की याद आ रही है क्या?
1: नहीं, मैं कुछ और सोच रही हूं।
0: और क्या सोच रही हो भाई?
1: मैं देख रही हूं कि तुम दुकान पे जाते भी जल्दी हो और रात को भी अक्सर देर से आते हो। जेठ जी का लाया दुकान पे ठंडा नाश्ता और खाना खाते हो, जबकि जेठ जी वो तो तीनों वक्त का खाना घर पर खाते हैं, गर्मा गर्म, और वो भी आराम से।
0: बड़े होने के यही तो फायदे हैं। जब पिताजी थे तो वो मेरे वाला काम बड़े भैया करते थे और मैं पढ़ाई करता था।
1: अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि बड़े भैया दुकान पे कम बैठते हैं।
0: अरे भाई, बाहर के भी कई काम होते हैं जो सिर्फ भैया ही करते हैं। खरीदारी, सामाजिक काम, बिजली, टेलीफोन बिल भरना। अब इसके बीच अगर वो घर पे आकर खाना खाते हैं तो क्या?
1: केवल खाना खाने की बात नहीं, 1 घंटा आराम भी करते हैं घर पर, और तुम्हारा खाना इतना लेट लाते हैं।
0: तो क्या हुआ, मैं नाश्ता भी तो लेट करता हूँ।
1: इसीलिए कि जेठ जी तुम्हारा नाश्ता लेट लाते हैं। तुम दिन रात दुकान भी संभालो और खाना भी वक्त पर न खाओ। नई शादी तुम्हारी है और घर पर ज्यादा वक्त बड़े भैया बिताते हैं।
0: देखो रानी, कल को जब रघु बड़ा होगा वो भी मुझे आराम देगा। आखिर मेरी उम्र ही क्या है जो अभी से आराम का सोचूं। इसलिए तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो।
1: तुम अपनी चिंता खुद करते तो मुझे क्या पड़ी थी जो तुम्हारे बारे में सोचती। अच्छा एक बात तो बताओ, दुकान का हिसाब किताब, जमीन जायदाद का लेखा जोखा, ये कौन रखता है?
0: बड़े भैया, आज तुम ये क्यों बात कर रही हो?
1: मैं भी तो जरा समझूं कि तुम्हारी कमाई क्या है और मेरे हिस्से में क्या रहेगा।
0: हे भगवान, अभी से ये चिंता? तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं भैया से लेके दे दूंगा। घर खर्च के अलावा 200 रुपए काफी रहेंगे।
1: इतने में तो मेरा मेकअप का सामान भी नहीं आएगा।
0: तो 500 रुपए ले लेना बस। अब जरा सोने भी दो।
1: ये तो पूरी तरह से अपने भाई पर आश्रित है। यही हाल रहा ना तो मुझे भी दीदी की गुलामी करनी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा रानी, कोई तो चक्कर चलाना पड़ेगा।

0: भाभी ये क्या, अब तो रानी घर में है, वो भी एक महीना पुरानी, फिर भी चाय तुम ला रही हो।
1: वो भी सो रही है।
0: अरे भाभी मैं उसे उठा के आया था अभी।
1: फिर आंख लग गई होगी, देर रात तक मायके वालों से बतियाती रही। अब मुझे लगता है तुम उसका ख्याल नहीं रखते विद्या।
0: लो उल्टा उसे तुम्हारा और हम सबका ख्याल रखना चाहिए।
2: ऐसा नहीं है विद्या, हम सबको भी तो उसका और उसकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए ना, आखिर वो तो छोटी है ना।
0: उसकी बातों से तो वो छोटी नहीं लगती भैया।
2: क्या मतलब?
0: मेरा मतलब उम्र से क्या होता है, उसकी सोच और सियानापन तो बड़े बूढ़ों वाला है।
1: विद्या ऐसा नहीं कहते अपनी पत्नी के लिए।
0: बहरहाल भाभी तुम उससे ज्यादा नरमी और लाड़ मत करो, घर के काम में पूरी पूरी मदद लो। अब मैं चलता हूँ, दुकान के लिए तैयार होता हूँ।
2: ये विद्या आज ऐसी बातें क्यों कर रहा है?
1: पता नहीं क्या हुआ है आज इस लड़के को।
3: ये लो तुम्हारा दूध।
0: क्या बात है, आज ये तुम्हारी आवाज में गुस्सा क्यों है?
3: दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम करूंगी तो कहीं तो गुस्सा निकलेगा ही ना।
0: घर के काम में भी कोई थकावट होती है।
3: अब तुम्हें तो दुकान के काम में नौकर की वजह से थकावट नहीं होती, तो जरूरी नहीं कि औरों को भी ना हो। घर में तो नौकर भी नहीं।
0: अच्छा चलो तुम सो जाओ बस।
3: मैं सो या जागू तुम्हें से क्या, तुम्हें तो मेरी बातें सुनने का भी समय नहीं।
0: हे भगवान अब क्या हुआ?
3: जब तुम्हें मेरी बात समझ में ही नहीं आती तो क्या बात करूं तुमसे, कुछ पूछो तो तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं रहता।
0: क्या मालूम नहीं है?
3: तुम्हारी दुकान की कमाई कितनी है?
0: ये तो सचमुच नहीं मालूम, मैंने बताया तो सब हिसाब किताब भैया रखते हैं, पर तुम्हें उससे क्या, तुम्हें 500 रुपए दे दिया करूंगा।
3: सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, आजादी भी कोई चीज होती है। तुम दुकान की गुलामी करो और मैं घर की। हम कब घूमेंगे, सिनेमा देखेंगे, बाहर खाना खाएंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब? अरे इतनी उम्र हो गई, शादी हो गई, एक गाड़ी तक तो है नहीं तुम्हारे घर में। कल को तुम्हें अगर अपना धंधा करना पड़े तो तुम्हें क्या जानकारी है धंधे की, सरकारी कामों की, कोर्ट कचहरी की, कमाई खर्चे की।
0: पर भैया के रहते मैं क्यों अलग धंधा करने लगा?
3: अगर कल को भैया ही नहीं रहे तो?
0: रानी ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
3: सच्चाई बोलो तो तुम्हें बकवास ही लगती है। कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो भी अपने ताऊ जी के सामने हाथ फैलाए अपने लिए खर्चा मांगेंगे? किसी पे इतना आश्रित होना भी ठीक नहीं है।
0: मेरा दिमाग खराब ना करो, चुप हो जाओ प्लीज।
2: अरे अभी तक तुम बहू को सुबह नहीं उठा रही हो, तुम्हें विद्या ने उस दिन कहा तो था ना, कम से कम अपनी तबीयत का तो ख्याल करो। वो सारा दिन टीवी देखती है या मायके बात करती रहती है। अरे भाई नई दुल्हन 9 दिन की, अब तो 4 महीना होने को आए, तुम कब तक यूं अकेली खपती रहोगी?
1: अब आप कब से मेरी चिंता करने लगे हाँ?
2: अरे भाई जब तक अकेली थी तब तक कोई चारा नहीं था, खामखा बहू को क्यों आलसी बना रही हो?
1: अब ठीक है, विद्या तो तुम्हें कम से कम आराम देता है ना, तुम तो दोनों तरफ से सुखी हो, घर हो या दुकान, अब मेरे सुख की तो तुम छोड़ ही दो।
2: अरे बीमार हो गई तो मेरे ही पल्ले पड़ोगी ना।
1: घर का काम करने से भी कोई बीमार पड़ा है क्या भला?
2: ठीक है भाई, तुम औरतों की चिंता करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत।
0: रानी तुम आज भी जल्दी नहीं उठी।
3: अब तुम ही तो रात को देर तक जगाते हो।
0: ये बहाने छोड़ो और बिस्तर छोड़ो, मेरे दुकान जाने का वक्त हो रहा है और तुम हो कि?
3: तुम्हें ध्यान रहता है, रात को 11 बजे सोई थी।
0: सुबह के 8 बज रहे हैं, सेहत के लिए केवल 6 घंटे की नींद काफी होती है, शादी को पूरे 4 महीने हो चले हैं, अब तो भाभी का हाथ बटाओ।
3: अरे वाह भाभी की बड़ी फिक्र है।
0: तुम जानती हो मेरी माँ की जगह है मेरी भाभी, वो तुम्हारी तरह नहीं है, नाम से रानी और काम में महारानी।
3: अरे वो तो मुझसे पूरा काम करवाती भी नहीं।
0: अरे वाह तुम्हें खुद भी तो अपनी जवाबदारी का एहसास होना चाहिए, ये घर तुम्हारा नहीं है क्या?
3: मेरा घर तो वो होगा जो तुम बनवाओगे मेरे लिए।
0: मेरा हिस्सा भी है इस घर में।
3: सच भी अगर तुम्हारा हिस्सा है तो उसे लेके अपना एक अलग घर बनाओ, वैसे भी आजकल अलग जीने का जमाना है और इसका मजा भी कुछ और ही है। वैसे भी तुम्हें यूं घर के लिए पिसता देखकर ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता।
0: मेरा पिसना दिख रहा है, भाभी का पिसना तुम्हें दिखाई नहीं देता। 8 साल का था जब अम्मा चल बसी, तब से हम 3 मर्दों को पालती आ रही हैं।
3: मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि ग्रेजुएट होकर भी तुमने कोई नौकरी क्यों नहीं की।
0: ये मेरी बात का जवाब नहीं है।
3: मैं ये फालतू के सवाल जवाब नहीं जानती, तुम्हें मेरे साथ सुखी जीवन गुजारना है तो इस घर से निकलो और खुद की अपनी कहने लायक जमीन जायदाद और दुकान लो, नहीं तो नौकरी ही कर लो। मुझे खुद से ज्यादा तुम्हारी और तुम्हारे भविष्य की चिंता है। मेरा क्या, मैं तो मजे से जी रही हूँ।
0: शायद तुम सही कह रही हो। जब तक तुम्हारे सर पे नहीं पड़ेगी तुम अपना महारानीपन नहीं छोड़ोगी, और मेरी माँ समान भाभी सारी उम्र यूं ही नौकरानी बनकर मरती खपती रहेगी।
3: अब आई ना बात भेजे में, मुझे भी तुम्हारी कमाई का पूरा पैसा चाहिए, ना कि उस आधी कमाई का जिसको कि कमाते तुम अकेले हो।
0: ठीक है, मैं चलता हूँ, समय देख के भैया से बात करूंगा। प्रणाम भैया।
2: आओ आओ विद्या, चाय आने ही वाली है।
0: भैया अगर बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछना चाहता था।
2: अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, दिल खोल के और बिना किसी झिझक के पूछो।
0: मैं सोचा था कि मैंने खर्चे के 500 रुपए ले तो लेता हूँ, पर ये कहीं दुकान की कमाई के हिसाब से ज्यादा तो नहीं?
2: अरे नहीं नहीं, अच्छा हुआ जो तूने आज दुकान की कमाई की बात निकाल दी। अब तुझे भी दुकान और जमीन जायदाद के बारे में जान लेना चाहिए, आखिर तो मेरे बाद तू ही संभालेगा ये सब। तुझे तो पिताजी ने नौकरी नहीं करने दी, मैं तो खुद चाहूंगा कि रघु अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करे। दुकानदारी तो तू देख रहा है कितनी मगजमारी है इसमें। बहरहाल हमारी दुकान की कमाई है करीब 25,000 रुपये महीना, सो धीरे धीरे करके करीब 50,000 की बैंक से FDR बनवा के रखे हैं। अब तक करीब 10,00,000 रुपये की FDR हो गई होगी। खेती वाली ज़मीन भी करीब 10,00,000 रुपये की होगी। बाकी ये घर और दुकान का स्टॉक वगैरह, ये है हमारी कुल संपत्ति जिस पर हम दोनों में बराबर बराबर का हिस्सा।

0: अब बताओ, लखपति होकर भी तुम इस 8x8 के कमरे में सड़ रहे हो। सुनो, क्यों ना हम अपना घर ले ले, आज नहीं तो कल हमारे भी बच्चे होंगे ना।
1: वो तो इसके ऊपर भी कमरे बन सकते हैं।
0: चलो ये ही सही, तुम अपना घर ऊपर बनवा लो या फिर भैया ऊपर रह ले।
1: पर अभी कहाँ उसकी जरूरत है।
0: अरे दिन ब दिन मटेरियल की कीमत भी तो बढ़ती जा रही है।
1: हाँ ठीक है, मैं भैया से बात करूंगा, पर रसोई एक जगह ही होगी है?
0: अच्छा बाबा अच्छा, तुम बात तो करो। ये लीजिए भैया, चाय लीजिए।
2: अरे वाह, आज चाय तुम लाई हो। महिमा की तबीयत तो ठीक है ना?
0: हाँ भैया, दीदी की तबीयत बिल्कुल ठीक है।
2: अरे वाह, चाय तो बड़ी अच्छी बनाई है तुमने।
1: अब आपको रोज यही मिलेगी भैया। अच्छा भैया, मेरे मन में ख्याल आया है, क्यों ना हम 2-3 FDR कैश करवा के ऊपर 2 कमरे बनवा लें। साल दर साल मटेरियल और लेबर की कीमत बढ़ती जा रही है, हम अपना कमरा रघु के लिए खाली करके ऊपर के कमरों में शिफ्ट हो जाएंगे।
2: तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर
1: क्या भैया?
2: घर के 2 टुकड़े हो जाएंगे।
1: नहीं होंगे भैया, हम दोनों सिर्फ रात को ऊपर सोने जाएंगे और रसोई भी तो नीचे रहेगी ना।
2: पर इसमें तो तुम दोनों को ही परेशानी आ सकती है, कभी ऊपर कभी नीचे।
1: हम कौन से बूढ़े हैं भैया, आप अभी से ये सब कुछ सोच रहे हैं?
2: हाँ, नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो, ये काम निपटा ही देते हैं।
1: लो भाई, तुम्हारे अपने घर का सपना इतनी जल्दी पूरा कर दिया। आज तो गृह प्रवेश के कार्यक्रम में पूरी तरह थका दिया।
0: लाओ, मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूँ। और हाँ, घर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अभी तो तुमने मेरा बस 50% सपना ही पूरा किया है।
1: हे भगवान, ये बाकी का 50% सपना क्या है तुम्हारा?
0: बाकी के 50% सपने पूरे होने की खुशी मुझे कम और तुम्हें ज्यादा होगी डार्लिंग।
1: अब ये पहेलियां छोड़ो और साफ साफ बताओ कि तुम और क्या चाहती हो।
0: मैं चाहती हूँ कि अपने घर की तरह तुम्हारी अपनी दुकान भी हो जाए। दिन रात जी तोड़ मेहनत तुम करो और कमाई 50%। इतनी मेहनत तुम अपनी दुकान पर करोगे तो पूरी की पूरी 100% कमाई तुम्हारी, और फिर हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए भैया से पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कल को हमारे बच्चे होंगे तो क्या वो भी अपने ताऊजी पर आश्रित होंगे?
1: ये क्या कह रही हो तुम, पहले घर अलग अब दुकान भी अलग।
0: अलग कहाँ, एक आवाज भर तो दूर है हम घर में।
1: मगर ये बात शायद भैया ना माने।
0: तुम बात तो करके देखो, घर के वक्त भी तुमने यही कहा था।
2: वाह भाई वाह, आज तो हल्का खा के मजा आ गया। आओ विद्या, आओ बैठो, आओ बहू। अरे रघु सो गया हो तो तुम भी आ जाओ महिमा। वाह भाई वाह, आज तो हल्का खा के मजा आ गया। आओ विद्या, आओ बैठो, आओ बहू। अरे रघु सो गया हो तो तुम भी आ जाओ महिमा।
3: लो जी, मैं भी आ गई। आज क्या खास बात है जी, पूरा का पूरा कुनबा इकट्ठा किया है आपने? हाँ,
2: मैंने सोचा है विद्या, आज से दुकान पर मैं बैठूंगा और तुम बाहर के काम देखोगे। इसी बहाने तुम्हें पता भी चलेगा कि दुकानदारी के अलावा क्या क्या काम तुम्हें देखना और समझना है।
1: पर ये सब अचानक क्यों भैया?
2: देखो विद्या, अब मैं इतना जवान तो रहा नहीं कि भागा दौड़ी करूं। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि मैं दुकान संभालूंगा, आप आराम से दुकान पे आना। सो अब मुझे भी लगता है कि मुझे ज्यादा आराम दुकान पर बैठने से मिलेगा बजाय ये भागा दौड़ी करने में। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि कल से घर का खर्चा, जमीन जायदाद के कागज, शेयर, ये सब रानी संभाले।
0: ये क्या कह रहे हैं भैया आप?
2: देखो बहू, अब तुम भी इस घर का ही हिस्सा हो। मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें भी विद्या और अपने भविष्य को लेकर कुछ आशाएं और कुछ उम्मीदें होंगी। कल को तुम लोगों के बच्चे होंगे, मुझे केवल महीने के 1000 रुपए दे दिया करो बस।
1: पर भैया, ये आज आप कैसी बातें कर रहे हैं?
2: मुझे अपनी बात पूरी करने दो विद्या, बाद में इसी संपत्ति को लेकर बंटवारा हो जाए, इसलिए बेहतर है कि ये सब अब तुम संभालो।
1: भैया, मैं आपसे कभी अलग नहीं होऊंगा, लक्ष्मण भी कभी राम से अलग हुआ है।
2: अरे तू किस युग की बात कर रहा है, अगर ऐसा नहीं था तो तूने घर को क्यों अलग करने की सोची? कल को तू दुकान अलग करने की सोचेगा तो मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। पिताजी को मैंने मरते वक्त वचन दिया था कि विद्या मेरे बेटे समान है, जीते जी मैं इसे कभी अपने से जुदा नहीं करूंगा। अब अगर तू कल को दुकान अलग खोलेगा तो फिर रसोई कब तक साझा रहेगी?

0: और जब रसोई साझा नहीं रही तो दिल कैसे मिले रहेंगे? इससे पहले कि हम लोग भी एक दूसरे के लिए बेगाने हो जाएं, तुम दोनों मिलकर घर दुकान और जमीन जायदाद की जिम्मेदारी उठा लो। मुझे कोई तकलीफ नहीं है इससे। अरे क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो?
1: मुझे माफ कर दीजिए भैया, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही दो भाइयों के बीच दरार पैदा करने की सोची। मैं आपको नहीं जान पाई थी, शायद मैंने आपको बहुत गलत समझा भैया, मगर आप
0: अरे अरे अरे अरे, रो मत, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। कोई भी नई बहू ऐसा सोच सकती है। अगर तुमने मुझे सीधे से ये बात कही होती तो भी मेरा फैसला यही होता, क्योंकि विद्या मेरा भाई नहीं, बेटा है।
1: भैया मैं ही स्वार्थी हो चली थी, मेरे स्वार्थ के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए।
0: मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया
1: जी।
0: अब कभी मत भूलना कि स्त्री तो घर की धुरी होती है
1: जी,
0: जिसके दम पर घर का चक्र चलता है।
2: मुझे माफ कर दीजिए भैया, मैं अपनी पत्नी के प्यार में छुपे स्वार्थ को नहीं देख पाया।
0: चलो शुक्र है, वक्त रहते घर पर आने वाला संकट टल गया। पश्चाताप के आंसुओं के प्रताप से तो बड़े बड़े पाप माफ हो जाते हैं। पता नहीं तुम लोग कैसे भूल गए कि जो शांति, प्यार और एकता एक परिवार में है, अकेले में कहाँ।
2: भैया आपने हमें सच में माफ कर दिया है ना?
0: वैसे कहते हैं गलती इंसान करता है और माफ ईश्वर करता है, फिर भी मैं अपनी तरफ से तुम्हें खुले दिल से माफ करता हूँ, अपने स्वार्थ के लिए।
3: अब इसका क्या मतलब हुआ जी?
0: ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान दूसरों की गलतियों को माफ करता है, ईश्वर फिर उसकी गलतियों को माफ करता है। समझी मेरी समझदार पत्नी?

0: अभी आप सुन रहे थे मुरलीधर बलवानी का लिखा ये नाटक बंटवारा। भूमिका सहित भाग लेने वाले कलाकारों का विवरण इस प्रकार है। डॉक्टर थे देशबंधु शुक्ला, रामप्रसाद, विजय दिंडोरकर, विद्याराम, अमित रिछारिया, ज्ञान प्रकाश, संजय मेहता, महिमा थी भारती ठाकुर, रानी की भूमिका निभा रही थी कंचन राजानी, दुलारी शिवांगी पवार और तीर्थ प्रकाश थे श्याम मुंशी। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश ढोंडियाल।
1: बंटवारा, अभी आप सुन रहे थे मुरलीधर बलवानी का लिखा है नाटक। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए सौरभ ब्रत चक्रवर्ती का राग बिहाग में सुरबहार वादन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे सौरभव्रत चक्रवर्ती का सुरबहार वादन राग बिहाग। तबले पर संगत की थी सलीम अल्लावाले ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सरकार प्रमुख के रूप में निरंतर 25 वर्षों की जनसेवा पूरी की। श्री मोदी ने सुबह नई दिल्ली के सरोजनी नगर स्थित श्री विनायक मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा अर्चना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नीतियों और कड़ी मेहनत के माध्यम से भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने सपने को अवश्य पूरा करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का समय है।
2: विकसित भारत का लक्ष्य, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, इकोनॉमी को टॉप 3 में लाने का लक्ष्य, गरीबी का नामो निशान मिटाने का लक्ष्य, ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने का लक्ष्य, हमें ऐसा भारत बनाना है कि लक्ष्य ऐसे हो कि हर क्षेत्र में तिरंगा शान से लहराए।
1: श्री मोदी ने कहा कि पहले आयात बढ़ाने के प्रयास किए जाते थे, जबकि आज भारत निर्यात के नए रिकॉर्ड बना रहा है। जापान, भूटान, फिलीपींस, बेल्जियम, नेपाल, नाइजीरिया और बोत्सवाना सहित कई देशों के नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार के प्रमुख के तौर पर लगातार 25 वर्ष की जनसेवा पूरी करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार प्रमुख के रूप में अपने 25 वर्ष पूरे होने पर विश्व नेताओं से मिली शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस IMC के 10वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन 7 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा। ये आयोजन सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करेगा। IMC 2026 का विषय सीमाओं के बिना विस्तार है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 57वीं बैठक कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में GST विवादों के समाधान और इनपुट टैक्स क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत सुधारों पर चर्चा होगी। इसका उद्देश्य अनुपालन में लगने वाले समय और लागत को कम करना है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही रेपो दर बढ़कर 5.5% हो गया है। मुंबई में आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि देश में प्याज की उपलब्धता बेहतर हुई है और इसकी कीमतों में भी कमी आ रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार इस साल खरीफ प्याज की खेती बढ़ी है, फसल की स्थिति अच्छी है और मंडियों में प्याज की आवक भी बढ़ रही है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान से नई खरीफ प्याज की आवक शुरू हो गई है। आने वाले हफ्तों में इन राज्यों से आवक और बढ़ने की उम्मीद है। इससे त्योहारी मौसम में बाजार में प्याज की उपलब्धता बेहतर होगी। भारत ने पिछले 1-2 दिनों में काला सागर क्षेत्र में हुए वाणिज्यिक जहाजों पर सिलसिलेवार हमलों की निंदा की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह के हमले वाणिज्यिक जहाजों के आवागमन के लिए गंभीर खतरा है और नाविकों की जान जोखिम में डालते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने लगातार लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने की वकालत की है और शांति को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ बातचीत की है। कनाडा के प्रधानमंत्री के वरिष्ठ राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार डेविड मॉरिसन का भारत दौरा आज समाप्त हो गया। डेविड मॉरिसन 3 दिन के भारत दौरे पर थे। वे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के निमंत्रण पर भारत आए थे। विदेश मंत्रालय के अनुसार नई दिल्ली में हुई बैठक दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर पर चल रही द्विपक्षीय सुरक्षा वार्ता के अंतर्गत आयोजित की गई। एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में प्रमोद भगत और भाविना पटेल भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे। ये खेल 18 से 24 अक्टूबर तक जापान के आईची नागोया में आयोजित होंगे। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद ने 2014 से 2023 के बीच एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi today completed 25 years of continuous public service as head of the government. Mr. Modi visited Sri Vinayak Temple at Sarojini Nagar in New Delhi in the morning and offered prayers there. On the occasion, the Prime Minister addressed the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi. He said that India will definitely fulfill its dream of becoming a developed nation by 2047 through visionary policies and hard work. Addressing the Viksit Bharat Sankalp Sabha in New Delhi today, Mr. Modi said that present government's policy focuses on solutions for all citizens.
2: Sabka saath, sabka vikas, yahi mere liye